सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें। योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे,

या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है, लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए, गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे।
सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो एक महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं, लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवान रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन, शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है।
दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाए, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झनझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या तो या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में
बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप जीरो पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20-30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15-20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है गिरवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5-10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्तीज़।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अरे झब्बू।
1: हाँ सर।
0: अरे एक सवाल का जवाब दो।
1: बताइए सर।
0: ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है?
1: अरे जमीन पर सर।
2: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो भाई, आज जो दिन है वो थोड़ा सा रोमांटिक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज धूप फिलहाल अभी तक तो नहीं निकली है और अभी जो बादल दिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज काफ़ी वक्त तक ऐसी ही बदली नज़र आने वाली है। फिलहाल मौसम ने तो बढ़िया सा दिन बना दिया है। अब बारी है कि आज के दिन की शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से की जाए, जो कि होने वाली है। लेकिन उससे पहले आइए इस खूबसूरत से गाने को सुन लेते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि भाई आज का फ्राइडे है चुकी, तो फ्राइडे स्पेशल शो में आज का थॉट क्या है और आज का थॉट क्या होने वाला है जो हमारे दिन को हमारे साथ लेकर चलने वाला है।

0: मेरी कैसे
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, दिन आपको याद है, आज है फ्राइडे और जाहिर है कि फ्राइडे है, सो फ्राइडे वाला थॉट है, फ्राइडे वाली वाइब है, फ्राइडे वाली मॉर्निंग है, फ्राइडे वाली स्मेल भी होती है क्या? ऑब्वियस सी बात है यार, हर दिन मतलब आपको जो स्मेल मिलती है और आपको अच्छी लगती है वो उस डे की हो जाती है ना। सो फिलहाल आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके मॉर्निंग शो में क्या होने वाला है। वैसे क्या सोच के रखा है, किस चीज़ से रिलेटेड होगा या कैसे होगा, कुछ सोचा है या नहीं? खैर, अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम तो भाई ले ही आए हैं और अब जो है इस थॉट को आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसको आप दिन भर अपने साथ में रखने वाले हैं। और अगर प्यारा लगे, अच्छा लगे तो फिर आप इसको हमेशा ही अपने साथ में रखने वाले हैं। सो चलिए भाई, अब आपको ले चलते हैं थॉट की तरफ सीधे आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर चुके हैं ना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
3: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

एक जो थॉट मैंने कई बार किसी किताब में, कभी दीवारों पर, तो कभी किसी से बोलते या सुनते समझते इसको सुना हमेशा, हालांकि इसके मायने बड़े ही क्लियर रहे हैं, आज किसी अलग रूप में ये थॉट आया है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। थॉट कह रहा है कि ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का हो। तो भाई अगर ज़्यादा बोझ लेकर चल रहे हैं तो वो डूब जाएंगे, फिर चाहे वो सामान का बोझ हो या अभिमान का बोझ हो, बोझ जो है ये डूबा देता है। कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम करती है, तो फिर वो आपको और हमको परेशान कर देती है, क्योंकि हमको तो लगता है कि हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, उनको हम बताएंगे, लेकिन दरअसल हम अपने से ही जूझ रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोझा लेने की और चलने की उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। होता है ना कई बार जब हम निकलते हैं कुछ भी कर रहे होते हैं, इतना कुछ हमारे जहन में चल रहा होता है, इतना ज़्यादा रखे रहते हैं कि जैसे लगता है कि भाई बस सोच सोच के ही हम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कह रहा है ये आज का थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट कह रहा है कि ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर वो चाहे सामान का बोझ हो कि सब कुछ समेट लिया जाए, सब कुछ रख लिया जाए, कुछ भी चीज़ हाथ से जाने ना पाए, या फिर अभिमान का हो कि मैं ही मैं और दूसरा कुछ नहीं। मैं समझ में आता है लेकिन दूसरा कोई कुछ नहीं, ये नहीं समझ में आता है, ये अलग बात है ना। तो आज का थॉट कहता है और बताता है कि ज़्यादा सामान रखने का कोई मतलब नहीं है। और अक्सर हम यही सोचते हैं कि अच्छा यार ये भी हो जाता अगर वो भी हो जाता, पर हमारा जहन इस पर क्यों नहीं जाता कि हमारे लिए कोई चीज़ मिल जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाकर उसको यूटिलाइज़ कर पाना और पूरे वक्त के साथ कर पाना ये बड़ी चीज़ है। अब एक घंटे आपको दिए हैं, आपको उसी एक घंटे में हमने ब्रेकफास्ट का बोला है, उसी एक घंटे में आपको कहीं आने का बोला है, उसी एक घंटे में हमने कहा गेम भी खेलना है, और उसी एक घंटे में आपको वो काम भी करना, और उसी एक घंटे में आपको वापस चले भी जाना है, चैलेंजिंग हो जाएगा। चार चीज़ कर तो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी आ करके, लेकिन उन सब का कोई फील नहीं रह जाएगा, लेकिन एक चीज़ या दो चीज़ कोई करेंगे तो उसका फील रहेगा। सो कहने का सेंस इतना ही है कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाने से बेहतर है जो ऑलरेडी आपके पास है या जो आप चाह रहे हैं उसमें से कुछ लेकर के बढ़ा जाए, वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा हमारी लाइफ में। आई होप कि हम इस बात को समझ गए हैं और अब आज ही इस बात पे गौर करेंगे कहीं हम ज़्यादा सामान के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं, ये भी वो भी वो भी ये भी, और कहीं हम ज़्यादा अभिमान तो नहीं लेकर चल रहे हैं, तो ज़्यादा अभिमान भी खतरनाक है। फिलहाल ये था आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट्स। सो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप बता ही देंगे, और मौसम तो अपने जाहिर से बात है शबाब पर है, और साथ ही साथ सॉन्ग्स भी वैसे ही प्ले होने वाले हैं। सो चलिए आज के फ्राइडे को एक बार वापस से जीते हैं, एक नए अंदाज में लेकर चलते हैं और खूबसूरत बनाते हैं आज के इस दिन को अपने मॉर्निंग शो के साथ में।

0: जाने दो।
1: हाय क्या बात है, दिस सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो चलिए, इस खूबसूरत से सॉन्ग के बाद वापस से आ गए हैं, और आने के बाद आपको एक ही बात कहेंगे कि भैया फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। और साथ ही साथ उसी एप्लीकेशन पे आपको एक ऑफकोर्स मिलती है चैट का ऑप्शन, जिस पर आप जो कुछ लिखते हैं वो लाइव शोज में आपके गोंडा एफएम के आरजीज तक पहुंच जाता है। सो क्या लिखा है मॉर्निंग शो में, आइए बताते हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई जो पहला मैसेज आया है वो ताबिश खान का आया है। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। प्रीति जी हैं बहराइच से, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। पता है यार, एक चीज़ हमेशा हमको लगती है, हम लोग जब धीरे धीरे बचपन से बड़े होते जाते हैं तो हमारी चीज़ें बदलती जाती है। जैसे हम जो पहले सोच रहे होते हैं बाद में वही सोच करके हंसते हैं कि यार हम भी क्या ही सोचते थे। एक वक्त तक हम शायद यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख लेना ही लाइफ है, लेकिन फिर समझ में आता है नहीं यार, सिर्फ रख लेना क्या मतलब है। फिर घर के कुछ एग्जांपल्स याद आते हैं कि घर पे जब ज़्यादा सामान भर जाता है, जब हम ऐसी चीज़ों को भी रखे रहते हैं जो काम की नहीं है लेकिन उसको सहेजे हैं, शायद कभी काम आ जाए, नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेते आते रहते हैं। फिर क्या होता है, आसपास पड़ा है सब, कभी इधर सफाई, कभी उधर सफाई, इधर सफाई करके उधर रख दिया, उधर रख के इधर उठा दिया, कभी इधर पड़ा है कोई कुछ, उधर पड़ा है, तो वह मैस सा हो जाता है। और जिस भी रूम में या जिस भी घर में हम या जहीं कहीं भी वैसे देखते हैं जहां पर सब कुछ बहुत ही कम होता है, सिर्फ बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो जगह हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सामान नहीं होता उस जगह, उस जगह आपको अपनी सोच, अपने विचार को रखने के लिए जगह मिलती है। अगर हम चीज़ों में ही किसी गैजेट के ही साथ बिजी रहेंगे तो सोचेंगे कब, फील कब करेंगे, भाई हम खुद भी तो एक गैजेट हैं जो कि नेचर ने बनाया है और जिसका मज़ा, जिसका फील हम ही को लेना है, तो उसके लिए भी तो वक्त होना चाहिए ना। इसीलिए शायद ये बात बहुत बाद में समझ में आती है, लेकिन ये बात आती है कि यार बहुत ज़्यादा सामान या बहुत ज़्यादा अभिमान की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि भाई आज का ये थॉट ऑफ द डे हमारे लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत बन करके ज़रूर आया, बहुत थोड़ी सी सही, लेकिन राहत देगा इस बात को समझ लेने के बाद कि हाँ, ये सच में हमें गौर करने वाला एक थॉट है जिस पर हम अपनी लाइफ के उन चीज़ों को ज़रा गौर करें जो हम भरते जा रहे हैं। खैर, दिल तो पागल है इसीलिए भर रहा है, लेकिन फिलहाल हम तो पागल नहीं है। चलिए, दिल को होने दीजिए और इस गाने को सुनने दीजिए।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: सो आई होप कि भाई आप रेडी हैं अपनी सिटी अपडेट यानी गोंडा को जानने के लिए। ऑफ कोर्स अब लौट रहे हैं और आपको बताने वाले हैं कि आज शहर में आपके लिए बताने को क्या है, यानी कि आपकी सिटी अपडेट। बस इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हाँ के हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल तो भाई ये रहना चाहिए हमारे जहन में। फिलहाल आपको हम ले चलने वाले हैं सिटी अपडेट यानी गोंडा अपडेट की तरफ, और बताते हैं क्या कुछ चल रहा है अपने शहर गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, पहली अपडेट जो है वो है छपिया से लखनऊ के लिए बस सेवा शुरू की गई है, इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देना है। तो चलिए बताते हैं क्या है ये बस सेवा, कहाँ से कहाँ चल रही है। सो आपको बता दें कि ज़िले में छपिया धाम से लखनऊ तक का सफ़र अब आसान होने की बात सामने आ रही है। रोडवेज़ ने छपिया से लखनऊ के लिए रेगुलर बस सेवा शुरू कर दी है। तकरीबन 175 किलोमीटर की सीधी सेवा से जो है वो यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना बताई गई है। अब उन्हें रास्ते में बार बार बस बदलने की परेशानी नहीं होगी। ये बस हर रोज़ चलाई जाएगी। रोज़ाना 60 से ज़्यादा यात्री जो है वो इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। ख़ास करके छपिया आने के लिए ये बेहद सुविधाजनक साबित होने की बात बताई गई है। सो पहले लखनऊ जाने के लिए पैसेंजर्स को कई जगहों पर वाहन बदलने पड़ते थे, जिससे वक्त और पैसे दोनों का ज़्यादा खर्च होता था। सीधी बस सेवा शुरू होने से अब जो यात्रा है वो थोड़ा सा ज़्यादा सुगम, सुरक्षित और वक्त बचाने वाली हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नए प्लेटफॉर्म्स गोंडा स्टेशन पर हैं, यानी रेलवे स्टेशन पर, उनसे अब ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू होने की बात सामने आ रही है। सो गोंडा जंक्शन पर जो पैसेंजर्स को जल्द ही भीड़ भाड़ से थोड़ा सा राहत मिलती हुई दिखेगी। करीब 5 साल पहले 80 लाख रुपए की लागत से बने नए प्लेटफॉर्म 7 और 8 को पुराने

ज़्यादा रह। सो एरिया मैनेजर ने प्लेटफॉर्म कनेक्ट किए जाने की पुष्टि की है और उन्होंने AEE के साथ मिलकर मनकापुर रामघाट रेल प्रखंड पर सिग्नल साइट का निरीक्षण भी किया है। इसके अलावा अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 16 से बुकिंग को लेकर के। जी हाँ, सो कृषि विभाग की तरफ से किसानों को अनुदान कृषि यंत्र अवेलेबल कराने के लिए कल यानी बृहस्पतिवार से 10 अगस्त तक ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। सो परसपुर के जो सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं उन्होंने बताया है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि ड्रोन, रीपर, पावर स्प्रेयर, पंपिंग मशीन, बेलर, दाल मिल और कस्टम हायरिंग सेंटर, इन पर अनुदान दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए विकास खंड कृषि कार्यालय से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी वो किसान भाई जो इसके पात्र हैं। वो कल से शुरू हो चुका है और ये 10 अगस्त तक चलने वाला है और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप विकास खंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 तक होंगे एडमिशन्स। जी हाँ, सो ये खबर वभनान में है। आचार्य नरेंद्र देव किसान PG कॉलेज में MA, MSc और MCOM जो पाठ्यक्रम है इसमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है और इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो 30 जुलाई तक चलेगा। फिलहाल प्राचार्य ने बताया है कि स्टूडेंट्स को एडमिशन मेरिट और सीटों की अवेलेबिलिटी के बेस पर दिया जाएगा। सो जल्दी एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को उनकी पसंद का सब्जेक्ट मिलने की ज़्यादा संभावना होगी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट्स लिमिटेड हैं। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो बिजली चोरी में 38 पर FIR की बात सामने आ रही है। सो देवी पाटन मंडल में बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग ने अभियान चलाया है। इस विशेष अभियान में बिजली चोरी करते मिले 38 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं 530 बड़े बकायेदारों के बिजली कनेक्शंस काट दिए गए हैं और 1527 कंज्यूमर्स को बकाया जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। सो मुख्य अभियंता देवी पाटन क्षेत्र ने बताया कि विजिलेंस और बिजली विभाग की संयुक्त टीमों ने हाई लॉस फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में सघन जाँच अभियान चलाया है। अभियान के दौरान गोंडा में 16, बलरामपुर में 6, श्रावस्ती में 4 और बहराइच में 12 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। सो विभाग के बकाया वसूली अभियान के तहत 530 कंज्यूमर्स के बिजली कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिए, साथ ही 1,10,00,000 रुपए का बकाया राजस्व भी जमा कराया गया है। इसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो करनैलगंज में सरयू नदी के कटान को लेकर के आ रही है। सो आपको बता दें कि फिलहाल सरयू नदी का जो वाटर लेवल है वो कल, अगर हम बताएं, बृहस्पतिवार को स्थिर बना रहा, न घटा न बढ़ा। एल्गिन ब्रिज पर नदी का जो जल स्तर था वो खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया, जबकि जल स्तर में मामूली गिरावट से तटवर्ती गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। कटान तेज़ होने से खेत जो है वो नदी में समा गए हैं। सिंचाई और बाढ़ खंड ने शुक्रवार को यानी आज से जल स्तर दोबारा बढ़ने की आशंका जताई है। सो फिलहाल लगातार इस तरह से ये कटान की जो प्रॉब्लम है वो भी सामने आ रही है, जिसको लेकर के आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। एंड इस पर चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो फिलहाल अगली अपडेट जो है वो महंगी सब्जियों की आ रही है। सो लगातार बढ़ रही सब्जियों की कीमतों में आम लोगों की रसोई का जो बजट है वो फिलहाल बिगाड़ दिया है। सो बारिश के मौसम में जो लोकल की मंडियां हैं, कई प्रमुख सब्जियों के आवक कम होने से और मांग बढ़ने से दामों में तेज़ी आई है। सो 10 दिन में लौकी की कीमत में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। प्याज में भी 25 से 40 रुपये प्रति किलो हो गया है बढ़ करके, और मंडी में टमाटर, लौकी, तरोई और बाकी हरी सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों में बढ़ गए हैं। सो महंगाई की वजह से लोग ज़रूरत के हिसाब से ही सब्जियां खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं वहीं शहर के लोगों का कहना है, जहां हफ्ते भर से सब्जियां एक साथ खरीदी जाती थी, अब रोज़ाना ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदनी पड़ रही है। सो फिलहाल आपको हम ले चलते हैं अगले ऑफ कोर्स अपडेट की तरफ।

अगली अपडेट क्या आ रही है ये भी आपको अवगत कराते हैं। अगली जो अपडेट आ रही है वो शिविर से लेकर के आ रही है। आज सुबह 7 बजे रानी बाजार में मौजूद राम जानकी धर्मशाला में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा अब सुबह 10 बजे से मुजहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। ये अगली अपडेट थी। इसके अलावा आपको हम बता दें, यूपी बोर्ड के केंद्रों के लिए 20 तक अपलोड करने का जो है वो कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद ने जिले के सभी जो जुड़े संबद्ध माध्यमिक विद्यालय हैं 20 जुलाई तक अपनी जो आधारभूत सुविधाएं उसका पूरा डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से 22 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी, जबकि आपत्तियों के निस्तारण के बाद सितंबर में आखिरी परीक्षा केंद्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो आ रही है वो शतरंज खिलाड़ियों से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोकलपुर में बुधवार को ब्लॉक स्तरीय टेबल टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इसी कंपटीशन में लगभग 6 स्कूल्स और 3 दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। टेबल टेनिस बालिका वर्ग में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोकलपुर की शिवानी, महक, अंशी, अंशिका और आराध्या जो है वो विजेता रहीं, जबकि PM श्री लक्ष्मणपुर जाट की अंशिका और खुशबू जो है वो उप विजेता रहीं। इस तरह से ये गेम्स का ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है इसको। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है स्वावलंबन योजना से जुड़ी हुई। जी हाँ, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन यानी एग्री जंक्शन योजना के तहत जो चुने हुए युवा हैं 13 दिन का प्रशिक्षण कल बृहस्पतिवार से उप कृषि निदेशक कार्यालय से शुरू हुआ। प्रशिक्षण के जरिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों से स्नातक युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि योजना का जो उद्देश्य है वो कृषि, उद्यान और डेयरी क्षेत्रों जैसे शिक्षित युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला होगा। और प्रशिक्षण के दौरान कृषि व्यवसाय संचालन जो है वो उन्नत तकनीकों और उद्यम प्रबंधन की जानकारी दी। कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का लोन, 60,000 रुपये तक की सब्सिडी और केंद्र संचालन के लिए 1,000 रुपये महीने किराया की भी सहायता की बात बताई गई। फिलहाल ये रहा गोंडा से अपडेट जो कि हमने आपको बताया। और साथ ही साथ चूँकि रुपहडी की बात है जहां पर जैविक खेती के बारे में लोगों ने बताया, चूँकि ज़िले की ही छात्रा पूर्णिमा चतुर्वेदी हैं और इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेती करके आत्मनिर्भर बनने की नई राह जो निकाली है उसको लोगों से साझा किया है। हम बता दें आपको कि रुपहडीहा विकासखंड के माधवा नगर में पूर्णिमा पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही जैविक खेती भी कर रही हैं और ये बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मक्के की खेती कर रही हैं। अब गोबर की खाद, जीवामृत और जो बाकी प्राकृतिक तरीके हैं उसका इस्तेमाल करके ये बेहतर उत्पादन हासिल कर रही हैं। पानी संस्थान में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति CRP के रूप में भी ये काम कर रही हैं। फिलहाल ये जो कुछ ज़रूरी बातें थीं वो आप तक आ गई है। और अब फिलहाल चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गोंडा अपडेट्स है इसमें ऐसी कई बातें निकल के आती है जो आपके काम से जुड़ी होती है। आई होप कि ये बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी और ये जिन लोगों तक पहुँचनी चाहिए उन तक भी आप पहुँचा देंगे। फिलहाल चलते हैं, एक बेहतरीन सा सॉन्ग मुझे जहन में आया, मैंने कहा भाई चलिए आप तक पहुंचा देते हैं। और इस मौसम, इस सुबह में तो भाई ये सॉन्ग क्या ही कहना है, गज़ब का है, लाजवाब है। ये सॉन्ग बहुत प्यारा है, सुन के बताइए। हालांकि सुना है आपने,

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: भाई साहब थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन खुशी की बात यह कि ये बिल्कुल सच है। दरअसल अगर हम बात करें अंडर 19 की, सो गोंडा के ही लक्ष्य ने जड़ दिया है दोहरा शतक। जी हाँ, आपको हम बता दें कि इनका कहना है कि ये ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। सो लक्ष्य कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के रहने वाले हैं, और अंडर 19 में इस वक्त छाए हुए हैं गोंडा के लक्ष्य क्रिकेट में। कैसे क्या है, आइए सब बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: सो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि प्रदेश की जो खेल प्रतिभाओं हैं उसमें भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं गोंडा के लक्ष्य। जी हाँ, सो श्रीलंका दौरे में खेले गए पहले यूथ टेस्ट मुकाबले में लक्ष्य ने 207 रन की शानदार दोहरी शतकीय पारी खेली और ड्रॉ रहे मुकाबले में लक्ष्य ने 148 गेंद में शतक पूरा किया। इन्होंने 324 गेंद में 22 चौके और 3 छक्के जड़े। सो आपको हम बता दें ये गोंडा के ही रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं इनके प्रदर्शन से भारतीय टीम को जो है वो मजबूती ज़रूर मिली है और प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को अभी इन्होंने गौरवान्वित किया है। सो लक्ष्य की अचीवमेंट पर गोंडा में चूंकि खुशी का माहौल बना हुआ है। श्रीलंका ने 9 विकेट पर 424 रन बनाए। भारतीय टीम ने 173.5 ओवर में 576 रन बनाए। जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। सो लक्ष्य ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि क्रिकेट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, पापा ने इसी चाहत को देखते हुए 8 साल पहले गोंडा से हल्द्वानी भेजा जहां GNG एकेडमी में रहकर अपने करियर को संवारा, यहीं रह करके ट्रेनिंग ली और इस सेशन में रणजी में खेलने का मौका मिला, यहां से आगे बढ़ने के रास्ते खुल गए हैं। सो ऑफकोर्स मीडिया से बातचीत में इन्होंने बताया कि श्रीलंका दौरे में भारत की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनकर के ये काफ़ी खुश हैं और टीम के लिए दोहरा शतक इनके करियर की कुछ सुनहरी यादों में जुड़ गया है। सो दोहरी शतकीय पारी के दौरान इन्होंने सहज होकर बल्लेबाजी की जिसका इनको फ़ायदा मिला। सो इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट को पसंद करने वाले लक्ष्य ने बताया कि वैसे तो मुझे टीम की मांग के हिसाब से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव से परहेज नहीं, लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता हूं, साथ ही अपनी ऑफ स्पिन पर भी काम कर रहा हूं ताकि ऑलराउंडर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर सकूं। ये बातें खुद गोंडा के ही जो लक्ष्य रायचंदानी हैं इन्होंने अपनी बातचीत में कही है। सो लक्ष्य रायचंदानी इस वक्त आपको जैसा कि हमने बताया कि भाई अंडर 19 में भारतीय टीम के उप कप्तान हैं और श्रीलंका दौरे पर ज़बरदस्त दोहरा शतक जड़ दिया है जिसके बाद से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गोंडा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड लिटरली बहुत बड़ी बात है कि गोंडा से निकल करके आज अंडर 19 भारतीय टीम में उप कप्तान की भूमिका निभा रहे लक्ष्य रायचंदानी ने दोहरा शतक लगाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी जान करके ये काफ़ी ज़्यादा खुशी ज़रूर हुई होगी। फिलहाल लक्ष्य को लेकर के आपका क्या है मानना, आने वाले वक्त में हमारे गोंडा के जो लक्ष्य हैं वो आखिर किन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे होंगे, चलिए फटाफट से चैट बॉक्स पे आके बता सकते हैं आप। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM।
1: तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढ़े उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना।

0: बेटा छुटकी।
1: जी मैडम।
0: एक बात पूछे।
1: हाँ मैडम।
0: ये बताओ कि भगवान ने तुम्हें आँखें किस लिए दी हैं? पता है तुम्हें?
1: जी देखने के लिए।
0: अरे वाह छुटकी, तुम्हें तो सब पता है। अब ये बताओ कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कान किस लिए दिए हैं?
1: जी मुरे।

0: हाँ जी सुभाई, कई बार होता है ना कि इतनी बातें जो दुनिया भर में होती है उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न हम लोगों को कई बार पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें आई कहाँ से, हो क्या रही है। हमको जो सामने दिखता है बस हम उसी पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन आज आपको हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो आखिर ये बातें कैसी है? बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आखिर ये बातें कैसी है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात मिल गई है आरजे अदनान जो बता रहे हैं कि भाई इसके पीछे की कहानी दूसरी है। तो देखिए, ऐसे कई कहानियां हैं जो दिखती सामने से अलग है, लेकिन उनके पीछे की एक्चुअल कहानियां कुछ और होती हैं। उनमें से कुछ कहानियों को हम लाए हैं जो रियल लाइफ स्टोरी है, जो रियल लाइफ के मोमेंट्स हैं। क्या हैं, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा अधिकार, पहली बार मजदूरों को आजादी, जरूरी जो अधिकार थे और नियमों की शुरुआत करने वाले ऐसे मामलों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनकी वजह से आज कानून में वो नियम बन गए हैं। यानी कुछ ऐसे केसेस इतिहास में हुए हैं जिसकी वजह से आज हम ये सारे कानूनों को देखते हैं या इम्प्लीमेंट होते हुए समझ में आ रहा है। जैसे एक महिला की लड़ाई से बदल गया देश का कानून। जी हाँ, एक एनजीओ ने करोड़ों लोगों को अधिकार बचाए। भारत के इतिहास में कई ऐसे कानूनी मामले हुए जहां आम लोगों ने लड़ाई लड़ी और साबित कर दिया कि कई बार कोर्ट में सिर्फ फैसले नहीं होते, न्याय की जीत होती है जो समाज की दिशा को बदल देती है। एक फैसला जिसने संविधान को मजबूत बनाया वो था केशवानंद भारती केस 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया और अदालत ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल भावना को खत्म नहीं कर सकती। इस फैसले ने लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया। फिर बात आई 1984 की, जब पहली बार मजदूरों को आज़ादी बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस हुआ। जी हाँ, सो एक सामाजिक संगठन ने हरियाणा की पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पहली बार अदालत ने माना कि बंधुआ मजदूरी सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं बल्कि इंसानी गरिमा का उल्लंघन भी है। मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। फिर दौर आया 1984 का, जब अनाथ बच्चों को सुरक्षा का अधिकार मिला, लक्ष्मीकांत पांडे केस। जी हाँ, सो एक पत्रकार की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों के जरिए भारतीय बच्चों को गोद लेने के जो प्रोसेस है उस पर ध्यान दिया। इसके बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के लिए सुरक्षा नियम मजबूत हुए और इस केस ने हजारों अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित भी कर दिया। फिर वक्त आया 1985 का, फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार, ओल्गा टेलिस केस। जी हाँ, सो मुंबई के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के मामले में अदालत ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं, सम्मान के साथ जीवन जीना भी संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और इस फैसले ने कमजोर वर्गों के अधिकारों को नई पहचान दी। इसके बाद वक्त आया 1993 का, जब हुआ पहली बार मानवाधिकार उल्लंघन के लिए मुआवजा, नीलाबती बेहरा केस। जी हाँ, दरअसल 1987 में ओडिशा के एक युवक जो कि सुरेश बेहरा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, उसकी मां ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पहली बार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सरकार को जवाबदेह ठहराया और कंपनसेशन का फैसला भी सुनाया। फिर दौर आया 1997 का, जब पुलिस हिरासत में आम नागरिक की सुरक्षा की बात उठी और यह था डीके बसु केस। सो पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा और मौतें बढ़ रही थी। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा। इसके बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए कई अनिवार्य नियम बनाए गए। आज भी पुलिस गिरफ्तारी के प्रोसेस में इन दिशा निर्देशों का अपनी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आया, जिसके बारे में आपने शायद सुना भी है इससे पहले, लाखों कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार, विशाखा केस। जी हाँ, दरअसल 1992 में राजस्थान की भंवरी देवी के साथ हुए अपराध के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठा और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जिसमें पहली बार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के नियम बनाए गए। बाद में इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर 2013 में कानून भी बना। सो ये वो केसेस हैं, रहे हैं अपने इतिहास में भारत के, जहां से नियमों में बदलाव होता रहा है, जहां से कानून बदलते रहे हैं। हमने कहा ना, आज जिन कानूनों का हम लाभ हमको मिल जाता है, जिसके सहारे हम बहुत गर्व के साथ बोलते हैं कि हमें न्याय मिल जाएगा, उसके पीछे कई ऐसी लड़ाइयां हैं, कई ऐसे केसेस हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बदलाव आज भी ला रहे हैं और हमेशा रहेगा। तो ये शुरुआत होती है किसी एक इंसान से जिसके अंदर जागता है सही के लिए बोलने को लेकर के और गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ताकत, और यहीं से फिर चाहे वो संविधान हो या हुकूमत हो,
सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक आम इंसान की प्रॉब्लम आम इंसान काफ़ी अच्छे से समझता है। सो भाई, ये कुछ केसेस हमने आपको बता दी जिनकी वजह से आज भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज्ड हैं और जिससे हम नियम कानून चेंज्ड पाते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत रास आई होगी, और जाहिर है कि आज आप जान गए होंगे कि भाई ये जो नए नए अमेंडमेंट्स हुए, ये जो नए नए नियम कानून आए, और वो किन वजह से आए, आखिर किन केसेस के कारण ऐसा हुआ।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: अरे सुना
2: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चला

0: आने के लिए बिल्कुल ना दे। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, फिलहाल E20 को लेकर के कई बार कई सारी रील्स और कई सारी खबरें आ ही रही हैं कि भाई गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन पर असर पड़ रहा है, या इसी में पेट्रोल टंकियां और भी ज़्यादा मिलावट कर रही हैं जिससे गाड़ियां ख़राब हो रही है। सो तरह तरह की आपने वीडियोस देखी है, बातें सुनी है। चलिए इसी पे एक मामला जो हुआ E20 से नुकसान पर बड़ा फैसला दिया कोर्ट ने, क्या कहा और क्या मामला हुआ ये बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भारत में इथेनॉल मिला हुआ ईंधन E20 इस नीति को लेकर वाहन निर्माताओं की मुश्किलें जो है वो फ्यूचर में और बढ़ सकती है। सो चूंकि छत्तीसगढ़ की एक कंज्यूमर अदालत ने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के एक ग्राहक को कार बदल कर उसे E20 सक्षम इंजन वाली नई कार देने या 22 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सो ग्राहक का आरोप था कि भाई अनिवार्य रूप से E20 ईंधन इस्तेमाल की वजह से कार का इंजन खराब हो गया है। शिकायत करने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2024 में ग्रैंड विटारा हाइब्रिड कार खरीदी थी जो 21,913 किलोमीटर चलने के बाद ही इंजन में बार बार आने वाली खराबी की वजह से बंद हो गई। सो आयोग ने पाया कि कंपनी ने उनके निर्माण के 16 महीने पुराने स्टॉक वाली कार बेची थी जिसमें E20 फ्यूल के हिसाब से इंजन नहीं था। देवता का जो लॉजिक था वो ये था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से कार का इंजन और बाकी हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। वही कंपनी ने दलील दी कि कार में खराबी E20 पेट्रोल से नहीं बल्कि मिलावटी पेट्रोल से आई है। हालांकि उपभोक्ता कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और वारंटी होने के बावजूद कंपनी ने मरम्मत के लिए 5,30,000 रुपये की मांग की। सो इस एवज में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी को E20 सक्षम इंजन वाली नई कार देने या 22 लाख रुपए मुआवजा देने का कहा है। सो फिलहाल लगातार E20 ईंधन को लेकर के देश भर में अलग अलग जगह से हम रील्स में, न्यूज़ में और लोगों के ज़रिए सुनते आ रहे हैं और इसी में कई जगह ऐसी है, गोंडा में भी कई जगह ऐसे मामले पाए गए जहां पर और ज़्यादा मिलावट की जा रही थी या जहां पर मानक के हिसाब से चीज़ें नहीं चलाई जा रही थी। सो इससे हो ये रहा है कि जो वाहन स्वामी हैं, जो आम जन है, उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इंजिन्स पर। सो लगातार जो है वो हमको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर हम भी अपनी बाइक या कार लेकर जाते हैं पेट्रोल पंप और वहाँ से डलवाते हैं तो हमको ये इंश्योर करना ज़रूरी रहता है कि कहीं ये इतना मिलावटी ऑयल तो नहीं कि हमारी चीज़ें ख़राब हो जाए। क्या यह E20 मानक का है या इसको ज़्यादा इसमें मिलाया गया है या कुछ ऐसा है इसमें जो नहीं होना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों से जाहिर है हमको बचना होगा ताकि हमारी जो कार है या हमारी जो बाइक है, हमारा जो वाहन है, वो लंबे समय तक चल जाए। सो फिलहाल ये खबर जो थी वो हमें लगा कि भाई आप तक ज़रूर पहुंचा देनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर इंसान, हर शख्स फेस कर रहा है और इसको लेकर के जब कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सारे केस के बाद जो बात निकल के आई वो हमने आप तक पहुंचा दी है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
11: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थली 9.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुबह काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, तो चलिए बताते हैं किसने क्या कुछ लिखा है। लास्ट मैसेज जो हमने रीड किया था उसके बाद भी कुछ मैसेजेस आए हैं, जिसमें आपके कुछ पैगाम हैं, कुछ बातें हैं जो आपने हमसे साझा की हैं।
12: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, Aajya Khan.

हमारी प्रीति शुक्ल जी का मैसेज आ गया है, रोज़मर्रा जिंदगी से मच खता हुई है, बहुत ही शानदार थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा। आशु जी ने गुड मॉर्निंग बोला है और लिखा है, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, क्या बात है, वेरी नाइस। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवासविका, सदनान सर जी बेस्ट ऑफ लक एंड गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका दिन भी शुभ हो। हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, नमस्ते गुड मॉर्निंग आपको भी। तीर्थ प्रसाद सोनी जी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और लवली सिंह लिखते हैं, अदनान सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला, आपको भी हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग लवली, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमारी गीता जी भी हैं, गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू। लक्ष्य लक्ष्य जो है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और अपने गुंडा का नाम रोशन करता रहे, थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य के बारे में आपने बताया। और सर जी आपके गाने की चॉइस हमारी चॉइस से मिल जाती है, दिल खुश हो जाता है, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। सो चलिए भाई, फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आज का मॉर्निंग वाला शो कैसा रहा ये हमको कॉमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन के साथ।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
9: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
10: सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जया और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना शो गांव की गूंज। आज हमारी पूरी टीम यानी मैं, समता दी, गीता दी और किरण दी खड़े हैं पंजाब की उस पावन धरती पर जहां हर सांस में मेहनत की खुशबू है और हवाओं में घी, गुड़ और प्यार की मिठास खुली हुई है। यहाँ की मिट्टी जैसे हर आने वालों को अपनेपन से गले लगा लेती है।
11: बिल्कुल सही कहा जया, जैसे ही हमारी गाड़ी ने इस खूबसूरत गांव नूरपुर कला की सीमा को छुआ, खिड़की से बाहर का नजारा देखकर तो मैं तो जैसे कुछ पल के लिए खो ही गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरे खेतों पर पीले रंग की सुनहरी चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक लहलहाती सरसों, उनके बीच से गुजरती हुई हवा और वो हल्की सी मिट्टी की खुशबू दिल को एक अजीब सी शांति दे रही थी।
12: और सिर्फ खेत ही नहीं समता, यहाँ के लोग भी उतने ही रंगीन और दिलदार हैं। रास्ते में हमें जो भी मिला, हर किसी ने मुस्कुराकर जी आया नू कहकर हमारा स्वागत किया। ऐसा अपनापन शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। और गीता दी, आपने देखा वो बुजुर्ग बाबा जी जो बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए हैं, देखिए कैसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं।
13: हाँ किरण, मैंने उन्हें बहुत गौर से देखा। उनकी सफेद दाढ़ी, रंग बिरंगी पगड़ी और चेहरे की झुर्रियों में छिपी वो गहरी मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर पूरे जीवन की कहानियाँ लिखी हूँ। जब हम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने धीमे से कहा, पुत्र खुश रहो, रब रखा। उस एक आशीर्वाद में इतना स्नेह था कि मेरा तो दिल भर गया।
10: सच में यही तो है असली पंजाब, जहाँ खेतों में हरियाली है, दिलों में सादगी है और हर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे कोई कहानी कह रहा है।
11: और जया, क्या तुमने गौर किया, दूर से ढोल की हल्की हल्की आवाज भी आ रही है। लगता है गांव में कहीं और छोटा सा जश्न भी चल रहा है, शायद फसल की खुशी या फिर कोई पारिवारिक समारोह हो सकता है। यहाँ तो हर छोटी बात भी उत्सव बन जाती है।
12: और हाँ, वो देखो उधर खेतों में काम करते किसान, उनके चेहरे पर थकान तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा संतोष और गर्व है। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से हमारे देश का पेट भरते हैं। सच में इनकी जिंदगी एक प्रेरणा है।
13: और इन खेतों के बीच से गुजरती हुई कच्ची पगडंडी को तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपने अंदर किसी सादगी भरी दुनिया में घसीट कर ले जा रही हो। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ हर पल जैसे ठहर कर जीने का मन करता है।
10: तो आइए आज हम आपको इस खूबसूरत गांव नूपुरपुर कला की सैर कराएंगे, यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे और उनकी खुशियों और संघर्ष

0: अरे वाह, इस मधुर संगीत ने तो जैसे पूरे माहौल में जान डाल दी है। ढोलक की थाप और हवा में घुली सरसों की खुशबू, दिल अपने आप ही झूमने लगता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ? गुरु नाम सिंह जी के विशाल खेत में। और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जहाँ तक आंख जाए बस हरियाली ही हरियाली है। सच कहूँ, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसे पंजाब का अन्न भंडार भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल किरण दी, और देखो ना, इस मिट्टी का रंग भी कितना गहरा और समृद्ध है, जैसे इसमें वर्षों की मेहनत, परंपरा और प्रकृति का आशीर्वाद मिला हो। गीता दीदी, आप तो हमेशा बारीकियों पर ध्यान देती हो, आपको यहाँ की खेती में सबसे खास क्या लगा?
2: यहाँ आकर सबसे ज्यादा जो चीज दिल को छूती है वो है परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम। एक तरफ पुराने समय की वो कुएं जिनमें कभी बैलों के सहारे पानी निकाला जाता था, उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, और दूसरी तरफ आज की किसान ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर पंप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अरे वाह, मैंने गौर किया कि यहाँ के खेतों में जो पानी है उसकी एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। हर चीज को इतने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि प्रकृति का सम्मान भी बना रहे और फसल भी अच्छी हो।
2: बिल्कुल, यहाँ का किसान अब सिर्फ हवा चलाने वाला ही नहीं रहा, बल्कि वो एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति बन चुका है। उसे पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितनी खाद देनी है, और पानी का सही

0: उपयोग कैसे करना है, यही वजह है ना कि यहाँ की जमीन हर साल सोना उगलती है।
1: पंजाब को पांच नदियों की धरती भी कहा जाता है और उन्हीं नदियों के आशीर्वाद इन खेतों में साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, वो सामने बहती नहर चांदी की लकीर जैसी चमक रही है।
2: सच में जया, ये नहरें ही तो इस गांव की जीवन रेखा है। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही इन खेतों में पानी बहता है, और पानी ही तो जीवन है, फसलों का भी और किसानों का भी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ खेती सिर्फ एक काम की नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये खेत उनकी पहचान हो।
3: अभी मैंने गुरनाम सिंह जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि पुत्र, ये जमीन हमारी माँ है, हम इसे जितना प्यार देते हैं ये हमें उससे कई गुना वापस देती है। सुनकर सच में दिल भर आया।
0: और यही रिश्ता इस मिट्टी को इतना खास बनाता है, प्यार, मेहनत और विश्वास का रिश्ता।
1: तो दोस्तों, इस हरियाली, इस मेहनत और इस अनमोल मिट्टी को सलाम करते हुए चलिए इस ताजी हवा और खेतों की खुशबू के बीच सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: तो भी इसी तरह छू जाए जैसे हमें ये नजारा छू रहा है।
3: बने रहिए हमारे साथ
0: क्योंकि सफर अभी जारी है गांव की गूंज के साथ।

0: अब हम गांव के अंदरूनी हिस्से में हैं और सच कहूं तो यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहां के घर ओहो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजबूत, भव्य और किसी भी अकेलेपन से ये बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, जहां रंग बिरंगी पीढ़ियां छोटी कुर्सियां जैसे सजी हुई हों।
1: बिल्कुल समता, और जया तुमने एक बात और नोटिस की है, यहाँ के घरों की दीवारें सिर्फ सीमेंट की ही नहीं है बल्कि उन पर हाथों की मेहनत और कला की छाप है। मिट्टी के लेप से बने खूबसूरत पैटर्न, रंगों से कई चित्रकारी, औरतें इससे चौक पूर्णा कहती हैं। हर डिजाइन जैसे कोई कहानी कह रहा हो, खुशी की, त्योहारों की और परंपराओं की।
2: हाँ किरण, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। मालूम है, मैं एक घर के अंदर गई और वहाँ जाके देखा, फर्श इतना साफ कि जैसे अभी अभी धोकर चमकाया गया हो, बर्तन एकदम करीने से सजे हुए चमकदार, हर चीज अपनी जगह चकाचक।
0: बिल्कुल, और खास बात ये है कि ये सफाई सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही दिखाई देती है। मैंने ध्यान दिया, किसी भी घर के सामने कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं पड़ा है, हर गली साफ, हर मोड़ साफ सुथरा, जैसे पूरा गांव मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो।
1: और ये सब सिर्फ औरतों का काम नहीं है, यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी खेतों में, कभी घर की देखभाल, कभी पशुओं की सेवा, हर काम दोनों समान मिलकर करते हैं।
2: और हाँ, मैंने एक घर में और देखा, चाची जी रसोई में तंदूर पर रोटियां बना रही थी और उनके साथ ही चाचा जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और पशुओं को चारा भी दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान थी लेकिन उससे ज्यादा कहीं संतोष झलक रहा था।
0: और ये जो मेहनत है ना, यही इस मिट्टी की असली ताकत है। यूं ही नहीं कहा जाता है पंजाबियों के हाथों में सोना होता है, ये लोग जहां भी मेहनत करते हैं वहां समृद्धि अपने आप चली आती है।
3: सच में, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हैं, ना सिर्फ अपने घर को साफ रखते हैं बल्कि अपनी जगह को भी उतना ही महत्व देते हैं। पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पानी की बचत करना और गांव को स्वच्छ बनाए रखना, ये सब इनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है।
1: और देखो देखो, हर घर के बाहर छोटे छोटे गमले भी रखे हैं, कहीं तुलसी का पौधा, कहीं गेंदे का फूल, कहीं गुलाब, जैसे हर घर अपनी खुशबू से पूरे गांव को महका रहा हो।
2: देखो आंगन के उस कोने में वो जो बड़ा सा एक मिट्टी का तंदूर रखा है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अभी अभी एक चाची जी ने हमें गरम गरम रोटी सेक कर खिलाई, जिस पर सफेद मक्खन इतना ज्यादा लगा हुआ था कि सच में रोटी का वजन संभालना मुश्किल हो रहा था।
0: और उस रोटी में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उसमें उनके हाथों की मेहनत और दिल का प्यार भी मिला हुआ था।
3: यही तो है पंजाब का असली दिल, मेहनत, सादगी, सफाई और ढेर सारा प्यार। यहाँ हर घर एक कहानी है और हर आंगन एक एहसास है
1: और हर इंसान एक मिसाल है मेहनत और जागरूकता की।
2: तो चलिए इस खूबसूरत जीवन शैली और इन सच्चे लोगों को दिल से सलाम करते हैं
3: और इस सादगी और प्रेम को समर्पित करता हुआ अब हमारा अगला गीत।

0: और इस समय हम लोग गांव के केंद्र यानी सांझी चौपाल पर हैं। और सच कहूं, यहां आकर ऐसा लगता है जैसे गांव की धड़कन यही बसती हो। इस विशाल बरगद के पेड़ को देखिए, इसकी जड़ों में जैसे वर्षों की कहानियां समाई हुई हैं। इसी छांव में बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग फैसले लेते हैं और शाम होते ही यही जगह हंसी और ठहाकों और किस्सों से गूंज उठती है।
1: बिल्कुल गीता दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा 4-5 बुजुर्ग एक साथ बैठे थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कोई अपनी पुरानी यादें सुना रहा था। एक बाबा जी कह रहे थे कि पहले के जमाने में फैसले भी दिल से होते थे और रिश्ते भी। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो आजकल कम ही देखने को मिलती है।
2: और यहाँ बड़े ही नहीं, यहाँ बच्चे भी चौपाल के आसपास खेलते नजर आ रहे हैं। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह चौपाल हर उम्र के बच्चों को जोड़ने का काम करता है।
3: सही कहा समता दी, ये चौपाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, जहां हर समस्या का हल, हर खुशी का जश्न और हर दुखी का सहारा है।
0: और हाँ, इसी चौपाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खास परंपरा है, सांझा चूल्हा। किरण, तुमने तो इसके बारे में सुना ही है ना?
1: हाँ गीता दी, और मैंने आज खुद भी देखा, कुछ घरों में आज भी लोग मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है और कोई बच्चों को खाना परोस रहा है। वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि रिश्ते पकते हैं।
2: सच में, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ सुख दुख में कोई अकेला नहीं होता है। अगर किसी के घर कोई परेशानी आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, और अगर खुशी का माहौल हो तो पूरा गांव एक साथ जश्न मनाता है।
3: यही तो है असली एकता, जहां मैं से ज्यादा हम की अहमियत होती है।
0: और चौपाल के इस माहौल में एक और चीज है जो दिल को बहुत खुश करती है, वो है यहाँ का अपनापन। मैंने एक बुजुर्ग दादी जी से बात की तो उन्होंने मुझसे बताया, बेटा यहाँ कोई पराया नहीं होंदा, सब अपने ही होंदे। सुनकर मन में, सच में मन भावुक हो उठा।
1: और देखो देखो, चौपाल से थोड़ी ही दूर पर वो खुला मैदान, वहाँ का जबरदस्त नजारा है।
2: अरे वाह, वहाँ तो कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है। क्या जोश है, क्या ऊर्जा है, हर खिलाड़ी जैसे मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हो। कबड्डी कबड्डी की आवाज पूरे माहौल को और भी जोशीला बना रही है।
0: और इन नौजवानों को तो देखो, लंबे चौड़े मजबूत कद काठी, सच में हर एक गबरू जवान किसी शेर से कम नहीं लगता है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीत का जुनून साफ दिखाई देता है।
1: मैंने एक खिलाड़ी से पूछा, थकते नहीं हो क्या? तो वो हंस कर बोला, पंजाबी कभी थकते नहीं, बस थोड़ा रुक कर फिर दोगुनी ताकत के साथ खेलते हैं।
2: वाह, यही जज्बा तो पंजाब की पहचान है, मेहनत, हिम्मत और जोश का संगम।
3: और सिर्फ खेल ही नहीं, यहाँ के युवाओं में अपने गांव और परंपराओं के लिए गहरा लगाव भी है। वे आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए हैं।
0: सच में, ये चौपाल, ये सांझा चूल्हा, ये खेल का मैदान, सब मिलकर इस गांव की आत्मा को जीवित रखते हैं।
1: और यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो, ताकि हम इन पलों को पूरी तरह से जी सकें।
2: अब तो मन कर रहा है कि हम भी इस माहौल का हिस्सा बन जाएं, कभी चौपाल में बैठकर बातें करें और कभी कबड्डी खेलें, तो कभी सांझे चूल्हे पर रोटी सेकें।
3: बिल्कुल, तो चलिए इस उत्साह, इस अपनेपन और इस जीवन संस्कृति को सलाम करते हुए,
1: और हाँ, थोड़ा जोश आपके दिलों में भरते हैं,
0: ताकि आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर सकें
2: और झूम उठे इस रंग में।
3: पेश है एक दमदार भांगड़ा बीट जो आपके दिल की धड़कनों को भी थिरकने पर मजबूर कर देगी।

0: जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, पूरे नूरपुर कला में एक अजीब सी शांति उतर आई है। देखिए, आसमान के रंग भी बदल गए हैं, नीले से सुनहरे और अब हल्के नारंगी से गहरे लाल में ढलते हुए। खेतों के ऊपर पंछी उड़ते हुए और घोंसलों की ओर लौट रहे हैं और हवा में एक ठंडी सी मिठास घुल गई है।
1: हाँ किरण, और इस वक्त गुरुद्वारा साहिब से आती अरदास की वो पवित्र आवाज सच में मन को भीतर तक शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा हो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। उस आवाज में एक ऐसी शक्ति है जो सारे दिन शरीर की थकान और भागदौड़ को पल में मिटा देती है।
2: और देखो ना, जैसे ही अरदास की आवाज गूंजती है, गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कोई आंखें बंद कर लेता है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एक जुड़ाव है अपने विश्वास से, अपनी संस्कृति से।
3: सच में ये दृश्य दिल को छू लेने वाला है। शहरों में हम भागते रहते हैं समय के पीछे, काम के पीछे, लेकिन यहाँ हर पल जीने का एक अलग सलीका है। यहाँ शांति को महसूस किया जाता है और उसे जिया भी जाता है।
0: जैसे जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है, गांव की गलियों में टिमटिमाते बल्ब और घरों के आंगन में जलते दिए एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रहे हैं। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही है और कहीं से रसोई में बनती हुई रोटियों की खुशबू।
1: वास्तव में किरण, यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि असली सुकून ऊंची ऊंची इमारतों या महलों में नहीं है, बल्कि इन कच्चे पक्के रास्तों में, इन खुले आंगनों में और सबसे ज्यादा इन खुले दिलों में मिलता है।
2: और आज के इस एक घंटे के सफर में हमने सिर्फ एक गांव नहीं देखा बल्कि एक जीवन शैली को महसूस किया है। मेहनत, सादगी, अपनापन और एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा, ये सब हमने अपनी आँखों से देखा, अपने दिल से महसूस भी किया।
0: और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि यहाँ हर इंसान मुस्कुराते हुए मिला, चाहे वो किसान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के पास देने के लिए प्यार ही प्यार है।
1: और सच में हम यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जा रहे हैं बल्कि एक सीख भी लेकर जा रहे हैं कि जिंदगी को सरल बनाकर, रिश्तों मजबूत बनाकर असली खुशी पाई जा सकती है।
2: और हमारी ये पोटली अब सच में भर चुकी है ढेर सारी प्यारी यादों से, लोगों के स्नेह से और इस मिट्टी की खुशबू से।
3: तो रेडियो सुनने वालों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। 89.6 FM गांव की गूंज की पूरी टीम, मैं जया, मेरे साथ समता दी, किरण दी और गीता दी लेते हैं आपसे विदा।
0: लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और हम उसे आपके पास लाते रहेंगे।
1: तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गांव, नई मिट्टी और नई कहानियों के साथ।
2: तब तक आप भी अपने आसपास की खुशियों को महसूस कीजिए, अपने लोगों से जुड़िए
3: और याद रखिए, जब गांव समृद्ध होगा तभी देश मजबूत होगा।

0: नहीं जाता ना।
1: हेलो,
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: हुक्कई से खेलन जइबो,

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे होंगे। भाई आज गोंडा में मौसम तो बड़ा सुहाना हो रखा है, लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ साथ गर्मी, यानी कि गर्मी तो है ही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या लग रहा है आपको कि अब बारिश होगी आज या फिर ऐसे ही गर्मी मेंटेन रहेगी? अब भाई मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, आप भी अनुमान लगाइए क्या होना है। भाई हम सब तो दिल से प्रे कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो बारिश है ना, ये सिलसिला बड़ी धीरे और बहुत ज़्यादा स्लो शुरू होता है, यानी कि जब पूरे देश में बारिश हो जाएगी, सब बारिश का मजा चख लेंगे, तब यहाँ बारिश शुरू होगी। लेकिन इसको आप उत्तर प्रदेश की कमी मत समझिए, क्योंकि हमारे बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम सब उस पर कभी गौर नहीं करते, लेकिन हमें प्राउड फील करना चाहिए एज अ उत्तर प्रदेशी, यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी होने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं और हमें विरासत में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली। अब आप सोचेंगे विरासत में किसकी ज़मीन या खेत ले ली है ये? देखिए भैया, खेत और ज़मीन की बात तो मैं नहीं कर रही, मैं आज बात करूँगी कलाओं की। अब आप सोचे होंगे कि भैया हमारे उत्तर प्रदेश में चिकनकारी है और घूमने लायक अच्छी अच्छी जगह हैं, सारे भगवान हमारे उत्तर प्रदेश में ही जो है उनका जन्म हुआ था, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे यहाँ। लेकिन भैया आपको यही नहीं पता, हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी कलाएँ हैं जो आपको, आपने नोटिस किया है, आपको पता भी है, लेकिन उसके बारे में आप नहीं जानते। पर मुझे लगता है कि एज अ उत्तर प्रदेशी होने के नाते आपको सभी कलाओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए, यानी उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर कोई आपके सामने महाराष्ट्र का इंसान है और उससे आप पूछेंगे भैया लावणी क्या होता है, अब वो अगर ये नहीं बता पाएगा कि लावणी क्या होता है, तो आप कहेंगे अरे कैसे महाराष्ट्रियन हो कि तुम्हें लावणी के बारे में नहीं पता। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप कैसे उत्तर प्रदेशी हैं कि आपको उत्तर प्रदेश की कलाओं के बारे में पता ही नहीं है, आप सिर्फ चिकनकारी जानते हैं या तो बनारसी साड़ियों के बारे में जानते हैं और इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पता। भाई मैं आपको बताती हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। भैया देखिए, अगर आप ठीक हैं तो ठीक है, नहीं ठीक हैं तो आज चिंता बिल्कुल मत करिए। आज हम आपको, आज के पूरे एपिसोड में आपका मूड बिल्कुल ठीक करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही फ्रेश, जिंदा, धमाकेदार है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कथक की। अब आप सोचेंगे कथक तो हमने देवदास मूवी में देखा था और एक कलंक मूवी में देखा था और कई सारी मूवी में एक आध गाने में कथक हो ही जाता है, लेकिन इतना क्या खास है कथक के बारे में? भैया बहुत खास है, आपको बता दूं अगर कथक में कुछ खास ना होता तो हर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से लेकर के श्रद्धा कपूर के बाद प्रीति जिंटा, ऐसी कई सारी फेमस हीरोइन कथक ज़रूर जो है वो क्यों सीखती, ऑलमोस्ट सभी ने कथक ज़रूर सीखा हुआ है, वो चाहे किसी और डांस फॉर्म की तरफ जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन कथक सबका फेवरेट है और आज भी कई सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कथक ज़रूर सीखती हैं और करती हैं, जिसमें से हमारी नीता अंबानी जैसी और उनकी बहुएं भी शामिल हैं। जी हाँ, कथक इंडिया का सबसे खूबसूरत क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो क्लासिकल डांस है तो बहुत ज़्यादा सीरियस और बोरिंग चीज़ होगी, लेकिन यही तो आपको नहीं पता, क्लासिकल चीज़ें ना बड़ी दमदार होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए भैया आज हम आपको दिखाएंगे कि कथक सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है जिसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, मस्ती से भरी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ही अलग दिखा रही हैं, ये मस्ती कहाँ कथक में आ जाएगी, बहुत स्लो डांस है। सोचिए जरा कि बहुत साल पहले मंदिरों में कुछ लोग बैठे होते हैं जिनको हम कथाकार्स कहते हैं। अब आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि कथाकार यानी कि जो कथा सुनाते होंगे। जी हाँ, ये लोग रामायण और महाभारत जैसी कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन सिर्फ बोल के नहीं, अपने हाथों से, चेहरे से और अपनी पूरी बॉडी से कहानियाँ आपको सुनाते थे। अब आप सोच रहे होंगे बॉडी से कौन सिखाता है, ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता है यही तो एक बहुत बड़ी कला होती है, जब आप अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करके कहानी को समझाते थे, उसका मतलब समझाते थे और उसको सिर्फ एक सिंपल कहानी सुनाने को ना लेकर के एक पूरा माहौल जमा देते थे आप। जी हाँ, कैसे करते थे मैं आपको बताती हूँ भैया। देखिए, जब वो कोई भी कहानी सुना रहे होते हैं तो वो अपने हाथों से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उस कहानी में हो रहे मूवमेंट के, जो भी सीन चल रहा है उसको भी एक्सप्रेस करते थे और वहीं से शुरू हुआ कथक का सफ़र। और फिर क्या हुआ भैया, इसके बाद ये कला मंदिर से निकल के पहुंच गई राजा महाराजाओं के दरबार में, वहाँ इसका पूरा स्टाइल ही बदल गया, जहाँ शान और शौकत ज़्यादा तेज़, चक्कर और ज़्यादा चमक धमक होती थी।
और सबसे मजेदार बात यह है कि वहीं से कथक का बॉलीवुड गानों में भी ठुमका लग जाता था। जी हाँ, वहीं से शुरू हुआ कि कथक अब मंदिरों से निकल के राजा के महल और राजा के महल से निकल के बॉलीवुड तक

जी, क्योंकि वक्त आपका 12 हो चुका है आपकी ज्ञानश्री लाइफ का। कंफर्टेबल हो जाइए और रेडी हो जाइए, क्योंकि अगले एक घंटे में आप सुनने वाले हैं अपने कथक की बेहतरीन कहानियाँ, क्या था क्या नहीं था। चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, हम चलते हैं अपने सफ़र में। लेकिन इस सफ़र को शुरू करने से पहले आपको मौका देती हूँ, जाइए चाय बनाइए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। चाय बनाइए, चाय लेके बैठिए और इस सफ़र को एंजॉय करिए। चाय बनाने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना। आपको छोड़ जाती हूँ इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। सॉन्ग के बाद आएंगे और हम बात करेंगे कथक की। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव। भाई आज हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट, साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश की आन बान शान कथक की कहानी। जी हाँ, कथक के बारे में हमने थोड़ा सा तो समझा, लेकिन अभी इसकी और सारी कहानी बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या ही कहानी बाकी। देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो हमने बताया कि ये कहाँ से कहाँ तक का सफ़र इसने तय किया है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि भैया इसकी ओरिजिन आखिर कहाँ से हुआ था। ये किसी भी चीज़ को जानने के पहले उसके ओरिजिन की स्टोरी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। भैया इतना तो हम जान गए कि ये मंदिर से दरबार का तक इनका सफ़र शुरू हुआ और वहाँ से फिर बॉलीवुड। कई सदियों पीछे उस ज़माने में जब कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, ना टीवी हुआ करता था, ना इंटरनेट, लोग सिर्फ कहानियाँ ही सुनते थे एक इंसान के मुंह से, और वो इंसान होता था कथाकार। ये कथाकार लोग जो है वो मंदिर में बैठ के रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं सुनाते थे। जब वो राम जी की बातें करते थे तो उनका हाथ ऐसी मुद्रा बनाता था जिसमें वो धनुष दिखाते थे। जी हाँ, अगर कृष्ण जी की बात करते थे तो चेहरे पर शरारत ले आते थे, शरारत वाली फीलिंग इमोशन ले आते थे, वही मुस्कान लाते थे जो कृष्ण जी के चेहरे पे दिखती थी। धीरे धीरे कथाकारों ने स्टोरी टेलिंग इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गई कि उसमें से रिदम भी ऐड होने लग गया और मूवमेंट भी जुड़ गया, और बस यहीं से जन्म हुआ कथाकार से कथक का। अब सुनिए एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। कुछ साल बाद इंडिया में आ गए मुगल, जी हाँ मुगल शासक, और कथक सीधा पहुँच गया उनके शाही दरबार में। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था दोस्तों, क्योंकि मंदिर का सिंपल भक्ति भरा डांस और वहाँ से चला गया वो सीधा मुगल के रॉयल परफॉर्मेंस में। उसके बाद इनके कॉस्ट्यूम में मुगल फैशन शामिल हुआ। पहले जब कथक हुआ करती थी तो इंडियन अटायर जिसमें घाघरा चोली हुआ करती थी वो वुमेन पहनती थी, और इंडियन जो है वो कुर्ता पहनते थे या फिर धोती पहनते थे। उसके बाद मुगल जब आए, मुगल ने इसमें अपने कॉस्ट्यूम को, अपने फैशन को इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने कथक की एक पूरी ड्रेस बनाई जिसको हम अनारकली के नाम से भी जानते हैं। अनारकली पहनती थी जिस ड्रेस को, उसी का नाम उन पे पड़ गया था, और वो एक कथक की ड्रेस हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा घेरा होता था, जैसे अनारकली और खूबसूरत अंगरखा। अंगरखा भी आप जानते हैं जो पहले के ज़माने में ज़्यादातर मेल पहनते थे, उसके बाद फीमेल्स भी अंगरखा पहनना शुरू कर दी। इसमें पर्शियन डांस स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अटैच हुआ, और घुंघरू इसमें लगाए गए जिससे तेज़ चक्कर लगाएं या फिर पैरों की जो मूवमेंट होती थी उससे एक रिदम बनता था, और वो इसकी शान और ज़्यादा बढ़ा दी ताकि राजा महाराजा ये देखकर वाह वाह करें, और जो कथक करने वाले होते थे, जो वो कलाकार होते थे, उनकी भी इनकम हो जाए। और उसको रोज़ कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को करने की सोचते हैं, कोई कला है, तो कला अपने एक फिक्स्ड रूप में नहीं होती, वो हमेशा हर दिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतर होने लग जाएगी। ऐसे ही कथक में बहुत सारे चेंजेस आए, अटायर से लेकर के घुंघरू तक, घुंघरू से लेकर के उसके मुद्रा के चेंज में, लेकिन जो इसकी चमक है वो दिन ब दिन बढ़ती गई, कभी भी कम नहीं हुई। इसी दौर में कथक को अलग अलग स्टाइल में बांट दिया गया। पहले था लखनऊ का घराना, जहां फोकस था ग्रेस, खूबसूरती और इमोशंस पे। दूसरा जयपुर घराना, जी हाँ वही रॉयल्स, जहां फोकस था पावरफुल और फास्ट फुटवर्क का। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप जयपुर की कोई कहानी सुनते हैं, वहाँ पे कथक होता है, तो उनके फुट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं नोटिस किया ना, तो नेक्स्ट कोई आप मूवी देखिएगा या कोई स्टोरी सुनिएगा या कोई वीडियो देखिएगा जिसमें आप ये नोट करेंगे कि जो कथक होता है वो हर जगह पर अलग अलग टाइप से परफॉर्म होता है। फिर आया अंग्रेज़ों का ज़माना, यानी कि हमारे अंग्रेज़ आए भारत पे शासन करने। उस वक्त कथक जैसी क्लासिकल डांस फॉर्म को थोड़ी कम इज्जत देने लग गए, क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपनी चीज़ें, अपने वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। कथक के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल दौर था, लेकिन कहते हैं ना कि आपको दबाया जा सकता है लेकिन छिपाया कभी नहीं जा सकता। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कथक ने फिर से एक नई उड़ान भरी। जो खोई हुई शान थी वो उसे वापस मिल गई। सरकार ने अलग अलग संस्थानों में कला को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और आज कथक दुनिया भर में अपना एक बहुत ही बेहतर मकान लेकर बैठा हुआ है। जी हाँ, अगर आप इंडिया में ही नहीं बल्कि आप किसी फॉरेन कंट्री भी ट्रैवल करते हैं, एक कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, कोई भी आप कंट्री देख ले, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कथक डांस का, डांस सिखाने वाले मिल जाएंगे। वहाँ पे ऐसे स्टूडियोज़ होंगे जहाँ पे कथक सिखाई जा रही होगी। वहाँ के जो लोग हैं जो कथक करते हैं वो पूरा उसी फॉर्म में होते हैं जैसे वो इंडियन हैं।
तो दोस्तों ये कैसा एक सिंपल मंदिर की कहानी, शाही दरबार, शाही दरबार से जयपुर, लखनऊ, लखनऊ से अंग्रेज़ के पास, अंग्रेज़ से सीधा ये अपने एक अलग रूप लेके सामने आई, ये तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। जी हाँ, फैक्ट्स भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, उसके पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ और जल्दी से आ जाना है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में ये बताना है कि आपने कथक के बारे में कब सुना था पहली बार, क्योंकि देखिए हम सब मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही हैं और लखनऊ तो भैया हमारे जस्ट पास ही में है। हम लोग 3 घंटे में पहुँच जाते, 3 घंटा भी नहीं लगता, 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग इतनी बड़ी कला जो कि हम लोग कहते हैं कि लखनऊ से जुड़ी हुई है और उसको हम लोग बिल्कुल भूले हुए थे, उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। तो आपने पहली बार इसके बारे में कब सुना था, आपकी मैसेजेस का इंतज़ार करूंगी। तब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कथक के बारे में।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयुषी, लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं कथक की, लेकिन साथ में एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट। जी हाँ, प्लेलिस्ट एंजॉय करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कथक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज्ञान फैलाना मेरा काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों को अपनी चीज़ के बारे में बताना मुझे लगता है बड़ा महान काम है जो मैं आज कर रही हूँ। चलते हैं हम फैक्ट्स की तरफ, जो हमें जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ पूछे ना कि आपके उत्तर प्रदेश में आखिर है क्या, तो भैया उसे बिठाना है, उनके थोड़ा सर पे हाथ हाथ फेरना है और उन्हें बताना है कि आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में है क्या चीज़। देखिए भैया, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कथक की, तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिक फैक्ट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। अब दोस्तों रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो आप ज़रूर कहेंगे कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर एक से। पता है आपको कि एक कथक डांसर अपने पैरों में कितने घुंघरू पहनता है? अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, दो एक जोड़ी घुंघरू होता है और उसमें कितने घुंघरू होते हैं, इसका क्या ही मतलब बनता है? नहीं, मतलब तो बनता है। देखिए, सिर्फ 5 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 100 से 200 तक के घुंघरू कथक डांसर अपने पैरों में पहनता है। एक पैर में इतने घुंघरू, और वो भी बेकार नहीं बनते, उनको बहुत टाइटली बांधा जाता है, जिससे कि वो अपना जो है, जो उनकी रियल म्यूज़िक है, जो आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचे। साथ ही साथ डांस करते वक्त कथक डांसर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपके पैरों में पीतल, जो कि एक हैवी मेटल होता है, उसके 100 घुंघरू अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 किलो आपके एक पैर में बंधा हो, और तब आपको डांस करना हो। ये कला इसीलिए तो एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत बड़ी है। और जो कलाकार होते हैं, उनको भी कहते हैं ना कि कलाकार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत लगती है। और कुछ लोग जो टैलेंटेड होते हैं, वही कथक कर पाते हैं, वही किसी कला को अपना पाते हैं और उसके पीछे अपना जीवन लगा पाते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है इसमें। उसके बाद नंबर दो की बात करें, तो भैया कथक जो होता है वो उसमें चक्कर्स होते हैं, यानी कि चक्कर ये नहीं कि कोई चक्कर खा के गिर गया, यानी कि स्पिन्स। ये एक नॉर्मल स्पिन की तरह नहीं होता, यानी एक नॉर्मल घुमाव नहीं होता इसमें। ये एक ट्रेंड कथक को लगातार 50 से ज़्यादा चक्कर लगाते हैं। अब आप सोचिए, जब आप एक चक्कर लगाते हैं, दो चक्कर लगाते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 चक्कर लगाते हैं, तभी आपको लगता है अरे बाबा, अब तो हम गिर ही जाएंगे। लेकिन एक कथक डांसर जो कि एक बार में 50 से ज़्यादा चक्कर लगाता है बिना रुके, अपनी बॉडी को संभाल के, उसको कितनी मेहनत लगती होगी। बिना गिरे वो अपनी डेडिकेशन जो है अपनी कला के लिए इतनी ज़्यादा रखता है। इसीलिए आप जब कथक को देखेंगे तो आपको उसमें एक ग्रेस दिखेगा, जो आपको बाकी डांस में शायद ना नज़र आए। सोचिए जरा, अगर आप 5 चक्कर लगाएं तो सर घूमने लगेगा, लेकिन ये कलाकार 50 से भी ज़्यादा चक्कर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात कथक में ये है कि आपको अपनी पूरी बॉडी पे कंट्रोल चाहिए। पूरी बॉडी पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप गिरे नहीं, बल्कि आपको चेहरे से एक्सप्रेशन भी देना है, हाथों से मुद्राएँ भी बनानी है, अपनी बॉडी को कंट्रोल भी करना है कि वो गिरे नहीं, अपने पैरों को भी घुमाना है, घुंघरू भी बजाने हैं, क्योंकि आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही घुंघरू की आवाज़ आनी चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ कोई एक इंसान कैसे कर सकता है? कर सकता है भाई, अगर उसके अंदर टैलेंट हो। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए, कथक में एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं सवाल जवाब। हम कहते हैं भैया KBC चल रहा है क्या कथक में? लेकिन कथक में KBC नहीं चल रहा, लेकिन सवाल जवाब ज़रूर चलते हैं। देखिए, डांसर तबला बजाने वाला एक दूसरे के लिए लाइव म्यूज़िकल बात करते हैं। डांसर अपने पैरों से एक बीट चैलेंज के देते हैं और तबला प्लेयर उसे तुरंत मैच करके जवाब देता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा किसी बॉलीवुड म्यूज़िक में, बॉलीवुड सॉन्ग में। अगर मैं आपको कहूं कि आपको अगर अभी नोटिस करना है, तो आप देवदास की एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, माधुरी दीक्षित का एक सॉन्ग है, ग्रीन कलर की उन्होंने ड्रेस पहन रखी है, आप उसमें जाएं और उसमें देखें कि वो तबला जो बजाने वाले होते हैं, उनसे कैसे सवाल जवाब करते हैं। वो अपने पैरों से कुछ ऐसी धुन निकालते हैं, ऐसी जो थाप छोड़ते हैं, उसको ही तबला प्लेयर को मैच करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन वो सवाल जवाब उस शान उसको और ज़्यादा उसको उसकी शान बढ़ा देता है, यानी जो कथक है उसकी शान बढ़ा देता है। उसके बाद अगर हम नंबर 4 की बात करें, तो भैया कथक जो होता है उसकी एक बहुत बड़ी खास बात है, इसमें आपको मिलता है हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का एक खूबसूरत संगम। अब आप सोच रहे होंगे कथक शुरू तो भारत से हुआ था, इसमें मुस्लिम कहाँ से आ गए? बहुत बड़ी बात है ये, और हमें ये समझना चाहिए। काफ़ी जगह ये डिबेट चलती है कि कथक एक हिंदू
जो है आर्ट फॉर्म है या फिर मुस्लिम। लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी आर्ट फॉर्म का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू का होता है ना वो मुस्लिम का होता है, वो सभी का होता है। और अगर हम स्पेशली कथक की बात करें तो इसमें दोनों संस्कृतियों का खूबसूरत संगम नज़र आता है। कॉस्ट्यूम से लेकर के म्यूज़िक तक आपको दोनों कल्चर का मिक्स दिखेगा। एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कम देखने को मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो भैया इनकी जो वर्क है, जो इनकी कला है, जो इसका इम्पैक्ट होता है, वो बड़ा ही मज़े का होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं आपको मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े फैक्ट्स हैं वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। देखिए कथक में डांसर के पीठ हमेशा बिल्कुल सीधी रहती है। बाकी बहुत सारे क्लासिकल डांस ऐसे फॉर्म होते हैं जिसको थोड़ा झुक के परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम लोग ये भी कहते हैं बाकी डांस फॉर्म में कि जो झुक के डांस फॉर्म होता है उसमें एक सॉफ्टनेस लाने के लिए हम झुकाव लाते हैं अपनी बॉडी में। लेकिन कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें प्राइड शो होती है, एक जो प्राउड होता है वो उनको दिखता है, इसीलिए उनकी जो बैकबोन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल प्राउड के साथ वो डांस करते हैं और अपने एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शो करते हैं अपने कला के लिए। अब दोस्तों सोचिए जरा कि एक कला जिसमें सारी अनोखी बातें छुपी हैं, घुंघरू की झनकार और चक्करों का जादू, तबला के साथ क्वेश्चन एंड आंसर, उनकी बातचीत हो रही है उससे, सब कुछ मिलाकर एक कथक बनता है जो कि दुनिया का सबसे यूनिक कलाओं में से एक है। अब चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कथक सिर्फ क्लासिकल स्टेज तक सीमित नहीं है बल्कि पहुँच गया करोड़ों लोगों के दिलों तक, यानी कि बॉलीवुड तक। अभी तक तो ये बॉलीवुड तक इतनी इजीली पहुँचा नहीं, लेकिन ये बॉलीवुड में जब पहुँचा तो इसकी जो शान है वो और भी ज़्यादा बढ़ती गई। कभी भी कथक ने जो है बैक यानी कि अपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा गया, कभी इस कला को दबाया गया ही नहीं, कभी कोई दबा पाया ही नहीं, चाहे वो मुगल्स आए चाहे अंग्रेज़ आए, कथक कथक ही रहा। और डेली यानी कि जो भी कला होती है, जो भी इनके कलाकार थे कथक के, इनके ज़रिए ये और भी ज़्यादा ग्रेसफुल होता गया। अब हम बात करेंगे बॉलीवुड कनेक्शन की कि ये सिल्वर स्क्रीन का तड़का इसमें आखिर लगा कैसे, इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ यानी कि अपने ज्ञान हस्ती लाइव में। जानेंगे कथक के बारे में कुछ और रोचक बातें लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

जी दोस्तों, भैया ये तूने क्या किया, यही मेरे दिल से निकल रहा है कि भैया कथक का इतना अच्छा असर कैसे आ गया हमारे जो उत्तर प्रदेश का। और मुझे तो पर्सनली बड़ा ही प्राउड फील होता है जब भी मैं कहती हूँ भाई उत्तर प्रदेश से हूँ, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ऐसी ऐसी निकली हैं, चाहे वो चिकनकारी हो, बनारसी हो, कथक हो, हमारे यहाँ के कुजींस हों और हमारे यहाँ का कल्चर हो, कुछ भी हो, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है सारी की सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पर। जी हाँ, चलते हैं हम इसके बॉलीवुड कनेक्शन की तरफ। बॉलीवुड में इसका क्रेज कितना ज़्यादा है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ा डीपली। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबकी फेवरेट दुनिया बॉलीवुड की, क्योंकि जब क्लासिकल कथक बॉलीवुड से मिला तो बना एक ज़बरदस्त कॉम्बो जिसे देखकर पूरी दुनिया भी झूम उठी। आपने नोटिस किया होगा कि भैया देवदास मूवी में वो मशहूर गाना डोला रे डोला, जिसमें माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय साथ में परफॉर्म कर रहे थे, वो तेज चक्कर उनका, उनके हाथों के इशारे, उनके पैरों के जो है थाप, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, सब कुछ प्योर कथक स्टाइल का था। उसमें जो संजय लीला भंसाली हैं, उन्होंने कथक को इतना खूबसूरती से दिखाया कि लोगों को कथक से बिल्कुल प्यार हो गया। जब ये गाना रिलीज हुआ था ना, तो पूरे देश में एकदम धूम मच गई थी। उसी फिल्म का एक गाना है काहे छेड़े मुहे, इसमें परफॉर्म किया है हमारी माधुरी दीक्षित ने। ये तो कथक का एकदम शुद्ध, कहते हैं ना एकदम प्योर, और अगर अवधि में कहें तो बिल्कुल पेवर फॉर्म है इसमें कथक का। इसको जब बनाया गया तो घुंघरों की झनकार, क्लासिकल मुद्राएं, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जो माधुरी दीक्षित है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कथक को ही समर्पित कर रखी है। अब बात करते हैं एक और मशहूर फिल्म की। जी हाँ, मशहूर फिल्म, क्योंकि हम सभी को जब ये रिलीज़ हुई थी तो हम सभी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया था, और आज भी जब हम इसको देखते हैं तो वही ऐसा लगता है बिल्कुल नई पहली बार देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी सी मूवी बाजीराव मस्तानी की, जिसमें दीपिका पादुकोण का एक गाना था मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल। ये गाना इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि आज भी लोग जब इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दीपिका एकदम मीराबाई के रूप में आ चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि दीपिका ने इस रोल के लिए खुद जाकर प्रॉपर कथक की ट्रेनिंग ली थी, महीनों तक प्रैक्टिस की थी, इसको सीखा था ताकि स्क्रीन पर वो बिल्कुल असली कथक डांसर जैसी लगे। और अगर हम बात करें बॉलीवुड में कथक की, जब बात हो ही रही है, तो एक नाम बिना लिए थोड़ा सा कथक अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, अभी हम बात भी कर रहे थे उनके बारे में, और अब थोड़ा डीपली समझते हैं हमारी माधुरी दीक्षित के बारे में। जी हाँ, माधुरी दीक्षित जी का जो बचपन से ही उनको कथक उन्होंने सीखी हुई है, और उनकी हर फिल्म में वो जब क्लासिकल ग्रेस के साथ जब करती हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि भैया इसने कथक ज़रूर सीखी है। इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड की सबसे मशहूर कथक ट्रेंड एक्ट्रेस भी कहा जाता है। और एक और फिल्म है जहाँ पर कथक दिखता है, वो है उमराव जान, जिसमें हमारी रेखा जी हैं। ये फिल्म एक ऐसी तवायफ की कहानी है जो अपनी कथक की कला से लोगों का दिल जीत लेती थी। इसको अगर हम इसके दोनों वर्जन्स, जो कि 1981 में आए थे और एक आया था 2006, दोनों में कथक को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया कि लोगों को कथक से प्यार हो गया। तो सोचिए आप, आपको सोचना तो पड़ेगा ही भाई, एक ऐसी कला जो शुरू हुई थी एक छोटे से मंदिर से और पहुँच गई बॉलीवुड तक, और अब पहुँच गई है वो विदेशों में भी। अगली बार जब कोई बॉलीवुड का गाना देखे जिसमें एक्ट्रेस घूमती और चक्कर लेती हुई नजर आ जाए ना, तो याद रखिएगा कि ये हमारे ही उत्तर प्रदेश का कथक है, और थोड़ा सा प्राउड फील करिएगा। और अगर बगल कोई और शहर वाला या कोई और देश वाला मिल जाए ना, तो उससे ये कहिएगा कि भैया ये हमारे ही उत्तर प्रदेश का है, और उसको अपने से लगा के रखिए, क्योंकि भाई कथक बहुत ही प्यारी सी कला है। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे भाई, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि समय थोड़ा सा भाग रहा है तो हमें इसको जल्दी जल्दी समेटना होगा। जी हाँ, देखिए कथक एक ऐसी कला है जो मंदिर से शुरू होकर बॉलीवुड तक पहुंची और विदेशों तक भी पहुंच गई, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में आज भी कथक सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, खुद भी सीख के ये सोचते हैं कि हमारे जब बच्चे होंगे तो कथक ज़रूर करेंगे। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कथक को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों का डांस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कथक लड़कियों का ही सिर्फ डांस नहीं है, इसको सबसे पहले मेल ने करना शुरू किया था, यानी कि लड़कियों से पहले से लड़कों ने करना शुरू किया था, उसके बाद फीमेल ने ज्वाइन किया, और आज दोनों ही इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए अगर आप खुद भी सीखना चाहें या फिर अपने बच्चों को सिखाना चाहें, तो बिना किसी जेंडर के भेदभाव के कि लड़के के लिए है लड़की के लिए है, आप इसको
कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके पीछे अपना एक बहुत बड़ा करियर भी बिल्ड कर सकते हैं आज, क्योंकि विदेशों में भी सीखा जा रहा है, इंडिया में भी कुछ लोग सीख रहे हैं। इंडिया में जो मिसकंसेप्शन था उस पर हमने बात की, और आज भी जो यंग एज की बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो भी कथक सीख रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है भाई कि ये वो एक्ट्रेस हैं जो उत्तर प्रदेश की नहीं है, जो किसी बाहर राज्य की हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया, साउथ के स्टेट्स हो गए, या फिर हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट के भी कई सारे सुपरस्टार हैं जो कि कथक जानते हैं, सीखते हैं और उसको परफॉर्म भी करते हैं। तो ये थी बात कथक की। आई होप आपने समझा होगा, सीखा होगा, और आप अपनी कलाओं से, स्पेशली जो एक ऐसी कला जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड लेके बहुत पहले से चली आ रही है और आगे भी चलेगी, उसके बारे में आपने एक बहुत ही प्यारी सी जानकारी एक बहुत ही प्यारे रूप में मैंने आपको बताई। आप इसे याद रखिएगा, इसको समझिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब कोई कथक डांसर हो तो उसका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि भैया वो बहुत सारे चक्कर और इतने सारे घुंघरू लगा के आप नहीं कर सकते जो वो काम कर सकते हैं। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे और अपने से छोटों का ध्यान ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है। लेते हैं आपसे विदा, ध्यान रखिएगा और इंजॉय करिएगा अपना रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेजबान आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जांच के बारे में बताया था, और आज की उसी श्रृंखला कि इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे टीबी के इलाज की, यानी सामान्य टीबी के इलाज की दवा और उसके प्रतिरोध यानी एमडीआर टीबी के इलाज की, और बच्चों में टीबी के इलाज की, और इसके अलावा उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले हमारे सेहतिया भैया। सेहतिया भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आरजे जी, और रेडियो सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछा था, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे जरूरी है, क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती है, ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गाँव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। लेकिन भैया, आज की शुरुआत मैं एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वाकई ऐसा सब होता है?
1: बिल्कुल नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो कि टीबी का इलाज संभव है, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सम्मान जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या बीमारी को छिपाना है, समस्या जांच में देरी करना, समस्या दवा बीच में छोड़ देना, और अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे तो वो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है।
0: लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज शुरू तो कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, और मुझे याद आ रहा है कि एक घटना में जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही खास बन सकती है, क्यों भैया?
1: हाँ आरजे जी, मैं भी ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम और शाम शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता है। लोग कहते हैं जांच करा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते हैं। कहते हैं अरे कुछ नहीं, 2 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। अब करीब 2 महीने के बाद हालत बिगड़ गई। जब अस्पताल पहुंचे तो जांच में टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाइयां शुरू कराई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी, खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यही उन्हें सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बंद कर दिया, फिर कभी लेते कभी नहीं लेते, शराब भी नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच के लिए भी नहीं गए।
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रह गई।
1: बिल्कुल, और कुछ महीने के बाद बीमारी पहले से ज्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई, इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी हो गई है। अब उन्हें इलाज ज्यादा कठिन था, दवाइयां बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया, और दुर्भाग्य से क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया।
0: ये तो बहुत ही दुखद कहानी है भैया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि टीवी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आज मैं हर श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है कि 2 दिन खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक हमें दवा लेना ही होगी, तभी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी।
0: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या मरीज को एक जैसी दवा मिलती है? क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद करती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले श्रोताओं को ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी

0: लगता है हमने राम बाबू की कहानी में भी सुनी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर कैसे होता है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल आरजे जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टेबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक ही नहीं बल्कि कई दवाओं का मिश्रण होती है जिन्हें हम फिक्स डोज या कम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
1: बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन ये एक बात समझना बहुत जरूरी है, कई मरीज दवा शुरू करने के कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है और बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं, यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा है तब भी हमें मतलब दवाई जारी रखनी है।
1: बिल्कुल, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना जरूरी है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफ़ी नहीं है, मरीज को समय समय पर फॉलो अप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांचें करवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं है बल्कि नियमित निगरानी भी उसका एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की बात की थी, क्या बच्चों का इलाज अलग से होता है?
1: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों में भी टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता है तो कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जांच जरूरी करानी चाहिए। बच्चों को इलाज में भी मुफ्त उपलब्ध है लेकिन दवाओं की मात्रा या उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद ना करें, पूरा कोर्स पूरा कराना उतना ही जरूरी जितना बड़ों में है।
0: तो साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है कि इलाज को पूरा करना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते हैं। क्या सरकार इस दिशा में भी कोई मदद कर रही है सेहतिया भैया?
1: जी हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वो इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है भैया, इसका नाम भी लोग काफी सुन रखे हैं।
1: देखिए, निश्चय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं या स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीज की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है, कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है।
0: और निक्षय साथी ये क्या है?
1: निश्चय साथी आमतौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वो मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्य कर्मी

0: से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग कराता है। कई बार एक जिम्मेदार निश्चय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ, एमआरडी टीबी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बम है जो दग जाएगा। आखिर ये होता क्या है?
0: एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, सरल शब्द में कहें तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती हैं। ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है या नियमित रूप से दवा नहीं लेता है या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसी का उदाहरण थी। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते थे तो वो कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते थे, फिर यह सामान्य इलाज काम नहीं करता था।
1: मतलब सुनकर ही डर लगता है। क्या एमडीआर टीबी का इलाज संभव है भैया?
0: बिल्कुल संभव है और यही संदेश है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि पहले एमडीआर टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BPLMP नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेडा क्यूलिन या प्रिटोमेनिड या लाइनोजोलिड मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देखकर लेते हैं।
1: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है।
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि एमडीआर टीबी का इलाज जो है विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है।
1: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीवी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
0: बहुत ज़्यादा, उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज, या यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों हैं तो दोनों का इलाज साथ साथ साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को भी गंभीर बना सकती है। इसी तरह एचआईवी से प्रभावित लोगों को में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है कि तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब
1: शराब की तो बात ही मत करिए, राम बाबू की कहानी में ये सामने आई है।
0: बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं, इसलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि परिवार के सभी सदस्य की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी की शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिकेटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोकी जा सके।
1: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: बहुत आसान बातें हैं, कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूके से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार की बाकी सदस्यों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
1: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा। पहली है कि टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुक्त है, दवा कभी बीच में ना छोड़ें। चौथी है फॉलो अप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। और पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठवीं है, एमडीआर टीबी भी उपचार योग्य है, इसलिए निराश ना हो। सातवीं है कि परिवार के सदस्यों की स्कैनिंग करवाएं। और आठवीं है कि टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें।
1: बहुत ही सुंदर संदेश। साथियों, याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम अपने सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
3: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
2: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपत्ति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज असमता और साथ में है
4: आर जे अंशिका।
3: तो कैसे हैं आप सभी भाई, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
2: सुन सहेली।
3: तो सुन सहेली में हम दोनों आ गए हैं, यानी दोनों सहेलियां आ गए हैं। और ये मौसम जो है ना, ये बड़ा ही नाजुक वाला मौसम चल रहा है। इट मीन्स अगर जरा सी भी आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, जरा सी भी लापरवाही करी ना, तो इसमें सर्दी, जुखाम, पेट खराब, ये सारी चीजें आपको हो सकती हैं। तो ये मौसम जो है ना, ये मौसम का जादू है मितवा। तो इस जादू को आप अपने ऊपर कभी सवार ना होने दें, मतलब अभी सवार ना होने दें, क्योंकि ये मौसम जो है, ये थोड़ा सा अच्छा वाला भी है और खराब वाला भी है। जल्दी से फीवर हो जा रहा है, क्योंकि इसमें बाहर तो आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन आप जैसे घर जा रहे हैं और एसी कूलर में बैठ रहे हैं, तो आपका जो स्वेटिंग है, आपका जो पसीना है, वो जल्दी सोख ले रहा है ना
4: जी मैम।
3: उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको मतलब जैसे धूप में गए और आपने एसी में बैठ गए जाकर के, तो क्या हो जा रहा है कि गले में खराश, हल्का सा फीवर, ठंड लगना, जो कि कल मुझे हुआ था। तो ऐसा आप लोग भी बिल्कुल ना करें। और कल तो भयंकर गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और गर्मी से जाने के बाद में ठंडा पानी पी लें, और आज थोड़ा सा असर मेरी आवाज में आपको लग रहा होगा, थोड़ी सी अच्छी वाली हो गई है, लाइक रानी मुखर्जी।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रानी मुखर्जी और रानी मुखर्जी के साथ बहुत अच्छी हो गई आपकी आवाज
3: है ना। ये तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वैसी वाली आवाज हो गई है। और कहा जाता है ना कि जब गला बैठ जाता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन हमें अपने घर का ही कर लेना चाहिए। जरा जरा सी चीजों पे हमको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। खैर, मैं क्या बताऊं कि मैं क्या लूंगी अभी गले के लिए, वो सब बताऊंगी मैं। लेकिन आइए हम इस प्यारे से मौसम को, जो कि हमारी औपचारिकता होती है कि हम इस प्यारे से मौसम का आह्वान करते हैं, क्योंकि दोपहर है भाई, 1:35 हो गया है, तो दोपहर है और दोपहर के टाइम पर हम आह्वान करते हैं इस प्यारे से मौसम को। तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में बोलेंगे
4: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और सच चुका है भाई, हम ये कह लें कि मंच जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, और सिर्फ अब हमें आपसे बातें करनी है, आपको बताना है, और आज तो बताना है, और आज एनर्जी है सुपर से भी ऊपर, और वो इसलिए है क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन हमारा होता है रिश्तों की महक से आपके घर को भी महकाएंगे, और हमारा स्टूडियो तो ऑलरेडी महक रहा है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू से।
3: क्यों
4: क्यों,
3: मैंने परफ्यूम तो लगाई नहीं है।
4: क्यों,
3: डियो लगाया था पर परफ्यूम तो लगाई नहीं है।
4: क्यों का जवाब,
3: प्यार की महक से।
4: क्यों का जवाब दे दूं,
3: प्यार की महक से बोल तो दिया।
4: तो क्यों का बड़ा प्यारा जवाब आया है, और मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही थी। तो भाई, हम तो महक रहे हैं और उस महक को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप भी उस महक को महसूस करें, इसलिए आपको हम करवाएंगे। और कैसे करवाएंगे,
3: एक प्यारी सी पोयम के साथ में। और आज है जैसा कि हमारा लव डे, एंड लव जैसे कहते हैं ना, प्यारी सी रिश्तों में मिठास, और रिश्तों को में प्यार की मिठास को कैसे घोला जाता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो काफी कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन मुझे एक बात करनी है अभी आप लिसनर्स से कि लिसनर्स जो भी हमारे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं आ रहे हैं उन

0: मेरी एक विनम्र विनती है कि अब 1:31 पे हमारा सुन सहेली शो शुरू हो जाता है। हम एंट्री ले लेते हैं 1:30 पे। तो प्लीज एंड प्लीज, अगर आप सभी में से जो हमारे रेगुलर जो हमारे लिसनर्स हैं मेल और फीमेल, अगर उन्हें टाइम का नहीं पता है और जिन्होंने पता है, तो प्लीज आप सभी लोग आपस में इस टाइम को एक दूसरे को बताएं, क्योंकि वही हो रहा है कि 2:45 तब हमारे सभी पुराने लिसनर्स आ रहे हैं। तो 1:30 पे हम एंट्री ले लेते हैं एंड देन आपको सुनाते हैं एक सॉन्ग। तो ये टाइम टेबल पिछले 10 दिनों से फॉलो कर रहे हैं ना अंशिका?
1: जी मैम,
0: आई थिंक 10 दिन हो गया है हम लोग ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। तो आप सभी से भी विनम्र विनती है, जो लोग भी हैं, तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आप सभी लोग आ जाएं और हमारे शो का आनंद उठाएं, क्योंकि शो शुरू हो जाता है और उसके बाद में बहुत सारी बातें होती हैं कि वो रह जाती हैं। आइए अंशिका कुछ कह रही है।
1: हाँ बिल्कुल, मैं कुछ कह रही हूँ और बिना मेरे कुछ कहे रास्ता कैसे मिलेगा, और रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर पोएम आप तक पहुंचेगी कैसे। चलिए रास्ता बनाते हैं, और आज की लाइंस जो है ना वो कुछ अभी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश माहौल पे मैं आपको बताती हूँ।
0: ताजा ताजा कली खिली है,
1: हम उसके दीवाने हैं
0: जी।
1: तो आर्ज समता, आर्ज समता के ऊपर आज मैं बताऊंगी आपको। क्या बताऊंगी बताती हूँ?
0: मेरे ऊपर?
1: यस।
0: क्या?
1: वो बहुत करती है गुस्सा, वो बहुत करती है गुस्सा, और करती है बहुत सारी प्यारी प्यारी शैतानी। याद दिला देती है औरों को अपनी नानी। हम तो यही कहते हैं कि चेहरे की चमक बनी रहे पर गुस्सा ना हो वो, हम तो डर जाते हैं। तो चलिए
0: और नहीं वो क्या बोला था, सबकी बन जाती है क्या,
1: सबको याद दिलाती है नानी।
0: उसके बाद की लाइन क्या था?
1: उसके बाद की लाइन थी कि क्या थी,
0: कि वो गुस्सा हो जाती, वो गुस्सा करती है और सबको याद दिला देती है
1: नानी।
0: नानी, और अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं बन जाऊंगी सबके लिए झांसी की रानी।
1: अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो मैं भी नहीं डाल पाती।
0: ये मुझे लग रहा था ये लाइन डालनी चाहिए थी एक्चुअल में, क्योंकि ये जो एक टैग लाइन है,
1: वाह वाह,
0: ये मुझे मिली हुई है कि झांसी की रानी है आर्य समता, नहीं समता, तो आज तो मैं यहाँ बनी, तो जो समता है वो वाकई में झांसी की रानी। तो ये लाइन मुझे डालनी थी, अंशिका ने कहा कि ऐसे सादी सादी नहीं अच्छी लग रही, तो मैंने सोचा उस पर थोड़ा सा तड़का लगा दूं।
1: वाह मैम,
0: जिसमें हरी मिर्च होगी और लहसुन होगा और लाल मिर्ची होगी, हींग होगी और उसमें हल्दी होगी, तो उसका जब तड़का लग जाता है ना तो कोई भी चीज बड़ी ही स्वादिष्ट बन जाती है।
1: तो स्वादिष्ट बनाते हैं, और इसके बाद अब नहीं करेंगे हम कोई भी बात, इसके बाद अब हम नहीं करेंगे कोई भी बात। तो चलिए करते हैं पोयम की शुरुआत।
0: ओके,
1: किसके साथ?
0: आरजे समता के साथ।
1: जबरदस्त,
0: चले हो गया तुम्हारा?
1: हो गया मेरा।
0: चलो ये जो प्यारी सी आज पोयम मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है रिश्तों की खूबसूरती और मिठास के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम किसी से रिश्ता बनाते हैं तो उसकी सबसे पहली नींव होती है विश्वास और मिठास। जब विश्वास नहीं होगा तो वो रिश्ता आगे पनप नहीं सकता है, ठीक है। धागे विश्वास के जो बंधे हैं प्यार से, धागे विश्वास के जो बंधे हैं प्यार से, हर रिश्ता महकता है यहाँ इस संसार से। कोई अनकही सी बात, कोई मीठी सी मुस्कान, रिश्तों से ही जुड़ी है अपनों की पहचान। सुख दुख की धूप छाव में जो साथ निभाते हैं वही असल में इस जीवन के मीत कहलाते हैं। रूठना और मनाना इस जोड़ की रीत है, रिश्तों की ये पगिया सबसे ही विपरीत है। खून के रिश्ते तो बस एक पहचान होते हैं, खून के रिश्ते तो बस एक पहचान होते हैं, मगर जो निभाए साथ वही महान होते हैं। हर पल का ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है जब अपनों का साथ हर मुश्किल में मिल जाता है। दूरियां कभी भी रिश्तों की दीवार नहीं बनती, दूरियां कभी भी रिश्तों की दीवार नहीं बनती, अगर यादें अच्छी हों तो वो दरार नहीं बनती। ये अनमोल मोती हैं, इन्हें सहेज कर रखना, जिंदगी भर अपनों का बस प्यार ही परखना।
1: वाह वाह वाह, मतलब बहुत ही जबरदस्त, और वाकई मैम बहुत अच्छी पोएम आप लाई हैं, और आपने अभी सुनाया भी फीलिंगफुल तरीके से, बहुत अच्छे से। और एक

0: एक शब्द जिसे गुथा हुआ था, मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ रिश्तों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब हमारी यादें किसी के साथ बहुत ब्यूटीफुल होती हैं तो दरारें नहीं होती हैं रिश्तों में, और हमेशा रिश्ते ऐसे ही बनाएं जिनमें दरारें ना हो।
1: क्योंकि मुझे लगता है अंशिका कि अगर एक बार आपने नॉर्मल रिश्ता तो छोड़ दो, आपने नॉर्मल एक सड़क देखी होगी, और एक सड़क में जब एक बार गड्ढा पड़ जाता है, एक दरार आ जाती है, तो आप उसे कितनी बार भी ठीक करेंगे, उस पे चलने वाले लोगों के कारण से उसमें एक फिर से दरार जरूर पड़ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारा मन भी वैसा ही है। हमारा मन ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। अगर दिल पे कोई बात लग जाए, मन पे कोई बात लग जाए, तो वहाँ दरार हो जाती है, और मन पर आपको पता है कि कितनी बातें आती जाती रहती हैं, तो उन्हीं आती जाती बातों के कारण फिर से वो दरार हो जाती है, और वो दरार कभी भर नहीं पाती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने रिश्तों में कभी भी दरार न पड़ने दें, क्योंकि अगर एक बार दरार पड़ी तो उसे पाट पाना बड़ा ही मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल, रिश्तों में बिल्कुल नहीं पड़ेगी दरार, रिश्तों में बिल्कुल नहीं पड़ेगी दरार, क्योंकि अपने रिश्तों में करो हमेशा प्यार का इकरार। अगर आप प्यार का इकरार करेंगे ना अपने रिश्तों में, तो आपके रिश्तों में दरार कभी नहीं होगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब, देखिए, किसी से गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम रिश्ते होते हैं तो हम लड़ते हैं, और कहते नहीं है दो बहनें तो बिल्कुल ऐसे लड़ती हैं कि घर को वो बिल्कुल महाभारत की युद्ध की जगह बना देती
1: हैं।
0: दो बिल्लियां। भाई लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में भूचाल तो नहीं आ गया। या दो जो बहुत करीब होते हैं, आप क्या अपने कभी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई नहीं करते हो, या कभी मम्मी पापा से झगड़ा नहीं किया है? मैंने तो पापा से बहुत झगड़े किए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लास्ट में मैं ही पिट जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने गुस्सा किया है। तो हम जिन हमारे अपने जो होते हैं ना, उनसे हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करिए, लेकिन कभी उस गुस्से को दरार मत बनने दीजिए। और गुस्सा करना तो आपका हक बनता है, वो तो चलता है रिश्तों में। अगर पीटा नहीं तो फिर भाई कैसा? अगर भाई ने बहन की पिटाई नहीं की तो फिर बहन कैसी? और अगर दोस्तों ने एक दूसरे को मारा नहीं तो फिर दोस्त कैसे? फिर तो आप दोस्त नहीं थे, फिर आपने दोस्ती नहीं की। तो ये मज़े होते हैं, मज़े लीजिए लाइफ के, और हम भी मज़े करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं हमारे पास उनके साथ।
1: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: यस, मैं यही कहने वाली
1: सुनाने जा रही है अंशिका रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ विदाउट हम दोनों की फाइट।
0: ओह गुड गुड, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो चलिए भाई, बताते हैं आपको रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये कहता है कि हमेशा अपने दिल की सुने और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। जो लोग अपने लक्ष्य से हटकर दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं, वो हमेशा असफलता की तरफ जाते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, न इस बात पर कि दुनिया क्या कहती है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा काम है सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करना। कैसा था?
1: बहुत ही अच्छा था, मसालेदार था। तो अब हम लोग जूस की ओर चल रहे हैं।
0: जी,
1: हम लोगों ने तड़का खा लिया, मसाला खा लिया। तो अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक जूस चाहिए होगा, और जूस हमें मिलेगा, मैंगो जूस मिलेगा हमको सॉन्ग्स के माध्यम से। तो चलिए भाई, लिसनर्स जल्दी जल्दी से आ जाइए, और हम फिर चैट बॉक्स में आप सभी का वेलकम भी करेंगे सबके नाम के साथ में। लेकिन आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस प्यारे से सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है? या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: आपकी आज समता और साथ में है आरजे
3: अंशिका।
2: तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के रिश्तों के सफर को। और जैसा कि हमने अभी वादा किया था कि हम सीधे चैट बॉक्स में आएंगे अंशिका
3: जी मैम,
2: तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें।
3: मेरी इजाजत?
2: अरे कभी कभी छोटों से भी ज्यादा ले लेनी चाहिए।
3: अच्छा अच्छा,
2: तो ऐसा नहीं है कि बड़े ही हमेशा से यहाँ गलती करें, कभी कभी छोटे भी गलती करते हैं। देखो इसमें भी मैंने घुमा दिया तुम्हारे, अच्छा किया ना?
3: हाँ बहुत अच्छा किया।
2: तो चले?
3: यस यस ऑफ कोर्स।
2: ओके, तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहला मैसेज जो आया है वो आया है कुछ नाम क्लियर नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि क्या नाम लिखा है अंशिका, तुम पढ़ो, मुझे तो नहीं पढ़ना, पढ़ाई मुझे तो नहीं पढ़ने में आ रहा है। उन्नाव की उन्नो पता नहीं क्या,
3: ऐसा ही कुछ है, क्लियर नहीं है नाम।
2: हाँ प्लीज आप जो भी हैं तो अपना नाम पूरा क्लियर लिखें, क्योंकि नाम नहीं पढ़ने में आ रहा है। तो डैश डैश करके हम आपको संबोधित करते हैं तब से। गुड आफ्टरनून एंड सब कैसे हैं, मतलब आप सबसे पूछ रहे हैं। एंड तबिश खान जी गुड इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग, हाँ गुड आफ्टरनून है तबिश जी, कोई बात नहीं, हमने आपकी गुड इवनिंग भी हमने आपकी एक्सेप्ट कर ली। कैसे हैं आप? एंड धर्मेंद्र मोहन जी एंड कमल नयन जी कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सो कि आप अच्छे होंगे। एंड गाना बहुत बढ़िया है, धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं।
3: थैंक यू धर्मेंद्र जी,
2: थैंक यू सो मच। एंड महेंद्र जी का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है जो कि हम दोनों के लिए अंशिका, मैं पढ़ रही हूँ
3: जी मैम,
2: ठीक है। गुड आफ्टरनून एंड सादर नमस्ते दोनों आरजे मैम को, दोपहर के इस खुशनुमा सफर में आप दोनों की आवाज और एक बेहतरीन जुगलबंदी सुनकर दिल खुश हो जाते हैं। जब आप दोनों मिलकर शो को संभालती हैं तो रेडियो की रौनक और आप दोनों की बातें सीधे दिल को छू जाती हैं। आप दोनों इसी तरह अपनी मीठी बातें, शानदार मुस्कान और बेहतरीन गानों से हम सभी श्रोताओं का दिल बनाते हैं, दिन बनाते रहिए। आप दोनों की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार।
3: थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारा, मतलब ऐसे लग रहा है कि जब हम पहले से ही मेहनत करते हैं ना, सोचते हैं कि आज ये करना है, आज ये बताना है, आज लिसनर्स के लिए ये करना है, और जब आपका इतना प्यारा कमेंट आता है तो लगता है कि हमारी सारी मेहनत जो है ना वो सफल
2: है। वो एक कहावत सुनी है या फिर वो आपने अपने घर में किया होगा अंशिका, कि मतलब जब कोई गेस्ट आने वाला होता है
3: जी,
2: तो हम उसकी तैयारी एक दिन पहले शाम से करना शुरू कर देते हैं, है ना
3: जी।
2: तो बिल्कुल ऐसा ही जब हम आपसे मिलने आते हैं 1:30 से 3 बजे तक, दोपहर में 1.5 घंटा, और उसकी तैयारी हम लोग, जैसे दोपहर का खाना बनाने के लिए हम लोग सुबह से तैयारी करते हैं ना, कि आज अगर कढ़ी बननी है, आज अगर दाल चावल बनना है तो दाल को भिगो के रख देते हैं, सब्जी को काट के रख देते हैं, आटे को गूंद के रख देते हैं। तो सेम थिंग हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग कल शाम से ही कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते रहते हैं कि कल हम आपसे ये बातें करेंगे, कल हम आपको ये बताएंगे। तो एक ना स्टोरेज होता रहता है दिमाग में, और यहाँ पर आप आकर के आपसे बातों में हम दोनों की जो जुगलबंदी है वो तो इंस्टेंट होती है, वो कि हम लोग प्लान नहीं करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ सहेलियाँ आपस में अच्छे से क्लोज हो जाती हैं तो उनको फिर कहीं कंटेंट बनाने की नीड नहीं होती है, वो लोग फिर बैठ जाती है ना तो वो बकवास शुरू हो जाती है। और सेम थिंग यही है हमारे साथ, इनके साथ यही है कि वो हमारी बकवास आपको निरंतर सुनना ही पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल से बातों को लेकर के। अंशिका कुछ बहुत देर से कहना चाह रही है पर मैं उसको कहने नहीं दे रही हूँ, आइए सुनते हैं पहले कि वो क्या कहना चाह रही है, फिर आएंगे कंटेंट की ओर।
3: हमारी ये मस्ती आपके दिलों में है बस्ती, इसलिए बहुत बहुत
2: देर से यही सोच रही थी, समझ में आया हमको कि ये चुपचाप सुन रही है तो इसके दिमाग में वो शायरी बुन रही हूँ
3: और बुनने के बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे सराहना करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं बढ़िया से एक टॉपिक की तरफ। भाई बात हो रही है रिश्तों की, और रिश्तों में एक सवाल पहले पूछते हैं और उसका जवाब लेते हैं और फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सवाल सीधा मैम से पूछती हूँ। मैम अगर कोई आपसे सॉरी कहता है तो आप क्या करती हैं?
2: नो नीड फॉर सॉरी।
3: अच्छा, नहीं मान लीजिए किसी से कोई गलती हुई, उसने सॉरी बोला,
2: अच्छा
3: तो मतलब
2: नहीं, मेरे अंदर एक बहुत बढ़िया आदत है कि मैं प्यार से अगले इंसान को इतना वो कर देती हूँ कि मैंने बोल दिया ना कि नो नीड फॉर सॉरी,
3: ओके,
2: बट एक्चुअली मुझे नीड होती है सॉरी की. और वो ऐसी वाली होती है कि जब तक बंदा वो गिड़गिड़ाए नहीं मेरे सामने, माफी नहीं मांगे, बट ऊपर से एक एक प्लेन वाली वो परत होती है.
3: अरे कोई बात,
2: प्यार से बोल देते ना, प्यार से छुरी मारना कि यार नो नीड फॉर सॉरी, लेकिन एक्चुअली दिल कहता है हाँ मुझे जरूरत है तुम्हारे सॉरी की. और ऐसी वैसी सॉरी की नहीं, अच्छी वाली सॉरी. कान पकड़ो, घुटने पे बैठो, या जो भी हो, कोई भी रिश्ता हो इसमें, मतलब कायदे से सॉरी जब तक कोई ना बोले, तो तब तक मन नहीं भरता है कि हाँ कोई सॉरी ऐसे, मतलब हल्की फुल्की सॉरी नहीं,
3: जी जी के
2: मान जाओ ना सॉरी कोई ऐसे भी बोलता है मुझे,
3: ऑफ कोर्स
2: तो फिर ये भी नहीं, कुछ नहीं गाना वाना, कुछ नहीं, कोई नहीं. मैं कहती हूँ ब्रो ऐसा नहीं, सॉरी बोलना है तो ढंग से बोलो,
3: ढंग से
2: कम से कम एक डेढ़ दिन तो इंसान को पकाओ कि मुझे सॉरी चाहिए भी नहीं और मैं नाराज भी हूँ.
3: मतलब इसे एक वर्ड में पता ही क्या कहते हैं, इसे एक वर्ड में कहते हैं इंसान को तड़पाना, कि मतलब हम आपको छेड़ेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी.
2: बस वही वाला है मेरे साथ, मेरी फिल्म कुछ ऐसी है.
3: I know वेरी वेल, वेरी वेल. तो भाई मैम ने तो बता दिया कि वो कैसी वाली सॉरी एक्सपेक्ट करती हैं. और वैसे ऐसा नहीं है, मतलब मुझे भी जब मैं किसी से गुस्सा होती हूँ ना, तो मुझे भी लगता है यार 10 जतन करके मनाएगा तब मजा आएगा,
2: पता है. लेकिन ना वो जल्दी से मान जाने में भी मजा नहीं है ना, एक्चुअली इसीलिए, चाहे वो मेरी घर में मम्मी हो, चाहे वो भाई बहन हो, कोई भी हो, तो जल्दी से मान जाने वाला वो ना जो सिस्टम हो जाता है, वो फिर मजा भी नहीं आता है.
3: फिर लगता है कि तो फिर गुस्सा होने का फायदा क्या, जब तक
2: इतनी ज्यादा मेहनत करी भी और फिर अगले इंसान को हमने थोड़ा सा तंग भी नहीं किया,
3: तो फिर
2: अंदर से भी थोड़ी देर के बाद अंदर से मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है यार, चलो बोल रहे हैं ना, सॉरी बोल रही है ना, माफ कर देते हैं, अंदर से माफी हो जाती है. पर बाहर से वो कहते हैं ना कि अभी नहीं, थोड़ा और तंग कर ले, थोड़ी अपनी और वैल्यू बना ले.
3: मैं तो जब मम्मी से गुस्सा होती हूँ तो मैं सोचती हूँ मम्मी मुझे कुछ बढ़िया से बना के खिलाए, फिर मैं मान जाऊंगी.
2: ये आ गई खाने पे,
3: फिर मैं ऐसा सोचती हूँ.
2: हमें पता था इनका खाना तो कहीं नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं, मतलब इनका खाना जो है ना, ये असर दिखता है वो खाना. और
3: इधर तो
2: एक होता है टाइम टेबल से खाना और एक विदाउट टाइम टेबल खाना, वो दिखता है,
3: वो नजर आता है. और नजर फिलहाल तो मतलब बहुत वो हो गई है अब, इधर तो मैं हो गया, मतलब मुझे तो मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं है,
2: बुरा लग गया, दिल पे ले लिया तुमने.
3: दिल पे नहीं लेती हूँ. और जिनकी मैं दिल पे ले लेती हूँ, फिर मैं उनकी बहुत अच्छे से लेती हूँ, और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे देनी ही नहीं.
2: मतलब
3: इन शॉर्ट मतलब ये कि जब मुझे किसी की बात, जैसे आप तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोई जो मतलब दूसरे टाइप का इंसान होता है, और जब उसकी बातें मुझे कभी फील हो जाती है, वो मुझे कुछ उल्टे सीधे बोल देते हैं, तो मैं उनकी इतने अच्छे से लेती हूँ कि फिर वो दोबारा कुछ देने के लायक रहते ही नहीं, फिर वो मुझसे दूर रहते हैं.
2: हो गया तुम्हारा,
3: हो गया
2: भाषण, चलो अब चले आप अपने शो की तरफ और अपने कंटेंट की ओर.
3: तो आपको इतना घुमाने का सिर्फ एक पर्याय था कि हम आपको वहां ले जाना चाहते थे जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये कहता है कि रिश्तों में माफ कर देना किस हद तक सही है, कैसे हमें उससे मेंटल पीस मिलता है, क्या उसका फिजिकल असर होता है, और क्या असर होता है माफ कर देने का आपके रिश्तों पे, क्या कर देना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, किस हद तक नहीं करना चाहिए, ये आज हम आपको सब कुछ बताएंगे. तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत मैं करूंगी, और शुरुआत को बीच से होते हुए, गलियों से निकालते हुए, फिर अंत की ओर लेके जाएंगे आपकी अपनी आरजे इतना धीरे.
2: अरे हमें लगा तुम नाम लोगी, तुमने नहीं लिया तो हमने खुद ही ले लिया.
3: नहीं तो आपको और अच्छे से लेना चाहिए था ना, आपकी अपनी आरजे समता.
2: चलो हो गया, आज घी खत्म हो जाएगा पूरा, मक्खन भी नहीं है घर पे, घी भी खत्म कर दोगी. चले शुरू करें, चलो
3: अब तो शुरू ही करेंगे. हाँ, और कुछ नहीं कर सकते. तो आज सबसे पहले एक पॉइंट ये निकल करके आता है कि रिश्तों में माफ करने की एक सीमा होती है. मतलब ये है कि जब कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस करता है रिश्तों में, तो कभी उसे माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके आप किसी को माफ करते हैं, तो वो रिश्ता कभी दोबारा नहीं जुड़ता है, उसमें एक गांठ हमेशा रह जाती है, और फिर वो दो लोगों को कभी एक साथ पहले जैसे नहीं होने देती है. इसलिए किसी की गलतियों को एक लिमिट तक देखें, अगर वो सुधर जाता है, वाकई में उसे दिल से पछतावा है, तो ठीक है, अदरवाइज उसे छोड़ने में ही आपकी समझदारी है। सेकेंड पॉइंट है कि कई बार माफ़ कर देना हमारी रिश्तों को करीब ले आता है। कहने का सेंस ये है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, और मस्ती वाली गलती तो एक तरफ है, लेकिन कई बार किसी से बहुत सीरियस गलतियाँ भी हो जाती हैं। और एक बात और होती है कि रिश्तों में गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में होती है। अगर जानबूझकर सब कुछ सोच समझ कर आप किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो गलती नहीं है, वो आपका सोचा समझा हुआ
2: प्लान है।
3: तो उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिश्तों में अनजाने में या कई बार इमोशंस में आकर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाओ हम नहीं माफ़ करेंगे, उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमसे गलती न चाहते हुए भी हो जाती है। अब मान लीजिए किसी ने आपसे वादा किया था कि वो आपके साथ शॉपिंग जाएंगे या जाएगा, जो भी है, लेकिन अब उसे टाइम नहीं मिला, उसका बिजी शेड्यूल है, इंसान बिजी है, तो वहाँ पे हमें समझना चाहिए और उसको अच्छे से प्यार से, नहीं बहुत सारा तंग करने के बाद, लेकिन माफ कर देना चाहिए।
2: हो गया दादी अम्मा?
3: यस जी। सासू माँ कंप्लीट।
2: आगे
3: ये कि नाराजगी वहाँ नहीं होती है जहाँ खुलकर बातें होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में नाराज़गी जो है वो दूर हो जाए और आप किसी को माफ़ कर सकें, तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि जिस भी टॉपिक पे बात हुई है, झगड़ा हुआ है, उसमें खुलकर बात करना ज़रूरी है। अगर हम किसी से खुलकर बात करेंगे तो हम उसे माफ़ कर पाएंगे। हमें लगेगा कि नहीं, अरे ये तो आपकी गलती थी नहीं, मैं तो बेकार में गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गई, जो भी है। तो खुलकर बात करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो पूरे मन से माफ़ करें। कई बार क्या होता है ना कि हम फैमिली प्रेशर में, या अरे वो लोग कह रहे हैं ना माफ़ कर दो, या फिर ये सोच करके कि चलो अच्छा फैमिली में झगड़े नहीं होंगे और हमारा रिश्ता बना रहेगा, ये सोचकर हम बेमन से इंसान को माफ़ कर देते कि अच्छा ठीक है आपको माफ़ किया जाओ, लेकिन मन में वो चीज़ रह जाती है। इसलिए जब भी माफ़ करें तो पूरे मन से, आधे मन से,
2: और आधे मन से माफ़ नहीं करें,
3: आधे मन से माफ़ करें, पूरे मन से माफ़।
2: ठीक है, कर दिया
3: कर दिया। चलो अच्छी बात है, ये तो कर दिया आपने, ये तो अच्छी चीज है। तो चलिए अब हम चलते हैं और बताते हैं कि फिजिकली इसका क्या असर होता है,
2: फिजिकली इफेक्ट्स क्या पड़ता है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका फिजिकली तो बाद में, पहले इसका मेंटली जान लो क्या पड़ता है। मेंटली ये पड़ता है कि मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या होता है कि आपका फिर कहीं मन नहीं लगता है अगर आप किसी को माफ नहीं करते हैं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आपके साथ कोई किसी ने गलती की है तो आपका जो मेंटल इफेक्ट्स पड़ेगा, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। आपके मन में वो बातें चलती रहेंगी कि यार मुझे तो माफ कर देना चाहिए था, या फिर चलो ठीक है गलती की ना, तो उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसको ऐसा करना चाहिए था। तो मन ही मन क्या होता है कि हमारा दिमाग और उनकी दिमाग आपस में बात करने लगते हैं। ठीक है,
3: जी
2: तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर आपको अपना मेंटल पीस चाहिए और उस स्ट्रेस से अगर आपको फ्रीडम चाहिए, तो जब हम गुस्सा जब भी हम गुस्सा और इस नफरत को पकड़ कर बैठते हैं तो सबसे ज्यादा बोझ हमारे अपने मन पर पड़ता है। एग्जैक्टली मैं जो बता रही हूँ वही है
3: जी,
2: अपने मन पर पड़ता है। हम हमेशा से वो ना बात करने लगते हैं और माफ करने से मन हल्का हो जाता है और आपका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो भी बेहद कम हो जाता है।
3: वाह,
2: समझ में आया?
3: समझ
2: तो
3: आया।
2: सबसे पहले फिजिकली, तो बाद में पहले मेंटल जो पीस होता है वो ये होता है। साथ में दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि डिप्रेसिव जो पॉइंट्स होते हैं उसमें कमी होने लगती है। हम घंटों बैठ के सोचते हैं अपनी खुद की एक आजादी को कैद कर लेते हैं, कहीं जाते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या होता है कि हमेशा से उनके बारे में सोचना, हम उन्हें माफ भी नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ रहना भी चाहते हैं। तो ये डिप्रेशन के कारण मतलब थोड़ी सी ये लक्षण बन जाते हैं। और उसके बाद में एक चीज और होने लगती है कि बेहद ज्यादा नींद की कमी हो जाती है और एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट कम होने का मतलब है कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे पहला कारण ये होने लगता है कि आपको कहीं अगर कोई कह रहा है कि आप मेरे साथ बात करो, आप उनसे दूरी बनाने लगते हैं। आपको कोई कह रहा है कि मेरे साथ घूमने चलो, तो आप उनसे दूरी बनाने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे एक डर लग रहा है, अंदर से एंग्जाइटी हो रही है, मैं कैसे जाऊंगी कैसे आऊंगी, व्हाटएवर जो भी। ठीक। तीसरा कारण ये होता है कि अगर आपको कोई भी गलत फहमी हो रही है, नेगेटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में ज्यादा होने लगते हैं, तो छोटी सी चीज है यार, माफ करो और झंझट खत्म है कि नहीं।
3: बिल्कुल, माफ करें और बातों को साफ करें, दोनों बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल। उसके बाद अब आता है कि आपका फिजिकली इफेक्ट क्या होता है आपकी बॉडी में। तो फिजिकली इफेक्ट जो होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक है,
3: ब्रेक है, और चलिए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग कर रहा है, इंतजार सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: रेस्टोरेंट जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: तुझे चाहता कोई और है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसी प्यारे से सॉन्ग के बाद में वापस से वेलकम करते हैं आपका आपके अपने शो सुन सहेली में, हमारी यानी आपकी आरजे समता और आरजे अंशिका की तरफ से फिर से। तो चलिए चलते हैं तुरंत से तुरंत हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि आपको बताएगा कि आपको अपनी फिजिकल फिटनेस जो होती है वो कैसे आप किसी को माफ करते हैं, तो वो क्या असर डालता है उसमें।
5: तो ब्रेक में जाने से पहले टॉपिक ये था हमारा कि अगर हम किसी को माफ करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है, अगर माफ नहीं करते हैं तो, माफ कर देते हैं तो उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट हमारी पर्सनल और हमारी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर क्या पड़ता है। तो फिजिकल मेंटल तो हेल्थ हमने बता दी, एंड अब बारी है फिजिकल इफेक्ट्स की बात करने की। तो फिजिकल इफेक्ट्स के लिए मैं बता दूं कि मन और हमारी बॉडी जो होती है उसका बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि माइंड एंड बॉडी कनेक्शन जो होता है वो एक ऐसा वाला कनेक्शन होता है कि जो आप सोचते हैं, अगर आपने ये बिल्कुल जांचा परखा हुआ है अंशिका, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि यार मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो वो पूरा दिन आपको वही पेन होगा, घुमा फिरा के पेन होगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया दिमाग से कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और मैं मेरे गाल भरे भरे लग रहे हैं और मैं मतलब कितना, मुझे तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो उस दिन आप बिल्कुल फिट लगेंगे, सुंदर लगेंगे, और जैसा आपका दिल चाहेगा वैसा ही आप लगेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन जो होता है वो बहुत गहरा होता है। जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत पाले रखते हैं तो शरीर लगातार फाइट और फाइट करता रहता है, और इसीलिए वो तनाव की स्थिति जो होती है वो मोड में रहती है, उसी मोड में रहती है। एंड माफ करने से शरीर के ये बहुत बड़े फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका लोअर ब्लड यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल होने लगता है। गुस्सा थामने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जबकि माफ करने से ये तुरंत सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको गुस्सा है किसी के प्रति तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल करें। एंड जो हार्ट हेल्थ है, कि एक शोध के हिसाब से बताते हैं कि जो लोग जल्दी माफ कर देते हैं उनका हार्ट अटैक का खतरा काफी कम होता है।
4: ओके
5: तो इसीलिए भैया, जो तुम्हारी लाइफ में अगर किसी को माफ माफ करने का सीन हो तो उसको माफ कर देना, ठीक है,
4: वरना फिर हार्ट पेशेंट।
5: एंड उसके बाद में है इम्यून सिस्टम। क्रॉनिक स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है लगातार जो करने वाला, जो एक कुछ लोग होते हैं कि हमेशा से स्ट्रेस में रहते हैं, इससे हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। एंड माफी से तनाव घटता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की हमारी जो इम्यूनिट सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग बनती है।
4: ओके, यानी एक बार माफ करने के इतने सारे फायदे।
5: हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि वो मन जो है और बुद्धि है, यानी कि जो हमारा दिमाग है और जिससे हमारी लड़ाई हुई है, वो आपस में बिना बोले फाइट करते रहते हैं।
4: जी मां।
5: तो जब हम बिना बोले फाइट करते रहेंगे तो वो आखिर तो एनर्जी तो लग रही है ना।
4: जी जी,
5: लग रही है ना, दिमाग की एनर्जी लग रही है। तो जब दिमाग की एनर्जी लग रही है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा कि नहीं होगा,
4: वो तो
5: मैंने स्टार्टिंग में ये बात बता दी थी। है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अगर रिड्यूस करना है अपने पेन को, आपकी अपनी बॉडी के पेन को, तो आप मांसपेशियों का, जिससे खिंचाव कम होगा, क्योंकि हम जब सोचेंगे तो हमारी सर की, हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां है वो खिंचाव होगा, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है, जिससे हमारा पुराना शारीरिक दर्द और भी कम महसूस होता है।
4: ओके,
5: जानी
4: जानी।
5: तो भैया आज के बाद अगर कोई गुस्सा हो रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, तो झट से आप उसको माफ कर दें।
4: माफ,
5: जैसे मैंने अभी कर दिया।
4: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट।
5: तो इसीलिए माफ करना सबसे सरल थेरेपी है, इसको अपनाएं और अपना जीवन सुखी रखें।
4: बिल्कुल, जीवन सुखी रखें, मतलब सिचुएशंस को रखें साफ, और फटाफट से कर दो माफ, क्योंकि माफ करना बहुत जरूरी है। वैसे ऐसा नहीं है, हाँ, बिल्कुल सीधे तरीके से भी माफ नहीं करना, थोड़ा सा परेशान करके ही माफ करना,
5: लेकिन माफ करना जरूरी है।
4: माफ करना,
5: अभी सारे हम लोगों ने बताया,
4: कंक्लूजन वही है कि माफ करना,
5: यही है कि माफ कर देना चाहिए बस थोड़ी देर के लिए। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, 6 महीना, साल भर, 2 साल और कई सालों तक उन बातों को अपने दिमाग में रख लेते हैं और फाइट करते रहते हैं, तो ऐसा
4: नहीं करना,
5: ऐसा नहीं करना है। एक एक दिन, डेढ़ दिन अगर आपको लग रहा है कि हमें किसी को परेशान,
4: 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
5: नहीं इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, तो आपको लग रहा है तो आप उनको बिल्कुल परेशान करें और उसके बाद आप उन्हें माफ कर दें। प्यार वाली लड़ाई में गुस्से वाली लड़ाई में फर्क होता है,
4: यस मैम,
5: ठीक है, वो फर्क होता है, गुस्से वाली लड़ाई में बहुत फर्क होता है,
4: बहुत फर्क होता है। गुस्से वाली लड़ाई में फिर इंसान वो फिर दूसरा इफेक्ट होता है, प्यार वाली लड़ाई में अच्छा इफेक्ट।
5: जी बिल्कुल, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा आपको अभी इंडेक्स में बता करके ब्रेक लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है अंशिका?
4: अभी अभी हमने बात की कि किस तरीके से माफ कर देने से आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे कि हमारे रिश्तों में गलतफहमियां क्यों पनपती हैं और कैसे हम उन्हें अपने रिश्ते में पनपने से रोक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही प्यार, नहीं चले,
5: चलना है क्या?
4: हाँ मैम,
5: चलो पानी वानी पी के आते हैं।
4: हाँ।
5: मौसम बाहर बहुत अच्छा है, हो सकता है अमरूद अमरूद भी गिरे हो तो बीन बान के खा आया जाए। पहले तो अमिया बीन के खाते थे, थोड़े मतलब थोड़ा सा ऐसा माहौल होता
4: जी।
5: था, अब उसके बाद से फिर अमरूद की बारी आई, तो कल ये रास्ते में एक जगह पेड़ था, ये रोज देखती है वहाँ पे और कहती है कि मैम यहाँ अमरूद देखो नहीं लग रहा है, कितना फलित है, ये रोज मुझसे ये कहती है। आखिर कल इसने वो उस हद को पार कर ही दिया, अमरूद तोड़ा ही लिए पेड़ से, तब इसको चैन आया।
4: बिल्कुल,
5: तो चले अभी अभी भी चल के देखते
4: जी
5: हैं।
4: जी मैम बिल्कुल,
5: अगर अमरूद दिख रहे हैं तो यहीं से थोड़ा सा तोड़ने ओड़ने की कोशिश की जाए,
4: कोशिश,
5: और थोड़ा सा हम लोग खा पी कर
4: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं,
5: पानी वानी पी लें, क्योंकि मैं तो पानी पीऊंगी और ये खाएंगी। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो दोनों मिसाल यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे आपको बताने के लिए अपना नया टॉपिक। तब तक के लिए सुनते रहे हमारे साथ, 89.6 FM पे शो चल रहा है सुन सहेली।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को।
6: बिल्कुल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रिश्तों में गलतफहमियां क्यों होती हैं।
5: हाँ।
6: और क्यों होती हैं ये मैं बताऊंगी, और वो कैसे दूर होती हैं वो आपको आरजे समता मैम बताएंगी
5: जी।
6: तो चलिए अब चलते हैं, बताते हैं कि ये रिश्तों में गलतफहमियां क्यों होती हैं। सबसे पहला कारण, और मुझे लगता है सबसे अहम कारण जो है, वो होता है हमारा ईगो। रिश्तों में गलतफहमियां ज़्यादातर आपके ईगो से होती हैं। जब ये आ जाती है एक थिंकिंग रिश्ते में कि पहले मैं क्यों करूं, या सामने वाला ही माफ़ी मांगे मैं क्यों मांगूं, ये सोच आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देती है और आपके रिश्तों में धीरे धीरे गलतफहमियां पनपनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपने रिश्तों में कभी भी ईगो को ना आने दें, क्योंकि रिश्ते में पहले और बाद नहीं होता है। याद रखिए, एक रिश्ते में दो लोग जब जुड़ते हैं तो वो हम होते हैं, मैं या तुम नहीं होते। इसलिए अपनी उस पावर को याद रखें और कभी भी ऐसे चीज़ों को अपने रिश्ते में ना आने दें। दूसरा होता है कि बात बताने का भी लहजा होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी की बात हमें बुरी लग जाती है या हमें हर्ट हो जाता है, तो उस बात को बताने का भी तरीका होता है। कई बार हम अपनी बातों को उन शब्दों के साथ कहते हैं जो बिल्कुल उल्टा असर डाल देती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से कहना था कि कुछ भी कहना है, कोई नेगेटिव थॉट है आपको बताना है, लेकिन शब्दों का जो चयन है वो हमेशा सही करना चाहिए। कई बार हम ऐसे शब्द कह देते हैं कि वो रिश्ते में मिठास घोलने के बदला और कड़वाहट घोल देते हैं, और सामने वाले को लगता है कि ये मेरे मतलब उनको गलतफहमी हो जाती है, उनको लगता है ये मेरे अगेंस्ट हैं या वो मेरी वैल्यू नहीं करते। इस तरह की थिंकिंग जो है वो बढ़ने लगती है। दूसरा कारण होता है कि बिना सच जाने किसी की हरकत का अपने तरीके से आंकलन करना। कहने का सेंस ये है कि हम कोई बात नहीं जानते हैं, मान लीजिए आपने किसी को देखा और आपने वही सच मान लिया जो आपने देखा, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो, कारण कुछ और हो। तो हमेशा पूरी सिचुएशन को जान के, अच्छी तरह समझ के रिएक्ट करना चाहिए। जब हम अधूरी बातों को अपने मन में कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का अपने मन में ही सीन नहीं बना लेना चाहिए कि अरे ये ऐसे है ना,
5: मतलब
6: वैसे है
5: तो
6: ना।
5: इसी को तो कहते हैं ओवरथिंकिंग। हम लोग बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसी बातों का एक घोंसला बना लेते हैं दिमाग में, और फिर उसी में ही बुनते रहते हैं कि हाँ ये है वो है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
6: हमेशा जब भी चीजों को समझें तो पूरी तरीके से समझें। और दूसरी चीज होती है कि रिश्तों में कभी नफरत नहीं आनी चाहिए। कई बार हमारे रिश्तों में नफरत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं ना, तो उनके बीच में गलतफहमियां होना या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नाराज़गी कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तों में ये होता है। लेकिन कई बार हम अपनी नाराज़गी को नफरत में बदल देते हैं, हमें लगने लगता है कि वो मेरे अगेंस्ट ही है, ऐसे ही था, हम ही नहीं जान पाए। तो कहीं ना कहीं इससे दोहरा नुकसान होता है, आपकी रिश्तों में गलतफहमी होती है और आपके रिश्ते पे जो विश्वास है वो टूटने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी रिश्ते में नफरत जैसी एक नेगेटिव जो वर्ड है वो कभी ना आए। रिश्तों में सिर्फ प्यार की जगह होती है,
5: बिल्कुल
6: नफरत की नहीं। तो भाई, ये तो मैंने बता दिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है आपके रिश्तों में। अब चलिए चलते हैं निवारण की।
5: निवारण तो सीधे मतलब निवारण की ओर अगर हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहला एक प्रश्न आ रहा है कि सीधे सवाल पूछें। पहला प्रश्न, ठीक है, सीधे सवाल पूछने के बजाय, अंदाजा लगाने के बजाय शांत मन से उनके पास बैठें और पूछें कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था, क्योंकि कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
6: राइट,
5: ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और जब भी आपको लगे कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरफ से जो हम वो हो वो सही ही हो, कभी उनकी तरफ से भी सही हो सकता है। एंड एक बहुत ही बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि आई का यूज करें, बात करते समय तुम हमेशा ऐसा करते हो, कहने के बजाय मुझे बुरा लगता है जब, यानी आई फील हर्ट व्हेन, ये ऐसे करके बात करें। समझ में आया?
6: जी मैम।
5: एंड पूरी बात सुने, बीच में टोकने के बजाय सामने वाले की बात को पूरा सुने और समझने की कोशिश करें, ठीक है
6: जी।
5: ऐसा होना चाहिए,
6: ऐसा होना चाहिए,
5: क्योंकि लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफी लोग मतलब आधी अधूरी बात सुनने पर ही लोग क्या करने लगते हैं, अरे तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो हाँ। ये, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम समझो, तो ऐसी बातें होने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एंड मैसेज पर गंभीर चर्चा से बचें, किसी भी इम्पोर्टेंट विषय पर अगर बात करनी है तो उसे फोन या टेक्स्ट मैसेज की बजाय आमने सामने बैठकर बात करें।
6: हाँ, ये तो होता है, सामने सामने बात करने की एक वो अलग होती है बात।
5: और उसके बाद आता है कि भावनाओं को स्वीकार करें, यदि कोई विवाद बढ़ जाए तो ब्रेक लें, शांत हो जाए और फिर सही तरीके से बात को शुरू करें।
6: ओके, यानी कि
5: कितना समझ में आया?
6: थोड़ा थोड़ा
5: समझ नहीं है, पूरा समझना है कि रिश्तों में गलतफहमी को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जैसा कि महेंद्र जी लिख रहे हैं कि रिश्ते में कुछ लोगों को गलतफहमी में कुछ ना कुछ बोले तो वो सिर चढ़ जाते हैं। एंड अनोखी शर्मा, सही कहा आपने मैम, अनोखी शर्मा जी आई हैं। अनोखी, आपका नाम बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, अनोखी। तो अनोखी जी, और हमारी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो एक फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हम लोग जो भी आपके लिए प्रश्न लेकर के आते हैं, मटेरियल लेकर के आते हैं, वो आप लोगों को पसंद आते हैं। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल भाई, आपके फीडबैक का है इंतजार, क्योंकि हम है बेहद बेकरार। फटाफट से भेज दीजिए और चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए स्टेडियम।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली, आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ।
6: जी।
5: तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पहुंच चुके हैं और अब आपको बताने की बारी है कि भाई अभी तक हमने की बात कि रिश्तों को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी फेस को भी खूबसूरत बना सकते हैं।
6: एग्जैक्टली तो अब टाइम हो चला है आज के ब्यूटी टिप्स और हेयर टिप्स के बारे में, तो फटाफट शुरू कर दे अंशिका।
5: जी मैम, तो एक आज मैं आपको बताती हूँ फेस के लिए जो कि सबसे अच्छा होता है, अगर आपको अपनी स्किन ग्लोइंग ग्लोइंग ग्लोइंग चाहिए। तो आज जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब अभी मैंने काफ़ी दिन से नहीं किया है बट हाँ नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, हमारी फेस पे जो डेड स्किन हो जाती है ना उसे हटाने के लिए और चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, और वो दो फ्रूट्स का काम है, सॉरी दो नहीं एक फ्रूट का काम है।
6: ओके
5: आज फ्रूट्स बताने के लिए इसलिए।
6: आई गेस पपीता।
5: अरे वाह,
6: देखा, पूछो क्यों?
5: क्यों?
6: क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ पपीता।
5: हाँ।
6: तो इसलिए उसके छिलके सुखाती हूँ और उसका पाउडर बनाती हूँ।
5: जी जी,
6: और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो बारी बारी बताएंगे, लेकिन हाँ जी का कुछ बोल रही थी।
5: जी मैम, तो मैं आपको ये बता रही थी लिसनर्स कि पपीते में बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि हमारी फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 2 से 3 टुकड़े पके पपीते ले लेने हैं।
6: ओके।
5: और 1 चम्मच आपको ले लेना है रॉ मिल्क।
6: हाँ।
5: यानी कि कच्चा दूध। पपीते को पीस करके पेस्ट बना लीजिए अपने चेहरे के अकॉर्डिंग और उसमें 1 चम्मच आप रॉ मिल्क डाल दीजिए और
6: उसको पेस्ट बना ले।
5: हाँ, उसको अच्छे से पेस्ट बना ले और 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर
6: बस खाली पपीता
5: और रॉ मिल्क
6: कच्चा दूध।
5: हाँ।
6: ओके।
5: और इसे आराम से अपने फेस पे लगाएं 20 मिनट तक और उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर इसे करेंगे, मतलब हर 2 वीक में आपको एक बार करना है,
6: यानी इंस्टेंट ग्लो के लिए। हाँ। ये बहुत बेस्ट है।
5: अगर आप जैसे मंथ में 2 बार कर ले रहे हैं ना तो फिर आप देखेंगे कि आपका फेस ग्लो ग्लो ग्लो करेगा और आपको बहुत सारी तारीफें मिलेंगी।
6: जी, तो मैं आप सभी लिसनर्स को एक बात बता देना चाहती हूँ। आई थिंक जो हमारा शो की टाइमिंग होती है वो होती है 3 बजे और आपके कॉलर ट्यून गोंडा की जो टाइमिंग है वो 3 बजे से है, तो प्लीज़ मजबूरन मुझे ये कहने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ कि आप लोग पहले से ही कॉल क्यों करते हैं। हमेशा से कहा गया है कि 1:30 बजे से ठीक 3 बजे तक के बीच में अगर कॉल आया तो हम उन नंबर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें ताकि हमें मजबूरन ऐसा काम करना पड़े। तो आज से ही ठीक 3 बजे से पहले अगर किसी की भी कॉल अगर आती है, क्योंकि कल भी बहुत सारी कॉल आ रही थी, तो मजबूरन हमें ब्लॉक करना पड़ेगा अगर 3 बजे से पहले आपकी कॉल आती है तो। तो प्लीज़ अगर आपको सॉन्ग सुनना है या फिर कॉलर ट्यून में आपको फरमाइश करनी है तो ठीक 3 बजे ही आप कॉल किया करें। ये इन्फॉर्मेशन मैं कल ही मैंने सोची थी लेकिन मैं दे नहीं पाई थी और आज मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी है, तो इसको आप ज़रूर से अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारे बालों के लिए, कि बालों में हमेशा से रूसी हो जाती है, फंगस हो जाता। हाँ। है तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, है ना। तो क्या करना है हमें कि आपको नीम का तेल इस्तेमाल करना है। नीम का तेल जो होता है
5: जी,
6: नीम का तेल लेना है और उसमें आपको एलोवेरा जेल मिला करके उसको पेस्ट मिला उसकी पेस्ट बना लेनी
5: जी।
6: है जो कि मैंने खुद ये किया हुआ है अंशिका
5: जी मैम।
6: बालों में जो कि स्कैल्प पे जो बहुत ईचिंग होती है और बाल जो आधे टूटने लगते हैं, तो अगर आपको ये चीजें हैं तो आप नीम का तेल और आपने उसमें एलोवेरा जेल मिला करके, मतलब 2 चम्मच नीम का तेल लेना है और 2 चम्मच आपको, 2 से 2.5 चम्मच आपको एलोवेरा जेल, उसको लेकर के अच्छे से आपने पेस्ट बना लेनी है और उसको जड़ों में लगाना है लगभग 15 से 20 मिनट और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से आपको उसको धुल देना है
5: जी। तो आई होप लिसनर्स कि आपने सुना कि आपको क्या करना है, तो इसे जरूर यूज करिएगा अपने हेयर को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के
6: जी। और टिप ऑफ द डे,
5: टिप ऑफ द डे आज क्या कहता है टिप ऑफ द डे, तो आज का टिप ऑफ द डे ये है कि भाई हमने आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी रिश्तों पे बातें बताई हैं, तो आज का टिप ऑफ द डे कहता है कि बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, अच्छी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। अगर कोई भी आपको बार बार बार बार आपकी बुरी यादें याद दिला रहा है तो उससे दूर रहें।
6: हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल भी जो कि आप ना करें। और अभी एक मैसेज आया है महेंद्र जी का कि मैम ये भी बता दे कि चैट बॉक्स में बातें ना करें फालतू, तो मैं बताऊं कि ना ये कई बार हम लोगों ने क्या कहते हैं किया हुआ है, बट ऐसा नहीं मानते हैं तो मजबूरन फिर जो आजेस होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज़ फिर इग्नोर करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मैसेजेस को रीड ना करें, इग्नोर करें, तो ही आप करें, अदरवाइज आप बिल्कुल समझदार हैं। और 3 बजे से पहले अगर किसी की कॉल आती है सुन सहेली में, तो मजबूरन हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, इट मीन्स कि हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आप 3 बजे ही ठीक कॉल करें, कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम शुरू होता है 3:05 पे, यानी कि 3 बजे आप कॉल करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी फरमाइश समय से पहुंची जा सके। तो चलिए अब हम दोनों को दें इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
5: दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और...

हां जी प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। बादल जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया कुमार सानू और अलका जी की आवाज में, नदीम श्रवण का म्यूजिक, समीर के बोल, साजन चले ससुराल वाली फिल्म से। और आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, और लगातार आपकी कॉल्स आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रबल मिश्रा जी, आपका स्वागत करते हैं। राजस्थान से महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अनोखी शर्मा लिख रही हैं, हाय मैम हाय कैसी हैं आप। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने फरमाइश कर दी है सावन की झड़ी लगने वाली है, क्योंकि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, विनोद खन्ना वाला गाना। प्रबल मिश्रा जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। हमारे लिसनर और जुड़े हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ए आई मैम जी, ए आई मैम जी तो नहीं है लेकिन हाँ गुड आफ्टरनून टू यू। ओके, और इसके बाद आया है वाओ छोटा भीम, www.chotabheem.com। फिलहाल के लिए आपका भी स्वागत करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम उन्नति है, और आपका भी स्वागत करते हैं अनोखी जी कॉलोनी गोंडा में। ताबिश जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं उथी जी गुड आफ्टरनून टू यू। और बाकी मैसेजेस लेते हैं इस छोटे से गाने के उस पार, क्योंकि अगली फरमाइश जो हमारी आई है वो आई है देवी प्रसाद जी की, और देवी प्रसाद जी का एंथम सॉन्ग जहां खुशी मिलती है सोना वहीं तुम रहना। तो आइए आपको खुशी दिलाते हैं और इस बेहतरीन से गाने को सुनाते हैं जो आपका पसंदीदा गाना है देवी प्रसाद जी। इस गाने के यानी कि इस फरमाइश के उस बार मिलेंगे लेकर के आपका अगला सॉन्ग अगला गाना। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना गोला ट्यून गोंडा, आपके अपने एफएम रेडियो 91.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आजनूति के साथ। एंजॉय कीजिए इस प्यारी सी फरमाइश को, इस सैड सॉन्ग को, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश यानी कि सुनील कुशवाहा की फरमाइश को लेकर के।

तो देवी प्रसाद जी की इस फरमाइश के बाद आपका वापस से स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। और हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था वो आवास विकास धर्मेंद्र मोहन जी का था, जो लिख रहे थे उन्होंने जी गुड आफ्टरनून माय सॉन्ग दिल के आसमां पे गम की घटा छाई। ओके ओके थैंक यू सो मच। एंड दरक्षा जी हमारे साथ जुड़ी है, दिख रही है। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? सबलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम मुंबई, आपका भी स्वागत करते हैं। प्रबल मिश्रा जी ने लिखा है नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और इसके बाद आपके मैसेजेस अनोखी जी की तरफ से कुछ स्टार्स। नवीन राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आते ही डांस कर लिया है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? एंड ओके प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रमुख जी आपको कॉल करना पड़ेगा, कॉलिंग नंबर है 6393316429, क्योंकि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद योर आज उन्नति आपके अपने एफएम रेडियो कैलसली पर। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। और अगली फरमाइश जो आई है वो आई है सुनील कुशवाहा जी की, और वो सुनना चाहते हैं कसम खाकर कहो क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आप इस खूबसूरत नगमे को एंजॉय कीजिए, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के अगली फरमाइश। बोल है समीर के, म्यूजिक है नदीम श्रवण का, और आप सुनने जा रहे हैं अलका जी और कुमार सानू की आवाज में कसम खाकर कहो दिल है तुम्हारा फिल्म से।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश, और आपने एंजॉय किया कसम खा कर कहो दिल है तुम्हारा फिल्म से। कुमार सानू और आपकी पसंदीदा फीमेल आर्टिस्ट अलका जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग नहीं था? नदीम श्रवण का संगीत और समीर के बोल, और समीर के बोल के बीच में ना हमारे एक लिसनर भी बड़े प्यारे बोल लिख रहे हैं, नाम है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, वैसे पता नहीं क्यों लेकिन आज मैं अपनी रील भी धर्मेंद्र नाम पर ही बनाने वाली थी, एक्चुअली धर्मेंद्र पाल जी के ऊपर, और आपका नाम बार बार हमें नज़र आ रहा है तो हमें आपकी ही याद थोड़ी ज़्यादा आ रही है। और लिखा है उन्होंने, दिन हुआ तो रात होगी, हो मत उदास कभी बात भी होगी, कितना प्यार से चुना है तुमको, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। क्या बात है, बड़ा ही बेहतरीन लिखा करते हैं आप। एंड ओके, तो ताबिश जी लिख रहे हैं, हम तो दाल भात खाकर सुनेंगे। दाल भात खा के आप सुनेंगे नहीं, आप सोएंगे, क्योंकि सुनने की वाली बारी आती ही नहीं है। दाल चावल पेट में जाता है और नींद पहले आती है कि नहीं? एंड ओके, सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें सुन रहे हैं गोंडा से, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में, और हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। आप इस पर अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं। प्रमुख जी लिख रहे हैं, सब लोग कॉल कर रहे हैं, प्रमुख कॉल नहीं करेगा तो इसका तो उसका गाना नहीं बजेगा क्या? बेशक नहीं बजेगा, इंसाफ कीजिए मैम, इंसाफ ही मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप तो चैट जीपीटी से भी तेज हैं। आइला, ऐसा भी है क्या? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ जुगाड़ लगाइए जिस पर हमारा गाना प्ले हो जाए, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माफ़ कीजिएगा प्रमुख जी, लेकिन आपको ये एहसान भूलना पड़ेगा और आपको कॉल करना पड़ेगा। और इसी के साथ उन्नाव हमारे साथ जुड़ गए हैं जो शायद हमें उन्नाव से सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, और आपका स्पेशल वाला नेम क्या है आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और इन्जॉय करते हैं प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश पर वो गाना जिसको सुनने के बाद आप भी हुक स्टेप करेंगे ऋतिक रोशन वाला, क्योंकि लकी अली की आवाज़ में होने वाला है कहो ना प्यार है से, ऋतिक रोशन का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, ऑफ माइन फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली, एक पल का जीना और फिर तो है जाना। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोला, आपकी अपनी एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर।

विजय अकेला का बोल और ऋतिक रोशन के हुक स्टैब। भैया ऋतिक रोशन वो एक्टर है ना जिनको कहा गया था कि आप कभी डांस नहीं कर पाओगे, और ऋतिक पाजी ने शायद इसको अपने फेफड़ों पे ले लिया, दिल पे ले लिया, पता नहीं, लेकिन उन्होंने इतना गजब का डांस किया है कि आज वो डांसर नंबर वन कहलाते हैं। अगर आप ऐसा मानते हो तो बताइएगा जरूर। फिलहाल लकी अली की आवाज़ में आप इस गाने को सुन रहे थे। लकी अली जो एक जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, और हम आपको बता दें जब बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई थी ना तो बड़ी सारे स्ट्रगल से भरी हुई थी। ऑफकोर्स स्ट्रगल का नाम ही पता नहीं क्यों ऐसा है, सक्सेस इक्वल्स टू स्ट्रगल, स्ट्रगल इक्वल्स टू सक्सेस, हमेशा ऐसा ही रहता है। और लकी अली वो एक्टर, वो सिंगर हैं जिन्होंने अपने गाने का, जो अपना पहला एल्बम था उसका पहला गाना बड़ी मेहनत के साथ गाया था, और जब उन्होंने वो गाना गाया था तब जाके हिट हुआ था। हालांकि उससे पहले कई कंपोजर, कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि नहीं तुम्हारे गाने में बात नहीं है, और उन्होंने इस बात को झूठा साबित कर दिया। तो इस गाने में वो दो लोग हैं जिन्हें रोका गया था, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट आए थे, कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल आए थे जहाँ पर लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो सकता है, बट हार ना मानना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज वो सिंगर नंबर वन, डांसर नंबर वन और हैंडसम नंबर वन के नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला जो फरमाइश है वो किसी और की नहीं, कुमार टेलर्स की है, और वो कह रहे हैं जा रहे हो लौट कर आना। भैया हम तो कहीं गए ही नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको सुना देते हैं आप ही की पसंद का ये बेहतरीन सॉन्ग, बेहतरीन

नगमा जो कि बॉलीवुड से ही है। आप एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा और कॉल करते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं विद योर फेवरेट वाली आर्च अर्चुनती के साथ कॉल ट्यून गोंडा 89.6 एफएम पर फ्राइडे स्पेशल स्टेडियंट। भाई सऊदी से हमारे साथ मुस्तफा जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं मुस्तफा जी, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। एंड इसके बाद कार्तिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कार्तिक जी। एंड मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू यू।

हम दीवाने हैं तेरे, और आपने एंजॉय किया ये बेहतरीन सा नगमा कुमार टेलर्स की फरमाइश पर। और ये वो गाना था ना जिसकी फरमाइश सुनने के बाद कुछ लोगों के गंगा जमुना सरस्वती तीनों बह चुकी थी, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा सा किसी ने फील तो किया है। बॉस बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। रवि गोना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून मैम जी। गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। एंड इसके बाद राजू टेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। इरशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैसे हैं आप इरशाद जी? आपका इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, रुख करते हैं और हम आपको मिलाते हैं अगली फरमाइश यानी कि सुरेंद्र जी की फरमाइश की तरफ। और वो सुनना चाहते हैं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी, हालांकि मानसून तो आ चुका है और मानसून की बारिश में गोंडा की गलियों में पानी भी भर चुका है। तो इससे पहले कि आप पानी में जाकर कहीं नाव डुबो दें, उससे पहले हम आपको श्रीदेवी और ऑफकोर्स दूसरी जो बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही उम्दा और बेहद ही प्यारी चुलबुली सी एक्ट्रेस हैं जूही चावला, उनके ऊपर फिल्माया गया गाना विनोद खन्ना और ऑफकोर्स आपके फेवरेट, वो कौन से हैं नाम बताइएगा ज़रूर, और इन्जॉय करते रहिए चांदनी फिल्म से ये खूबसूरत सॉन्ग सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड।

लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है और आप सुन रहे हैं विनोद खन्ना और श्रीदेवी पर फिल्माया गया गाना, प्लस जूही चावला भी इसमें नजर आती है। आपको बता दें भैया, श्रीदेवी एक वो एक्ट्रेस हैं जिनके बारिश के गानों पर सच में बारिश हो चुकी है। जी हाँ, आपको हम बता दें भैया कि लम्हे फिल्म का गाना है मेघा रे मेघा रे, और एक वो गाना है जब शूटिंग के लिए बारिश तैयार थी, नकली बारिश करने को डायरेक्टर तैयार थे, एक्ट्रेस तैयार थे, बैकग्राउंड डांसर्स तैयार थे, क्रू मेंबर तैयार था कि चलो फाइनली अब शूट करना ही है, और जैसे ही डायरेक्टर ने बोला कि एक्शन, वैसे ही बादलों ने भी एक्शन दिखा दिया और सच में बारिश होने लगी थी। और ये मोमेंट देखते ही डायरेक्टर ने कहा नहीं नहीं नहीं, कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा, लाइटनिंग बंद नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जादुई मोमेंट बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर हैं, और इसीलिए इस गाने को असल बारिश में सूट किया गया था। अब आपको बता दें भैया, ये सिर्फ श्रीदेवी के साथ ही हुआ है अभी तक कि उन्होंने मेघा रे मेघा रे मेघा को बुलाया और मेघा सच में दौड़ी चली आई, प्लस वो बारिश जो नकली होने जा रही थी वो असली हो गई। इसीलिए गाना आज भी बड़ा पॉपुलर प्लस बहुत मैजिकल माना जाता है। और आप बताइए कि आपको ये फैक्ट पता था इस गाने के बारे में, अगर नहीं तो जानकर तो अच्छा लगा ही होगा, और लगा है तो चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इन्जॉय कीजिए हमारी अगली फरमाइश को, जो किसी और की नहीं अमित कुमार जी की आई है, और वो पूछ रहे हैं टुकुर टुकुर देखते हो कहाँ, हम मैसेजेस देखते हैं आपके चैट बॉक्स वाले जो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं उनको। प्रमुख जी बार बार हमें याद दिला रहे हैं, आई एम वेरी बिजी बट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच प्रमुख जी, और हमें याद है कि आप बिजी होने के बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हैं। ध्रुव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं गोल्ड, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन गोल्ड मिले हैं, थैंक यू सो मच। फिलहाल किस खुशी में मिला ये भी बताइएगा।

हाँ जी, तो आपने इंजॉय किया अमित कुमार की फरमाइश पर टुकुर टुकुर देखते हो क्या? और हमारे ध्रुव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मेरे पापा का फेवरेट सॉन्ग है। क्या बात है जनाब, तो इंजॉय किया आपने और आपके फादर ने, आई थिंक एंजॉय तो किया होगा। फिलहाल आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है किसी और की नहीं, चांद बाबू की, और वो सुनना चाहते हैं साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। अभी तो दुल्हन से जाके पूछना पड़ेगा ना कि वो क्यों शर्मा रही है जब साजन जी घर आ चुके हैं। तो चलिए मैं पूछ कर आती हूँ, तब तक के लिए आप एक वाटर ब्रेक लेकर आइए और इस गाने को एंजॉय कीजिए, क्योंकि पानी गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू कि आप जाकर थोड़ा सा पानी पीकर आए और इस गाने को एंजॉय करें। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर कॉलर ट्यून गोंडा में ही, ऑफकोर्स, क्योंकि आज है फ्राइडे, दो घंटे का स्पेशल विद योर फेवरेट आरजे रवि आपके अपने आपन पर।

कुमार सानू, अलगर जी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे हैं जतिन ललित का गाना कुछ कुछ होता है फिल्म से। साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माया, अभी तो भैया दुल्हन ही बता सकती है वो क्यों शर्मा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इट्स कुमार, जो लिख रहे हैं हाय गुंडा कैसे हैं आप बताइएगा जरूर। एंड इसके बाद लगातार आपके मैसेजेस हैं और मैसेजेस के अलावा एक और हमारा मैसेज आया है कि नंबर क्या है। भाई नंबर वही है 6393316429, आई रिपीट 6393316429 दोनों। इस पर आप कॉल करके अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और अगली फरमाइश की तरफ चलते हुए हम चलेंगे आवास विकास, क्योंकि वहां से आई है फरमाइश धर्मेंद्र मोहन जी की, जो सुनना चाहते हैं ये गाना कि दिल के आसमान पर गम की घटा छाए। क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों छाए, नहीं आपके आसमान पर गम की घटा क्यों छा रही है, पहले मुझे आप इतना बताइए। आप खुशियों की घटा भी छा सकते थे, ला सकते थे, मुस्कुरा सकते थे, बट आपने न जाने क्यों लेकिन यही गाना चुना है। वैसे धर्मेंद्र मोजी, मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है, आप अक्सर सैड सॉन्ग की फरमाइश ज़्यादा करते हैं। ऐसे हमारे 3-4 लिसनर हैं जो बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली हमारे देवी प्रसाद जी, धर्मेंद्र मोहन जी एंड समटाइम्स हमारे सुरेंद्र यादव जी। फिलहाल आप लोगों को सैड सॉन्ग में इतना क्यों मज़ा आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे पास कुछ और भी लोग हैं जो सैड सॉन्ग के दीवाने बहुत ज़्यादा हैं। इन्जॉय करते रहिए क्वालिटी गुना, मिलते हैं इस गाने के उस पर अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आवाज विकास से आप सुन रहे थे धर्मेंद्र की फरमाइश पर ये बेहतरीन सनगमा। और बारी हमारे अगले गाने की। अगला गाना जो आया है वो सभ्या जी की फरमाइश है, टूटा जो कभी तारा। और तारा टूटने पे लोग विश मांगते हैं, पर क्यों क्यों मांगते हैं भैया, मुझे बताइए जरा। और कभी कभी जब आपका सिस्टम काम ना कर रहा हो ना, तो आपका दिल भी टूट जाता है, जैसे तारा टूट रहा है। फिलहाल के लिए आई एंजॉय कीजिए ये टाइगर श्रॉफ और जैकलीन पे फिल्म आया गया गाना। एक ऐसा रोमांटिक, ऐसा खूबसूरत सॉन्ग, प्लस ऐसा जादुई मैजिकल वर्ड से ये गाना निकाला गया है ना, कहने को तो इसमें पूरा VFX लगा हुआ है, न जाने कितनी एडिटिंग हुई है, लेकिन इतना खूबसूरत माहौल है इस गाने का, सुन के मजा आता है। तो आइए आप भी इन्जॉय कीजिए। और अगली फरमाइश जो हमारी होने वाली है वो है राजू टेलर्स जी की, शहनवाज जी की, इरशाद जी की, राजू सलमानी जी की, महेंद्र दीपन, निशा, रमेश कुमार, तविश खान, अजीज, सबलू सावंत, अरण्या मिश्रा, अरमान, निशा मेहताब, अर्जुन प्रसाद, शालिनी मौर्य, राजेश मीना, बबिता जी, निब्बर जी, मिश्रा ऑप्टिकल एंड ध्रुव। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोड़ा। स्टे ट्यून्ड।

अब आपको इस सीधे नए जमाने से लेकर जाते हैं उस जमाने में जहां पर भैया अमिताभ बच्चन का चल रहा था प्राइम टाइम और आप एंजॉय कर रहे थे अमिताभ बच्चन की बैक टू बैक हिट फिल्में, और ये वो गाना है जिसको करने से हीरोइन ने साफ मना कर दिया था कि ना हम तो नहीं करेंगे, बट इसके बाद भी उन्होंने इस गाने को किया और ऑफकोर्स ये गाना बहुत ही बेहतरीन प्लस सुपर डुपर हिट साबित हुआ था। नमक हलाल फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं 1982 में आया गाना आज रपट जइयो तो हमको ना बताइयो या बचाइयो आप बताइए। फिलहाल आइए हम आपको बता दें राजू टेलर्स की फरमाइश है और आप एंजॉय कर रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा फ्राइडे स्पेशल। आपके पास अभी एक घंटा और है तो इंतजार कीजिए और आपकी फरमाइशों को हम जरूर से प्ले करेंगे, तो दिल को छोटा बिल्कुल भी मत कीजिए।

वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्पीड को करेंगे आप डबल, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप उन्नति जी जा रही हैं अपनी 200 की स्पीड में, जिसका टाइटल ट्रैक भी मुझे मिल चुका है। काफी लोगों ने मुझे नाम भी दे दिया है कि 200 की स्पीड वाली आज उन्नति कैसी है आप, और एक्चुअल में जब ये नाम मुझे याद आता है ना तो याद आता है कि हम कितना फास्ट बोलते हैं। फिलहाल तो हमारे रवि जी लिख रहे हैं, ओके हमारे ध्रुव जी लिख रहे हैं एक्चुअली कि ये कविता नीट के बच्चों के लिए है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। एंड ओके, तो आप लोगों की लगातार मैसेजेस हमारे साथ आ रहे हैं और आप बने हुए हैं लगातार रेडियो गार्डन फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ कोर्स आपकी अपनी एप्लीकेशन से, यानी कि रेडियो ज्ञान 89.6 FM की एप्लीकेशन से। अगली फरमाइश आई है शहनवाज जी की और वो सुनना चाहते हैं एक ऐसा क्यूट सॉन्ग जो अक्सर आपने अपने बचपन में जरूर सुना होगा और किसी न किसी के लिए गुनगुनाया भी होगा एज अ लोरी। सुनते रहिए।

शहनवाज की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी परी, और बोल लिखे थे समीर साहब ने, संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने, और ऑफ कोर्स आपने सुना उदित जी की आवाज में इस बेहतरीन सनगमे को। और वक्त है अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश है जो कि हमारे इरशाद जी की है, और आप इनकी फरमाइश पे सुनने जा रहे हैं ये वाला गाना जो 90s का काफी पॉपुलर सॉन्ग है। स्टे ट्यून्ड।

0: जवानी।
1: क्या बात है भैया, इरशाद जी की फरमाइश पे आपने इस बेहतरीन से नगमे को, इस प्यारे से म्यूजिक को एंजॉय किया। और अब वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। और अगली फरमाइश आई है राजू सलमानी जी की, और वो सुनना चाहते हैं अगेन एक 90s का ही गाना जिसमें आपको आपके फेवरेट विलन नजर आए हैं। विलन का कुछ और नाम नहीं, विलन का नाम है अमरीश पुरी साहब, जो बनने तो एक्टर आए थे, हीरो आए थे, लेकिन बनाया उन्हें विलन गया। और उन्होंने अपनी विलन में इतना खूबसूरत अदा दिखाई है ना, इतनी बढ़िया किरदार निभाए हैं कि आज भी लोग उनके नाम से डरते हैं। ध्रुव त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, त्याग की दूसरी मिसाल नाम है सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपने भविष्य को छोड़कर देश के युवाओं के भविष्य को चुना है। आज वही महापुरुष हमारे हक के लिए जंतर मंतर पर अनसन पर बैठे हुए हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ उनकी ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरे देश के युवाओं की विफलता होगी। बात बिल्कुल सही है आपकी, एंड थैंक यू सो मच, आपने इस बात को चैट बॉक्स में रखा। प्रबल मिश्रा जी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, और उन्हें पता है कि हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, इसलिए हमको ये लाम जरूर सुनाया जा रहा है ना।

हाँ जी, तो भाई ये गाना जो था वो रमेश कुमार जी का था। अपने इस गलती के लिए आपसे माजरत चाहेंगे, हमने नाम तबिश जी का ले लिया था क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक की वजह से। माफ़ कीजिएगा रमेश कुमार जी, आपकी बहुत ही बेहतरीन पसंद है और बहुत ही खूबसूरत आपने गाने की फरमाइश भी की थी। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा, अगली फरमाइश है तबिश खान जी की और आई थिंक नाम को ऊपर नीचे कर देने में हम बहुत आगे हैं। एंड प्रबल जी लिख रहे हैं, छोटा भीम आपके लिए कुछ लिखा था, आपने पढ़ा नहीं। जी जनाब, हमने पढ़ लिया लेकिन हमने बस किसी को बताया नहीं कि आप हमारे बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए तबिश खान जी की फरमाइश को, है जवानी तो इश्क तो होना ही था। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, यानी कि अगली फरमाइश, अगली डिमांड को लेकर के, और हम चलेंगे अगली फरमाइश पर। लेकिन उससे पहले आप एंजॉय करें नया नवेला खूबसूरत गाना स्टूडियो।

है जवाने इश्क तो होना ही था, हमसे आपने इंजॉय किया ये बेहतरीन संगीत। और अब आइए चलते हैं मुंबई में अजीज जी के गाने की फरमाइश को कंप्लीट करने, और वो सुनना चाहते हैं ख्वाजा का मेला आ रहा है। तो आइए ख्वाजा जी के गाने को इंजॉय कीजिए, और हम मिलेंगे सबलू जी की फरमाइश पर, जो कि अगेन मुंबई से ही है। थैंक यू सो मच।

भाई आपने इंजॉय कर लिया इन दो बेहतरीन गाने को बैक टू बैक, और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और आप इंजॉय करने जा रहे हैं आपकी पसंदीदा सिंगर आशा जी की आवाज़ में, जो हाल फिलहाल में हमें छोड़कर चली गई हैं, इस वजह से उन्होंने अलविदा कह दिया है। उनकी आवाज़ में सबलू जी की फरमाइश एक परदेसी मेरा दिल ले गया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

सबरू जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया आशा जी की आवाज में उनका बेहद ही फेवरेट और बेहद ही पॉपुलर सॉन्ग एक परदेसी मेरा दिल ले गया। और उसी के साथ आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, एंजॉय करते हैं अरण्या मिश्रा जी की फरमाइश। गोविंदा पर फिल्माया गया सुनो ससुर जी सुन लो मेरी बात, दुल्हन दूल्हे की जाएगी साथ। एंजॉय कीजिए शादी वन, शादी का स्पेशल वाला गाना। और एक्चुअल में अनन्या मिश्रा जी के घर में भी शादी चल रही है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।

अनन्या मिश्रा जी की फरमाइश में आप सुन रहे थे शादी का स्पेशल वाला गाना, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश का जो डेडिकेटेड है आप सभी के लिए अरमान जी की तरफ से। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं दिल चाहते हो या जान चाहते हो। और ओके कमल जी, मैं आपकी बात समझ गई पूरी तरह से। अनोखी जी, आपका वापस से स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोना में। स्टे ट्यून्ड।

भाई अनोखी जी लिख रही हैं, इस दुनिया में सब प्यार के दुश्मन हैं। चलिए ये बात कर, इस बात का जवाब हमारे लिसनर आपको चैट बॉक्स में जरूर से देंगे। और साथ ही लिखा है, एक श्वेता मैम थी जो मेरी बात को समझती थी, एक आप आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी कि हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो ऑफ कोर्स मुंबई से ही आई है। और ये गाना जो आपने एंजॉय किया, ये अरमान जी की फरमाइश पर था, आप सभी के लिए डेडिकेटेड था उनकी तरफ से, जितने भी लोग एंजॉय कर रहे थे। और अगला सॉन्ग है मेहताब जी का, जो पल्लू गिरा दिया है। आप एंजॉय कीजिए 90s का सॉन्ग। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

मेहताब जी की फरमाइश पे आपने इंजॉय किया जो तूने पल्लू गिरा दिया, और अब बारी है हमारे अर्जुन प्रसाद जी की जो हमें सुन रहे हैं दौलतपुर से। सोनू निगम जी की आवाज में उन्होंने फरमाइश की है, उम्र कैद होगी अदालत, फैसला अदालत का। तो आइए एंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर, जो किसी और की नहीं, शालिनी मौर्य जी की, राजेश मीना जी की, बबीता जी की, निब्बा जी की, मिश्रा ऑप्टिकल, ध्रुव, राकेश, देवानंद और एहसान जी की होने वाली है। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, आपकी अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। एंड हमारे साथ लगातार आप जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत स्वागत है।

आप सुन रहे थे अर्जुन प्रसाद की फरमाइश पर, और वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। शैलन जी की फरमाइश पे आप सुनने जा रहे हैं एक हरियाणवी सॉन्ग ब्याह के लावंगे। आप एंजॉय कीजिए। हरियाणा से आया ये गीत जो आपको बेहद पसंद आने वाला है, स्पेशली इसकी हाई बीट। और अनोखी जी लिख रही हैं, पुराने लिसनर सब चले गए, नए भर गए हैं। जी जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सॉरी जी मोहतरमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ हमारे पुराने लिसनर भी जुड़े हुए हैं और वो भी आते हैं, प्लस हमारे साथ हमारे कुछ नए लिसनर भी जुड़ गए हैं। तो आप लोग मिलकर एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा अपनी आशुति के साथ।

हां जी, तो आइए चलते हैं हमारे अगली गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, और आप सुनने जा रहे हैं सड़क फिल्म से तुम्हें अपना बनाने की कसम मैंने खाई है। एंजॉय कीजिए एक रोमांटिक, एक बेहतरीन खूबसूरत सॉन्ग, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और इस गाने की रेटिंग आप कितनी देने वाले हैं चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।

राजेश मीना जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है सड़क फिल्म से। और अब बारी है हमारी अगली फरमाइश जो कि है बबीता जी की, और वो सुनना चाहती हैं धड़कन फिल्म से दिल ने ये कहा है दिल से। तो आइए एंजॉय कीजिए और आप भी चिल्लाइए जरा चैट बॉक्स में कि देव बस भी करो देव।

बबीता जी की इस बेहतरीन खूबसूरत फरमाइश के बाद, क्योंकि आपने तो नहीं कहा कि उफ देव बस भी करो तो हम ही कर देते भैया, बस भी करो, अलका जी कुमार सानू उदित नारायण इतना खूबसूरत गाना आपने गाया है, समीर के बोल हैं और ऑफ कोर्स नदीम और श्रवण का म्यूजिक है। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ और आपको सुनाते हैं रेलवे क्रॉसिंग से आई हुई एक खूबसूरत गाना, हेमा मालिनी जी पर फिल्माया गया सॉन्ग ये वाला।

निम्बर जी की फरमाइश पे आपने इंजॉय किया ये वाला गाना, और आइए चलते हैं हमारे मिस्टर ऑप्टिकल जी की फरमाइश की तरफ, और वो सुनना चाहते हैं आज फिर तुम पर प्यार आया है, और ये गाना है विनोद खन्ना पर फिल्माया गया पुराना सॉन्ग यानी कि ओल्ड इज गोल्ड वाला सॉन्ग आप सुनने जा रहे हैं। एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंदा। मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो कि ध्रुव जी की है आवारा अंगारा, जो कि अभी हाल फिलहाल में आई फिल्म से है। स्टे ट्यून्ड।

पंकज उदास और अनुराधा पॉटबाल की आवाज में आपने एंजॉय किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, अजीज कैसी साहब के बोल। आज फिर तुम पर प्यार आया है और आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। ध्रुव जी की फरमाइश पर आप सुनेंगे तेरे इश्क में आवारा अंगारा। स्टूडियो

इस खूबसूरत से गाने को बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन क्या करें, वक्त ने इशारा कर दिया है कि आपसे विदा लेने का वक्त होता जा रहा है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी अगली फरमाइश की तरफ, और आप एंजॉय कीजिए राकेश वर्मा जी की फरमाइश, मुझे नौ लखा दिला दे, स्टूडियो फ्रॉम शराबी फिल्म।

राकेश वर्मा जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया, मुझे 9 लाखा मंगा दे। और आइए चलते हैं अगली फरमाइश, जो कि देवानंद और हमारे कमल नैन जी की फरमाइश पर है। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचा चला आता हूँ। एंजॉय करें आप इस बेहतरीन से गाने को किशोर दा की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

देवानंद जी और कमल जी की फरमाइश पे आपने एंजॉय किया, तेरी आंखों में वो जादू है और वक्त है हमारी अगली फरमाइश का, जो कि है एहसान जी की, और वो सुनना चाहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। तो आइए एंजॉय कीजिए, और अभी 15 अगस्त तो नहीं आई है लेकिन फिर अभी से स्टार्ट हो चुका है, तो एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और इसी गाने के साथ हम चलेंगे हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ। आज के शो की आखिरी फरमाइश आई है प्रमुख जी की, और इस गाने को हम डेडिकेट करते हैं अपने उन सभी लिसनर्स को जिन्होंने अभी तक हमें अपनी फरमाइशें नहीं भेजी हैं, लेकिन पिछले 2 घंटे से हमारे साथ कॉल ट्यून में बने हुए हैं। अनोखी जी, वो लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, जिसमें हमारे सौरभ जी आते हैं, रितिन जी आते हैं, और हमारे रवि जी, नीना जी, और ऑफ कोर्स अनोखी जी आपका भी, मुस्तफ़ा जी जो हमें सऊदी से सुन रहे हैं जिन्होंने आज अपनी फरमाइश हमें नहीं भेजी है, कोई बात नहीं, आपके लिए ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं, आप एंजॉय करते रहिए। गा रहा हूँ इस महफिल में दिल का क्या कसूर पम से, और हमारी मुलाकात होगी फिर आपसे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त है अब आपसे विदा लेने का। रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, यही कोना शहर की धड़कन पर। अब तक आपके साथ मौजूद थी आपकी अपनी आरजुनाती, आपका अगला प्रोग्राम गौधली सुनना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, आज का शो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव
2: और मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में रामायण कालीन विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम, विकसित होगा गोंडा स्थित अष्टावक ऋषि आश्रम रामघाट। QR कोड स्कैन करते ही जान सकेंगे तीर्थ स्थल का इतिहास, नई पीढ़ी के लिए होगा और आसान। बता दें कि रामायण काल से जुड़ी आस्था और विरासत को संवारने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। रामायण सर्किट अंतर्गत जनपद गोंडा के त्रेता युगीन दिव्य पौराणिक तीर्थ स्थल श्री अष्टावक ऋषि आश्रम रामघाट का पर्यटन विकास कराया जा रहा है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने बाढ़ का संधान कर उसे दक्षिण दिशा में छोड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप सरयू नदी से निकली एक जलधारा यहां से होकर पुनः सरयू में जा मिली थी। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 66,00,000 योजना के तहत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 66,86,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोंडा स्थित श्री अष्टावक ऋषि आश्रम रामघाट धार्मिक प्रणाली दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: गोंडा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब ये स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया है कि ये आदेश जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन की अनुमति के बाद जारी किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन अब मौसम में सुधार है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, इसीलिए समय बढ़ाया गया है। BSA ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों में नया समय सख्ती से पालन कराएं। अभिभावकों को भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजें।
1: शासन की मनसा अनुरूप परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने रात को अभियान चलाकर करीब 15 वाहनों को सीज कर दिया है। ARTO RC भारतीय के मुताबिक जांच के दौरान बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के चल रहे 3 टाटा मैजिक समेत कुल मिलाकर 15 वाहनों को सीज किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 80 वाहन चालकों का चालान भी किया गया है।
2: इटिया थोक विकास खंड की ग्राम पंचायत बनवरिया में आज ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में अगुवाई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल सिंह की थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों को फलदार और छायादार पौधों को मुफ्त में दिया गया है। पौधे लेने के साथ ही ग्रामीणों ने उनकी देखभाल और रोपण की जिम्मेदारी भी ली है। उद्देश्य था गांव को हरा भरा बनाना। इसके साथ ही एक दिवसीय

0: सरकारी योजना शिविर भी लगाया गया था। शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवास और अन्य योजनाओं के फॉर्म मौके पर भराए गए। इससे लोगों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य बनवरिया को आदर्श गांव बनाना है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों की मांग की।
1: जनपद गोंडा में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के लिए आवेदन का एक और मौका। अब 24 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। बता दें कि जनपद के मछुआरों एवं आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा संचालित निषाद राज सब्सिडी योजना के लिए विभागीय पोर्टल पुनः खोल दिया गया है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 9 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विभाग अभिकरण गोंडा ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को मत्स्य विभाग के विभागीय पोर्टल पर निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया, इकाई लागत, आवश्यक अभिलेखों तथा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।
0: धर्म और आस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी यात्रा गोंडा से होकर गुजरी। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में निकली हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म पद यात्रा आज इटियाथोक पहुंची। ये यात्रा नेपाल बॉर्डर के हनुमानगढ़ से शुरू हुई थी। आयोजक शिवराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालु पैदल चल रहे थे। यात्रा का मुख्य मकसद सनातन धर्म का प्रचार करना और हिंदुओं में एकता का संदेश देना है। गोंडा में यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भजन कीर्तन और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए जगह जगह पर पुलिस तैनात की थी और यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी बढ़ाया था। आयोजक ने बताया कि यात्रा कल अयोध्या पहुंचेगी। वहां सभी लोग राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। स्थानीय लोगों ने भी जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए पानी और प्रसाद की व्यवस्था की।
1: शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज टॉम्पसन में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राओं को सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक सदर गोंडा श्री प्रतीक भूषण सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन उपस्थित रही। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री SP मिश्रा, प्रबंध समिति के सदस्य श्री TP सिंह, श्री बसंत शुक्ला, श्री भगवती प्रसाद पांडे आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य बड़ा होगा तो उपलब्धियां भी बड़ी होंगी। उन्होंने परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि नीट, JEE, SSC, UPSC सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शासन द्वारा संचालित अभ्युदय कोचिंग सेंटर का लाभ उठाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की छात्राओं को सम्मानित भी किया गया है, जिसमें हाई स्कूल वर्ग में सौरभ कुमार श्रीवास्तव 94.67% तथा रामबदल 88.33% एवं स्मार्ट तिवारी 86.83% के साथ सम्मानित किए गए हैं। वहीं इंटरमीडिएट वर्ग में उज्जवल सिंह 86.40%, विष्णु प्रकाश 86.20%, वीरेंद्र कुमार 85.40% के साथ सम्मानित किए गए हैं।
0: गोंडा नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नजूल अमीन गुरुचरण पांडे को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गुरुचरण पांडे उनके मकान की मरम्मत के लिए NOC देने के बदले पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने पहले भी शिकायतकर्ता से 1.5 लाख रुपए वसूले हैं। बाकी 1 लाख की मांग पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ा और जेल भेज दिया। DM प्रियंका निरंजन की अनुमति के बाद उन्हें सुबह 9 बजे निलंबित भी कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। DM ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे।
1: पुलिस अध्यक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल द्वारा वामा सारथी के तत्वावधान में पुलिस लाइन सभागार में आयोजित HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य 14 साल से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV टीकाकरण के प्रति जागरूक करना था। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा गया कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक सुरक्षित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। समय पर टीकाकरण कराकर इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिभावक से अपील की गई कि वे 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं का समय से निशुल्क HPV टीकाकरण अवश्य कराएं तथा अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
0: गौ रक्षा और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए निकाली 81 दिवसीय गौ रक्षा धर्म युद्ध यात्रा 16 जुलाई गुरुवार को गोंडा के मनकापुर क्षेत्र पहुंचेगी। इस यात्रा में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे मनकापुर के झिलाही बाजार से आयोजित किया जाएगा। आयोजक के अनुसार यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता की रक्षा, धार्मिक जागरूकता और भारतीय संस्कृति को बचाना है। शंकराचार्य के आगमन को लेकर क्षेत्र में जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। आयोजक नंदन मिश्रा ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से अपील किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और गौ रक्षा का संकल्प साथ में लें।
1: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जनपद को कुल 42,54,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस महाअभियान के सफल संचालन एवं प्रभावी अनुसरण हेतु शासन द्वारा जनपद के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जनपद स्तर पर सभी विभागों को स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के प्रयास से अभियान को जन भागीदारी का स्वरूप प्रदान किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप व्यापक स्तर पर पौधारोपण संपन्न कराया गया है। बता दें कि शासन द्वारा नामित जनपद की नोडल अधिकारी श्रीमती कंचन वर्मा, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती रिंकी जायसवाल ने बसेरिया कर्नेलगंज में पौधारोपण कर अभियान का निरीक्षण भी किया है तथा संबंधित अधिकारियों को पौधों के संरक्षण एवं उनकी जीविता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने शहर स्थित गांधी पार्क में अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण कर जनपद वासियों से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन एवं आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। इस अभियान में वन एवं राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज एवं आदि संबंधित अधिकारीगण मौके पर उपस्थित रहे।
0: गोंडा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पिछले 25 जून से एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज इमरजेंसी के लिए बचा हुआ स्टॉक भी खत्म हो गया। इसके कारण कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने पर इलाज करवाने आ रहे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज सैकड़ों की संख्या में लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मजबूरी में मरीजों को बाहर मेडिकल कॉलेज स्टोर से 800 से 1200 की वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। डॉक्टर का कहना है कि समय पर वैक्सीन ना लगने से रेबीज का खतरा बढ़ सकता है और मरीज की जान का भी खतरा हो सकता है। मरीजों और तामीरदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी वैक्सीन का स्टॉक मंगवाया जाए।
1: जनपद गोंडा में बेटियों के सम्मान एवं उनके उज्जवल भविष्य के प्रति सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज गोंडा के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के प्रसव विंग एवं वार्ड में एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नेलगंज निवासी श्रीमती पूनम देवी के प्रसव के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन स्वयं अस्पताल पहुंचकर और परिवारजनों के साथ मिलकर केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नवजात कन्या के जन्म पर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान अवसर, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने परिवारजनों से नवजात बच्ची के बेहतर पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए संकल्पित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान परिवारजनों के आग्रह पर जिलाधिकारी ने नवजात कन्या का नाम अनुग्रहिता रखा है। यह नाम सुनकर परिवारजनों ने प्रसन्नता व्यक्त की और जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नवजात शिशु के लिए शुभकामनाएं स्वरूप चांदी की कटोरी एवं चम्मच भी भेंट की है। साथ ही बच्ची की माता श्रीमती पूनम देवी को सहायता राशि भी प्रदान की गई है, जिससे परिवार के प्रशासन की संवेदनशीलता एवं सहयोग की भावना का परिचय मिला।
0: छपिया थाना क्षेत्र के तरेवा बाजार के पास सरयू नहर में डूबने से 60 वर्षीय पूर्व प्रधान रंगीला लाल की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रंगीला लाल सोमवार शाम करीब 6 बजे सब्जी खरीदने तरेवा बाजार गए थे। सब्जी लेने के बाद वे नहर के पुल पर बैठ गए थे। इसी दौरान अचानक अचानक उनका पैर फिसला और वो नहर में गिर गए। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। करीब 18 घंटे की तलाश के बाद मंगलवार दोपहर उनका शव नहर से बरामद हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद गाँव में शोक का माहौल हो गया है।
1: जनपद में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर गोंडा में शैक्षिक सत्र 2027/28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 7 जुलाई से प्रारंभ हो

0: योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, ग्राम विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं विकास सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की है। बैठक के दौरान सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार SBCC अभियान इतनी भी क्या जल्दी है तथा पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश बदलेगा जब हर मर्द बदलेगा अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर सही उम्र में विवाह, प्रथम गर्भाधारण एवं उचित विलंब, दो बच्चों के जन्म के बीच पर्याप्त अंतराल तथा आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली के सही उपयोग जैसे विषयों पर आधारित जन जागरूकता पोस्टरों का विमोचन भी किया गया है। साथ ही परिवार नियोजन पर चर्चाएं भी की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण एवं परिवार कल्याण के लक्ष्यों के प्राप्ति सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने ग्राम स्तर तक सही जानकारी परामर्श सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
1: मनकापुर क्षेत्र के मूसरगंज स्थित पेट्रोल पंप के पास मंगलवार रात एक सड़क हादसे में 23 वर्ष के एक युवक अजय चौहान की मौत हो गई। उसका दोस्त अंकित भारती गंभीर रूप से घायल है। अजय बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार का रहने वाला था। वो अपने दोस्त अंकित के साथ मनकापुर अपने ससुराल जा रहा था। रात करीब 9 बजे सामने से आ रहे एक अज्ञात चार पहिए वाहन ने उस बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने अजय के पिता की तहरीर पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
0: जनपद गोंडा में गाँव में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025 एवं 26 के लिए जनपद में चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्राम पंचायतें 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने संबंधित अधिकारियों को समय से चयन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों को CM आवर पोर्टल पर दो चरणों में आवेदन करना होगा। बेसिक प्रश्नों में सफल पंचायतें 9 विषयों पर आधारित मुख्य प्रश्नावली भरेंगी। पंचायतों को कराए गए कार्यों का स्व मूल्यांकन करने के साथ संबंधित अभिलेख भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है।

कर्मशील है, दानी है वो, बन दधीचि तन दे जाता है, वो किसान है खुद मिटकर जो जग का पालन कर जाता है।

नमस्कार, सांझे विरासत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपकी फेवरेट आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सांझे विरासत में हम बहुत सारी कलाओं को जो लुप्त हो रही हैं, उनको सहेजने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं पिंक सिटी की ब्लू पॉटरी की तरफ। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर यानी जयपुर, और ब्लू पॉटरी यानी वहाँ की एक ऐसी कला जो बहुत ही ज्यादा शानदार है और एक ऐसी कला है जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान अपने स्वर्णिम इतिहास, राजसी महलों, किलों, संस्कृति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ प्राचीन काल से हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी विश्वविख्यात रहा है। भारत हस्तशिल्प का सर्वोत्तम केंद्र माना जाता है। भारत में प्रत्येक राज्य के अपने विशिष्ट हस्तशिल्प हैं, जैसे कश्मीर के पश्मीना शॉल, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली सिल्क साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी, राजस्थान के चमकते हुए नीले बर्तन मीनाकारी आदि। सदियों पुराना एक कलात्मक कार्य है हस्तशिल्प, जिसे शिल्पकार व्यवसाय के साथ साथ अपनी विरासत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थानी हस्तशिल्प यहाँ की पहचान के प्रतीक में से एक है। ऐसे ही एक मुख्य हस्तशिल्प है ब्लू पॉटरी, जिसे जयपुर के पारंपरिक शिल्प के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जबकि ये मूल रूप से तुर्की फारसी का है। ब्लू पॉटरी का नाम आकर्षक नीली डाई से आया है, जो कि मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस कला में चीनी मिट्टी के बर्तन पर नक्काशी का कार्य किया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत मऊ शिखर ब्लू पॉटरी के जादूगर थे। इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग कर नई शैली बनाई, जिसे कृपाल शैली कहते हैं। इस कला हेतु इन्हें 1974 में पद्मश्री और 1980 में कलाविद की उपाधि प्रदान की गई। जयपुर शाही राजदूतों की भूमि है और यहाँ बहुत सारे स्मारक और किले हैं, लेकिन सिर्फ पर्यटन के अलावा लोग पारंपरिक हस्तशिल्प खरीदने के लिए जयपुर का दौरा करते हैं। शहर का मुख्य आकर्षण राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प है। कई चीजें हैं जो शहर में काफी प्रसिद्ध हैं, और उनमें से जयपुर लहरिया साड़ी, जयपुर की रजाई और विशेषकर ब्लू पॉटरी, जो अलग अलग और जयपुर की सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक कला के रूप में जानी जाने वाली है। आइए आप जानते हैं कि ब्लू पॉटरी क्या है और क्या रहा है इसका ऐतिहासिक सफर। ब्लू पॉटरी, जिसे पुराने अरसे में लोग कामचीनी के नाम से जानते थे, यानी इसका पुराना नाम कामचीनी था। 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया में उत्पन्न मंगोल कारीगरों ने ब्लू पॉटरी की शुरुआत की। शिल्पकारों ने चीनी ग्लेजिंग टेक्निक को इस कला में फारस के सजावटी कला रूप के साथ जोड़ा और ब्लू पॉटरी लोकप्रिय हो गई। आज ब्लू पॉटरी को जयपुर के पारंपरिक शिल्प के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के तहत ये क्राफ्ट जयपुर में आई थी। इसमें परंपरागत हरे और नीले रंग का प्रयोग होता है। ये अकबर के समय ईरान से लाहौर आई। इसके बाद मानसिंह प्रथम लाहौर से इसे जयपुर ले आए। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ। उन्होंने चूड़ामन और कालू राम कुम्हार को इस कला को सीखने के लिए दिल्ली भेजा था, और उसके बाद से ये कला जयपुर की होकर रह गई, यानी पिंक सिटी की ब्लू पॉटरी। टर्की के अलावा, यानी जो वर्तमान में तुर्की है, तुर्की के अलावा यह प्रपत्र 14वीं शताब्दी में मंगोल कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था। फिर इसे चीनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों में मस्जिद, महल, कब्र पर फारसियों के निर्माण और कलाकारों से प्रेरित था। जब यह मुगलों के साथ भारत आया तो उन्होंने इसे विभिन्न वास्तुकलाओं में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और बाद में इसे दिल्ली में पेश किया गया और 17वीं शताब्दी में उन्हें जयपुर कारीगरों में स्थानांतरित कर दिया गया। शिल्प लोकप्रिय हो गया और सवाई राम सिंह के शासनकाल में 19वीं शताब्दी के शुरुआती युग से जयपुर की विशेष कला बन गई ब्लू पॉटरी। रामबाग पैलेस के संग्रहालय में विभिन्न प्राचीन और बहुत पहले सिरेमिक नीले बर्तन का काम देखा जा सकता है, और नीले मिट्टी के बर्तन को जयपुर के स्थानीय कारीगरों की आम आजीविका का साधन माना जाता है।
गुलाब नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर में ब्लू पॉटरी शुरू करने का श्रेय मान सिंह प्रथम को जाता है, लेकिन इस कला का विकास सवाई राम सिंह के समय में ही हुआ। दुर्गेश दोराया, जो जयपुर ब्लू पॉटरी आर्ट सेंटर के मालिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और मास्टर कारीगर अनिल दोराया के बेटे हैं, जिनका परिवार 9 पीढ़ियों से ब्लू पॉटरी की प्राचीन व जीवंत कला रूप को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए कार्यरत है। उनसे बातचीत के दौरान दुर्गेश जी ने बताया कि कैसे ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई। एक बार जब जयपुर की शाही घराने में पतंगबाजी हुई, तब राजा ने कहा कि जो भी कोई उनकी पतंग को काटेगा वो इनाम का हकदार होगा। तब दुर्गेश जी के दादाजी के दादाजी श्री सीताराम दौराया ने वो पतंग काट दी। जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने धागे पर शीशे का आवरण चढ़ा दिया था। राजा ने उनकी सराहना की। उन्हें ईरान के एक शहर किरमान में पोटरी हस्तकला सीखने के लिए भेजा गया, जो मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी। जब सीताराम दोराया भारत वापस लौटे, तब उन्होंने पॉटरी कला को स्वदेशी रूप देने के लिए उसे पत्थर से बनाने की कोशिश की, जो कि भारत में उपलब्ध थे। चूंकि पत्थर में इलास्टिसिटी नहीं होती, इसलिए उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिल पाई। तत्पश्चात उन्होंने पत्थर में मुल्तानी मिट्टी, गम अराबिका, क्वार्ट्ज, हरा कांच आदि मिलाकर पेस्ट तैयार किया और अंततः उनकी स्वदेशी रूप से पॉटरी बनने की कोशिश कामयाब हो गई। इसी तरह जयपुर में ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई। इतिहासकारों के अनुसार जयपुर में ब्लू पॉटरी की शुरुआत की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहते हैं राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने एक पतंगबाजी सत्र में भाग लिया और अचनेरा के दो भाइयों ने शाही पतंगों को काट दिया था। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अपने तारों पर वही नीला कांच लगाया था जिसका उपयोग वो अपने बर्तनों के लिए करते थे। इससे सवाई राम सिंह द्वितीय प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने कला विद्यालय में चमकीले मिट्टी के बर्तनों की इस अनूठी कला को सिखाने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह जयपुर में ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई। वहीं लीला बोर्डिया के अनुसार महाराजा सवाई राम सिंह ने कालू राम और चूड़ामी नामक दो कुम्हारों को नीली मिट्टी के बर्तन की कला सीखने के लिए दिल्ली के कुम्हार भोला के पास भेजा, जिन्होंने ये कला ईरान के एक कुम्हार से सीखी थी। 1868 में कालूराम और चूड़ामी जयपुर वापस लौट आए और उन्हें महाराजा के कला विद्यालय में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इन कुम्हारों ने कला की रक्षा तो की, परंतु इसे अपनी पीढ़ियों तक ही सीमित रखा और इसी कारणवश 1950 के दशक में नीली मिट्टी के बर्तनों की कला लुप्त हो गई। कुछ वर्षों बाद पद्मश्री कृपाल सिंह जी ने, जिन्हें शांति निकेतन और जापान में एक कलाकार के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, 1963 में उन्हें सवाई राम सिंह के शिल्प कला केंद्र के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। नाथी भाई, जिनकी दादी कालूराम और चूड़ामी के लिए रंग बनाने का काम करती थी, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कृपाल सिंह को ज्ञात हुआ कि नीली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिन दो पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वो तांबा और कोबाल्ट के ऑक्साइड के अलावा कुछ और नहीं थे। और कृपाल सिंह के द्वारा किए गए प्रयासों से ब्लू पॉटरी का पुनरुद्धार हो चुका। जयपुर की ब्लू पॉटरी पूरे देश में और यहाँ तक की दुनिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। कलाकृति को ब्लू पॉटरी कहा जाता है क्योंकि मिट्टी के रंग नीले रंग में होते हैं, जो नीले रंग के रंगों के साथ किया जाता है। ये सोने और चांदी की डिजाइन के साथ जोड़ दिया जाता है और कला की शैली वास्तव में तुर्की फारसी शैली से ली गई है। मूर्तियों को रंगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नीला रंग वास्तव में एक रंग है जो मिस्र की तकनीक द्वारा मुल्तानी मिट्टी, काटीरा गोंद, सामान्य गम, सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी जैसे कि मिस्र की तकनीक द्वारा बनाई जाती है। बर्तन बनाने के लिए क्वार्ट्ज पत्थर के पाउडर का मिश्रण और पाउडर गिलास का उपयोग सामान्य मिट्टी के बजाय किया जाता है। मुख्यतः क्वार्ट्ज, गम, अराबिका, कांच, मुल्तानी मिट्टी, इन सभी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे बाद में चक्की में पीस लिया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त नीला रंग, कॉपर ऑक्साइड से प्राप्त हरा, सफेद रंग और अन्य पारंपरिक रंग जैसे कि पीला और भूरा इस मिट्टी के बर्तन को सुशोभित करता है। हमने नीली मिट्टी के बर्तन यानी ब्लू पॉटरी का इतिहास तो जान लिया, अब हम ये जानने जा रहे हैं कि इसको बनाने का यानी इसके निर्माण का पूरा पूरा प्रोसीजर क्या है।
नीली मिट्टी के बर्तन को मोल्डिंग के लिए आटा मुख्य रूप से 5 सामग्रियों को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मुल्तानी मिट्टी, गम, क्वार्ट्स, कांच, इन सब को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आटा गूंध लिया जाता है, फिर इसे रोल किया जाता है और मोटी चपाती के रूप में चपटा किया जाता है। इसके बाद उसे सांचे में डाल दिया जाता है और सांचे से बाहर निकले हुए अतिरिक्त आटे को चाकू की मदद से काट दिया जाता है और राख भर दी जाती है। सांचे को उल्टा करके हटाने के बाद प्राप्त आटा सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बर्तनों को साफ करने तथा चमकाने के लिए उन्हें रेगमाल से रगड़ा जाता है। उसके बाद बर्तनों पर कारीगरों द्वारा हाथ से डिजाइन बनाए जाते हैं एवं गिलहरी के बाल से बने ब्रश के द्वारा पेंटिंग की जाती है। डिजाइनिंग व पेंटिंग की प्रक्रिया के बाद ग्लेजिंग होती है, जिसमें ग्लास, बोरेक्स और लेड ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसके बाद बर्तनों को व्यवस्थित रूप से भट्टे में डाल दिया जाता है। भट्टे को 8 घंटे के लिए जलाया जाता है, जिसका तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। उसके बाद ठंडा होने पर बर्तनों को निकाल लिया जाता है। जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तनों को किसी भी स्थानीय बाजार में आसानी से पहचाना जा सकता है और सुंदर डिजाइन किया जा सकता है, जो नीले और सुनहरे रंग में किया जाता है। इन बर्तनों में ज्यादातर पक्षी, पशु जैसे घोड़े, ऊंट की डिजाइन होते हैं। आप ऐश ट्रे, जार, कप, चाय का सेट, छोटे कटोरे, क्रॉकरीज और कई अन्य रूप में बनाए नीली मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। नीली मिट्टी के बर्तन बनाना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। मोल्डिंग आटे को मिलाकर बनाया जाता है, फिर इसे रोल किया जाता है और चपटा करके 4 से 5 मिलीमीटर मोटी चपाती यानी पैनकेक जैसा कुछ बनाया जाता है और बारीक बजरी यानी कि पत्थर और राख यानी चावल से जली हुई लकड़ी से बनी राख के मिश्रण के साथ सांचे में रखा जाता है। सांचे को उल्टा कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है और परिणामी आटे को सूखने के लिए अलग रख दिया जाता है और हटा दिया जाता है और परिणामी आटे को सूखने के लिए अलग रख दिया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को साफ करने और आकार देने के बाद सतह को रेगमाल से पॉलिश किया जाता है। इसके बाद क्वार्ट्स पाउडर, ग्लास, खाने योग्य मैदा और पानी के घोल में डुबोकर सुखाया जाता है। सूखे लेपित बर्तन को कोबाल्ट ऑक्साइड और खाद्य गोंद के घोल से सजाया जाता है और रंगाई अन्य धातुओं के ऑक्साइड का उपयोग करके की जाती है। इन ऑक्साइडों को खाने योग्य गोंद के साथ मिलाया जाता है और ब्रश से लगाने से पहले पत्थर पर कुचल दिया जाता है। जयपुर के नीली मिट्टी के बर्तन सामग्री शैली और रूप के मामले में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और बनाने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। पहले मिट्टी के बर्तनों पर इस्तेमाल की जाने वाली चमकदार कोटिंग में शीशा होता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से शीशा रहित है। कुछ क्षेत्रों में डीजल भट्टियों ने पारंपरिक लकड़ी या लकड़ी का कोयला ईंधन भट्टियों का स्थान ले लिया है। क्लासिक पुष्प और ज्यामितीय रूपांकन के स्थान पर कपड़े या अमूर्त डिजाइन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। ब्लू पॉटरी बनाने में शामिल कारीगर मानसून के दौरान छुट्टी लेते हैं, क्योंकि ब्लू पॉटरी की पारंपरिक तकनीक के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बरसात के मौसम में कोई काम नहीं किया जा सकता है। इन उथल पुथल और बदलाव के बावजूद जयपुर की प्राचीन जीवंत नीली चमकदार सेरेमिक संस्कृति हमेशा की तरह खूबसूरत बनी हुई है। हम ये तो जान गए कि ब्लू पॉटरी को बनाने का तरीका क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या इतिहास रहा है। अगर मान लीजिए आप जयपुर जाते हैं और आप सोचते हैं कि कहीं ब्लू पॉटरी को खरीद लिया जाए, मिल जाए, उसकी कला को सहेजने का आपको भी एक मौका मिल जाए, तो आइए जानते हैं कहां से आप खरीद सकते हैं ब्लू पॉटरी जयपुर की। ब्लू पॉटरी को जयपुर में राजस्थली और MI रोड और अंबर रोड पर अन्य दुकानों से खरीदा जा सकता है। ब्लू सेरेमिक को बानी पार्क में कृपाल कुंभ और जयपुर की सी स्कीम में नीरजा इंटरनेशनल से भी खरीदा जा सकता है। यहाँ कुछ स्थान हैं जहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। कारीगरों के अनुसार नीले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जयपुर में और उसके आसपास 25 से 30 इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। 10 से 11 इकाई गाँव के कोट जफर से और बाकी सभी जयपुर के मुख्य शहर से है। पूर्व में अधिक उत्पाद थे, लेकिन चूंकि ये एक समय लेने और थकाऊ शिल्प है, उत्पादकों ने आजीविका की अन्य तरीकों पर स्थानांतरित कर दिया है। शिल्प मुख्य रूप से खारवाल, कुम्भार,
बहाए रवा और नट जातियों द्वारा किया जाता है। इनमें से खरावल और खंबर नीले बर्तनों के प्रमुख उत्पादक हैं। ये तो हम जान चुके हैं कि ये नीली मिट्टी के बर्तन बहुत ही खूबसूरत हैं, काफी अलहदा है और एक पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर, जो अब धीरे धीरे धीरे धीरे किन्हीं कारणवश लुप्त होती जा रही है। मगर कुछ और भी चुनौतियां हैं जिनका सामना ये कारीगर और ये कला कर रही है। सबसे पहली चुनौती तो अन्य प्रकार की मिट्टी के बर्तनों से प्रतिस्पर्धा की है। इसके अलावा डाई तैयार करने की कोई मानक विधि नहीं है। सिर्फ कुछ ही कुशल कारीगर रंग बनाने और सांचे बनाने की तकनीक को जानते हैं। बरसात के मौसम में कारीगरों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का सूखना सूरज पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त ब्लू पॉटरी की खुर्जा पॉटरी से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लू पॉटरी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। दुर्गेश तोराया ने बताया था कि कैसे ब्लू पॉटरी अन्य प्रकार की पॉटरी से भिन्न है। ब्लू पॉटरी की कला ही एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। दुर्गेश का कहना है कि जहां एक और ब्लू पॉटरी प्राचीन और मन को मोह लेने वाली कला है, वहीं दूसरी ओर इसके लुप्त होने का खतरा तेजी से मंडरा रहा है, क्योंकि इसमें नुकसान की दर 50% से भी अधिक है। कोरोना महामारी के दौरान बहुत से कारीगरों ने किसी अन्य रोजगार को अपना लिया। उनका मानना है कि शायद आने वाले 10 सालों में ब्लू पॉटरी हमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम आदि में देखने को मिलेगी। चूंकि ये एक संपूर्ण रूप से हस्तकला है, इसलिए इसका मूल्य भी दूसरी पॉटरी के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त इस पर 12% GST भी है और इसके मूल्य में इजाफा करती है, जिसके फलस्वरूप आम लोग इसे खरीदने से कतराते हैं। हालांकि धीरे धीरे यह विश्व प्रसिद्ध कला अब तो लुप्त होने लगी है, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सहेजने का, सवारने का और इसे फिर से जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है।

इस तरह ऐसी आर्ट को परखा जाता है और ऐसी आर्ट को परखने वाली एक महिला है लीला बोर्डिया। इस कला को पुनर्जीवित करने में नीरजा इंटरनेशनल फाउंडर लीला बोर्डिया का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। बात है 1976 की, जब लीला बोर्डिया कोलकाता से घूमने के लिए या शायद सोशल वर्क के लिए जयपुर आई। जयपुर की कच्ची बस्ती से जब लीला बोर्डिया गुजरी तो उन्होंने वहाँ रह रहे शिल्पकारों की बुरी स्थिति देखी। कुछ 4-5 शिल्पकार एक बहुत ही सुंदर कला पर काम कर रहे थे। वे खूबसूरत पैटर्न इंट्रिकेट डिजाइन को पॉटरी में आकार दे रहे थे। लीला उन लोगों को आजीविका का माध्यम देना चाहती थी। वो इस विलुप्त और प्रसिद्ध कला के लिए और उन आर्टिस्ट और शिल्पकारों के भविष्य को एक आकार देना चाहती थी। 1976 में लोकल आर्टिसन के हालात देखने के लिए और 2 साल बाद उन्हें नीरजा इंटरनेशनल की स्थापना की, जो ब्लू पॉटरी के बर्तनों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक विशेष मंच के रूप में सामने आई। लीला ने प्रत्येक गांव में कंपनी की आत्मनिर्भर उत्पादन इकाई के माध्यम से उनके साथ समन्वय किया। उनका एकमात्र जनादेश था कि वे ब्लू पॉटरी के बर्तनों में और नए इनोवेशन करें। इसलिए कलात्मक उत्कृष्ट मास्टरपीस के साथ कलाकार रोजमर्रा के उत्पादों के साथ भी आए, जिससे उनकी कमाई में कुछ और मदद मिल सके। आज लीला का नीरजा इंटरनेशनल 1000 कारीगरों द्वारा तैयार किए गए 500 से अधिक मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही बेचते हैं। जब उन्होंने ब्लू पॉटरी को दुनिया भर के सामने लाने और उन आर्टिस्ट की मदद करने के बारे में सोचा तो उनके परिवार ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। हालांकि उनके लिए इसे स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल था। उन्हें पहले अपने घर छोड़कर छोटी मोटी नौकरी के लिए चले जाने वाले शिल्पकारों को मनाना पड़ा। उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा कि वो उनकी मदद करेंगी। जब नीरजा इंटरनेशनल की शुरुआत की तब ब्लू पॉटरी के सामान को लोगों तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वहीं पैंडेमिक के दौरान ये थोड़ा और मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन के जरिए पॉटरी बेचकर उन शिल्पकारों की काफी मदद की। लीला बोर्डिया महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, जिन्होंने न सिर्फ एक खोई हुई कला को दुनिया के समक्ष लाने का काम किया बल्कि कई लोकल शिल्पकारों को जीविका का एक जरिया भी दिया और खोती हुई ब्लू पॉटरी को फिर से जीवंत कर दिया। मऊ निवासी ब्लू पॉटरी के जनक पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, उनकी जीवनी बहुत ही ज्यादा प्रेरक है। कृपाल सिंह ने कला की औपचारिक शिक्षा जहां शांति निकेतन जैसे विश्व प्रसिद्ध कला संस्थान से ली, वहीं जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय से ओरिएंटल आर्ट में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। शांति निकेतन की कला शिक्षा ने जहां उन्हें भारतीय कला परंपरा की बारीकियों से अवगत कराया, वहीं जापान में उन्होंने जापानी चित्रकला में बरते जाने वाले प्राकृतिक रंग स्याही कागज से जुड़ी तकनीकी के बारे में समझा। वे जयपुर स्थित सवाई राम सिंह कला मंदिर निदेशक भी रह चुके हैं, जहां चित्रकला और ब्लू पॉटरी की शिक्षा दी। 1922 में जन्मे कृपाल सिंह शेखावत का 15 फरवरी 2008 को देहांत हो गया था। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित हुए शेखावत जयपुर की ब्लू पॉटरी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसमें परंपरागत हरे नीले रंग का प्रयोग होता है। जयपुर की ब्लू पॉटरी को पुनर्जीवित करने में कृपाल सिंह शेखावत का ज्यादा योगदान माना जाता है। इस कला ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। कृपाल सिंह शेखावत मऊ शिखर ब्लू पॉटरी के जादूगर थे। उन्होंने 25 रंगों का प्रयोग कर नई शैली बनाई थी, जिसे कृपाल शैली कहते हैं, और आज भी ये शैली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान और भारत के कई अन्य लोग इस खोती हुई यानी लुप्त होती हुई कला ब्लू पॉटरी को जीवंत करने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं हमारी सरकार ने 31 दिसंबर 2018 को भारतीय डाक विभाग ने जयपुर की ब्लू पॉटरी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, इसको सहेजने के प्रयास में एक छोटी सी पहल के माध्यम से। साथ ही साथ ब्लू पॉटरी को GI टैग भी मिल चुका है, यानी ये एक GI टैग हैंडीक्राफ्ट है। अगर आपको भी कुछ थोड़ा सा अंश थोड़ा सा योगदान देना है इस कला को जीवंत रखने के लिए, तो आप इस कला के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं और उनसे भी आग्रह कर सकते हैं इस कला को जीवित रखने के लिए, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे शिक्षा के जरिए हो, चाहे ब्लू पॉटरी खरीद कर हो, और चाहे इस कला को सहेज कर हो। ब्लू पॉटरी की कलात्मक दुनिया से होते हुए चलते हैं राजस्थान के लोक संगीत की गलियों में। धन्यवाद।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: है? नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को पार कर दूं।

0: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
1: जी सर।
0: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
1: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे। और क्या,

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
8: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

वैसे कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर पैटर्न के होते हैं, लगता है यार ये वाला गाना तो इसके साथ जुड़ जाना चाहिए था। और म्यूजिक कंपोजर्स की अगर बात करूं तो वो दोनों ही गानों के म्यूजिक कंपोजर्स अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक ही इंसान बना रहा है तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, भाई ऐसा पॉसिबल है। और सभी के साथ सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आज की शाम का। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे बीना और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन आरजे बीना के साथ, आरजे बीना वाला शो गोंडा मैसेज मसाला। एंड फिलहाल शाम में बॉलीवुडिया में आपका स्वागत है। बॉलीवुडिया शाम हो और आपसे हमारी बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस शाम को ढलने नहीं देंगे क्योंकि शाम ढली है, रोशनी ने सितारों का आंचल ओढ़ लिया है। मतलब शाम ढलने को है लेकिन रोशनी जो है वो कह रही है नहीं भाई शाम नहीं हुई है। शाम ढली है, रोशनी ने सितारों का आंचल ओढ़ लिया है, थकान को मुस्कान में बादल की तरह अपने ऊपर समा लिया है। क्योंकि आज फिर बॉलीवुड की धड़कनों से महफिल सजने वाली है, इसीलिए तो फिर सुरों ने मुर्कियां ले लेके ये कह दिया है कि वेलकम टू द शो गोंडा बेसी मसाला आरजेबी नवालाइन शाम में बॉलीवुडिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है तो तैयार हो जाइए आज की मस्ती के लिए, धमाल के लिए, ना सिर्फ धमाल के लिए, गानों की एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, दिलचस्प किस्से कहने के लिए, सुनाने के लिए और फिल्मी पहेलियां आपके साथ सुलझाने के लिए। फिलहाल आज की शाम में बात तो होंगी कुछ नई पुरानी फिल्मों की, कुछ वेब सीरीज की और कुछ ऐसी यानी कि जिनकी स्टोरी मैं अगर बता दूं तो आपका मन कर जाएगा कि यार ये वाला तो देखना है। तो अगर आपने कुछ अच्छा नहीं देखा, मैंने तो इस वीक एंड बहुत सारी मूवीज़ एंजॉय की, ना सिर्फ एंजॉय की, मन तो कर रहा है कि आप लोग के साथ बैठ के मुझे देखना चाहिए था। कभी ऐसा हो सकता है कि हम सभी लिसनर्स हों और ऐसी स्क्रीन चल रही हो हमारे घर में और हम एंजॉय कर रहे हो एक एक कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल अभी शाम में तो यही होने वाला है, मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में, बहुत सारी मूवीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आप अपनी कुर्सी की पेटी ढीले मत कीजिएगा क्योंकि आज गानों की एनर्जी तो हाई होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज कुछ अलग गानों की बात होगी जो काफ़ी सिमिलर पैटर्न के हैं लेकिन उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जी हाँ, तो आज खोल देंगे पर उन गानों के जो अकेले उड़ रहे थे लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं। लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल इवनिंग विद फुल ऑन एनर्जी और इस एनर्जी के साथ मैं आपके लिए एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट लेके आई हूँ जिसको आप एंजॉय करके मुझे कहेंगे यार क्या गाने बजा दिए आरजे बीना आज आपने, वी आर हैवीली थैंकफुल टू यू। तो चलिए सबसे पहला प्यारा सा गाना सुनते हैं आप लोग के साथ जिसको सुन के आपकी एनर्जी भी कहेगी कि मज़ा आ गया। लेट्स एंजॉय।

0: जो मुझसे चढ़ गया रे। भाई किसी का फितूर किसी पे चढ़े या ना चढ़े, मुझे ये जरूर पता है कि हमें गलतियां करने का फितूर तो हमेशा ही चढ़ा रहता है। अब कोई मुझसे पूछे कि फितूर शब्द कहाँ से आया, किस भाषा का है, तो मैं ज़रूर बता दूँ, लेकिन अगर कोई पूछे ही ना तो मैं कैसे बता दूँ। फिर भी आरजे बीना बताना चाहेंगी फितूर का मतलब आप सभी को। फितूर का जो मतलब होता है वो होता है ऑब्सेशन, पैशन। तो हम अगर अपनी बात करें तो हमारी एक चीज़ तो है खास, जैसे कि हम अपने काम को लेके पैशनेट रहते हैं, अपनी हॉबीज़ को लेके पैशनेट रहते हैं, वैसे ही हम अपने गुस्से को लेके भी पैशनेट रहते हैं। कभी कभी हमें कुछ बातें ऐसा ट्रिगर कर जाती है ना कि इस पैशन को हम गलत डायरेक्शन में निकाल देते हैं और वो फितूर तब थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग बताइए कि मेरी बात से आप लोग ताल्लुक रखते हैं कि नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फितूर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसको जुनून हिंदी में बोलते हैं और या दीवानगी भी कहा जा सकता है। फिलहाल फितूर अपनी अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। इसी फितूर की बात करूंगी इस फिल्म के बारे, इस फिल्म में जो फिल्म मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हाल ही में रिलीज़ हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। पसंद इसलिए आई है कि हम सब में से हर इंसान ऐसा है जिसने गलतियां तो हमेशा की ही होंगी, और हम में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को मानते हुए सामने वाले के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है गलती तब भारी नहीं लगती जब हम गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी उसके लिए जिसके साथ हमने कुछ गलत किया है, ठीक है। गलती तो वही होती है जिसमें हम किसी ना किसी को हर्ट करते हैं या हमारी वजह से कोई परेशान हो, वही गलती है। क्यों, गलती का मतलब क्या होता है, कौन भाई गलती को परिभाषित करने वाला है।
1: अगर आप में से कोई ऐसा है जो गलती को परिभाषित कर सकता है, मतलब डिफाइन कर सकता है, आप जल्दी से मेरे सामने आ जाएं, चैट रूम में आ जाएं, जल्दी से बता दें कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ गलती, मिस्टेक जिसे बोलते हैं। तो उसी गलती से जुड़ी आज की बात है, आज की कहानी, आज की फिल्म की बात होने वाली है जिसको रिव्यू आज मैं करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी फिल्म है, अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और अपने हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो सोशल कॉज हैं बहुत सारे गुस्से को लेके, उन सबको रिप्रेजेंट करती है एक साथ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो गुस्से के लेवल बताती हूँ। जैसे हमने बचपन में कभी कभी किसी से किसी तरह का बदला लिया होगा, ऐसे कई बार क्या होता है कि हमें उस समय सिर्फ अपना गुस्सा दिखता है, अपना रिवेंज दिखता है, या हम बस ये चाहते हैं कि इस बंदे ने हमें ऐसा किया, हम इस बंदे को ठीक नहीं देखना चाहते। हाँ, तो उस समय किया हुआ आपका वो गुस्से में जो छोटा सा कदम है या आपकी जो मिस्टेक है, वो शायद सामने वाले को किसी बड़ी गलती या बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो कि ट्रैप में डाल देगी, और आपको नहीं पता कि आपने वो गलती की और उसकी वजह से उसको बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ा। और फाइनली आपको जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, और फाइनली आप उस गलती को सामने से एक्सेप्ट करने के बजाय आप पीठ दिखाकर वहां से भाग जाते हैं और उसी गलती से पीछा छुड़ाते छुड़ाते पूरी जिंदगी भाग रहे हैं। तो जब भी हम गलती करते हैं तो ये कहने की बातें हैं कि गलतियां भुला दी जाती हैं। आप जब भी किसी के सामने आओगे, चाहे आप बूढ़े भी हो गए हो, आपकी वो गलती सामने वाले को याद रहेगी जब तक कि आप उस गलती की माफ़ी ना मांग लें, या आप उस गलती के लिए बराबर, मतलब ये ना एक्सप्रेस करें कि हाँ मुझसे ये गलती से हुआ, ठीक है। तो इसी पे बनी है ये मूवी। मूवी का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। बहुत अच्छी फिल्म है, और मैं अगर बताऊं तो राजकुमार हिरानी की निर्मित फिल्म है, अविनाश अरुण का निर्देशन है, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये साइबर क्राइम से जुड़ी कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। कॉमेडी आपको बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ कॉमेडी है इसमें, ठीक है। इसमें आपको अरशद वारसी दिख जाएंगे, पेड्रो जिनका नाम है, एक पारंपरिक पुलिस वाला है ये, ठीक है, और वीर हिरानी दिख जाएंगे जो कि प्रीतम, एक जीनियस हैकर हैं कि जुगलबंदी साथ में चलती है, और बेहतरीन हास्य और सस्पेंस से भरी हुई है ये 6 एपिसोड की सीरीज़, जिसको देखना बनता है बॉस। अगर आपने अभी तक कुछ बढ़िया नहीं देखा तो मेरे लिए तो ये वेब सीरीज सबसे बढ़िया लगी, मतलब पूरे हफ्ते की जो कहते हैं ना कि एनर्जी बरकरार रखने का काम किया इसने। स्टोरी की बात करूं तो अरशद वारसी जो हैं वो गोवा में सेट होते हैं अपनी लाइफ के साथ, और कुछ इनकी गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, मतलब एक मंत्री का केस इनके पास आता है, मंत्री के बेटे को ढूंढना होता है। एक्चुअली में मंत्री जो होता है वो थोड़ा सा साइको टाइप का, साइको क्या मतलब, वो पुलिस वालों को थोड़ा कम पसंद करता है। तो अरशद वारसी केस को सॉल्व करने के बजाय कुछ उल्टी सीधी कहानी बता देते हैं जिसमें मंत्री खुद ही अपने केस को सॉल्व करके इनको बोलता है कि भाई इनका तो तबादला कर दो, ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने लायक, उनका यानी कि अरशद वारसी का, पेड्रो का तबादला हो जाता है साइबर सेल में। साइबर सेल में इनका तबादला होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अरशद वारसी जो कि पुराने जमाने के पुलिस वाले थे, इनको कंप्यूटर का सीन ही आता है। एक इंसान साइबर जो कंप्लेन करने आता है इनके पास, उससे ये कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कितने बजे आपके साइबर पे अटैक हुआ था, आपने आते हुए किसी को देखा था, जाते हुए किसी को देखा, भाई साइबर अटैक कौन कैसे देख पाएगा। तो फिलहाल इनकी बड़ी बेइज्जती होती है इनके डिपार्टमेंट में शुरुआत में, फिर फाइनली इनको एक ऐसा साथी मिल जाता है जो कहते हैं ना कि अंधे की लाठी बन जाता है। तो वो काम करते हैं आपके प्यारे प्रीतम, जी हाँ प्रीतम। तो अगर मूवी की बात करूँ, मूवी मेरे हिसाब से 9/10 मिलना चाहिए इस मूवी को, बहुत मतलब वेब सीरीज को आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। अलग सी स्टोरी है, सबसे बढ़िया तो नेगेटिव रोल में जो इंसान दिख रहा है वो एक्चुअली में लास्ट आने तक आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा, खास बात ये है। ठीक है, वीर हिरानी है इसमें और विक्रांत मैसी हैं, मोना सिंह हैं, सत्यदीप मिश्रा है, बोमन ईरानी भी हैं। बोमन ईरानी वाला पार्ट तो बड़ा ही गजब का है। तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को देखिए, यानी कि प्रीतम ने एक ऐसी मिस्टेक की होती है अपने कॉलेज टाइम में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि उनकी एक मिस्टेक की वजह से किसी की जान चली जाती है और कोई कॉमा में पड़ा होता है पिछले 25 सालों से। तो कहानी एक रिग्रेट से शुरू होती है और एक माफ़ी पे ख़त्म होती है। तो मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज आपके लिए बनी है और आपको मेरे लिए नहीं अपने लिए देखना चाहिए। रिव्यू मैंने कर दिया है, अगर आपने सच में कभी कोई गलती किया और आपको लगता है कि यार मैंने उस गलती की माफी नहीं मांगी, कैसे मांग सकता हूँ, तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं। बाकी नाम अगर देखें तो बड़ा अच्छा सा नाम है, कहीं कहीं पे अरशद वारसी की कॉमेडी इतनी अच्छी लगी है मुझे कि क्या बताऊं, लग रहा है जैसे कोई मतलब सिनेमेटिक कोई आपके सामने रियल लाइफ इंसिडेंट चल रहा है। तो माफी एक गाना भी है इस फिल्म का, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, आप सुन के बताइए आपको कैसा लगा, श्रेया की आवाज में आप सुन के बताइए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अरशद वारसी में भी एक मिस्टेक की होती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, पेरेंटिंग से जुड़ी इसमें बहुत सारी चीजें आपको सुनने को समझने को मिलेंगी। अगर आपने अपनी लाइफ में पेरेंटिंग अच्छे से करने का सोचा है तो ये मूवी आपके लिए, आपको पता चल जाएगी कि पेरेंटिंग के दौरान आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी आजकल की पेरेंटिंग। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम प्रीतम एंड पेड्रो।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में, क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

वैसे बहुत सारे मेरे लिसनर्स ने मुझे ये बताया कि मैम आप तेलुगु फिल्म की बात करती हैं, आप पंजाबी फिल्म की बात करती हैं, आप भोजपुरी फिल्मों के बारे में भी बताती हैं और आप और तो और आप पुरानी फिल्मों की भी बात करती हैं, मूक फिल्मों की भी बात करती हैं, लेकिन हॉलीवुड की बात तो भी हुई नहीं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ तड़कता भड़कता आए, हम लोगों से मिलता जुलता आए तो फिर बात की जाए। और ऐसे ही एक डायरेक्टर का जब नाम आ गया तो मैंने सोचा आज बात कर ही लेनी चाहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में, जो कि हॉलीवुड के सबसे दिग्गज डायरेक्टर्स में से एक हैं और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी भी हैं, बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने डायरेक्शन दिया है अपना और साथ ही साथ अपनी कहानी से लोगों के दिलों तक छाप छोड़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ 30 जुलाई 1970 में लंदन में जन्मे नोलन अपने विज्ञान कथा यानी कि साइंस फाई और नॉन लीनियर जैसी कहानी की वजह से बड़े ज़्यादा मतलब फेमस हुए और इसके साथ उन्होंने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी और इंस्पिरेशन ओपेनहाइमर जैसी मास्टरपीस फिल्मों को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई है। ना सिर्फ फिल्म बनाई बल्कि उसकी कहानी भी दी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्रिस्टोफर नॉलन की, इनकी जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में बता दिया मैंने, इंसेप्शन है, इंटरस्टेलर है, टनेट है, ये टनेट जो है ये समय के विपरीत चलने वाली एक फिल्म है। इसके अलावा इंटरस्टेलर है जो अंतरिक्ष और समय के बीच में यात्रा करने वाले एक कार्ट फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। वो लोग जो थोड़ा सा साइंस से जुड़े हैं या दुनिया में एक अलग दुनिया या हिस्ट्री में जीना चाहते हैं या कुछ अलग सोचते हैं, मतलब ये प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा माँ बाप इन सब की कहानियों से हटके सोचते हैं, उनके लिए फिल्में बनाते हैं। तो हाल ही में इनकी एक फिल्म आई है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मतलब थोड़ा ब्रीफ में ही आपको बताऊँगी कि क्या है, कैसे है, कौन सी मूवी है। तो अभी रिलीज़ हुई है क्रिस्टोफर की मूवी द ओडिसी, ये एक मास्टरपीस फिल्म है, टेक्निकल मार्वल है। और मैं अगर बात करूँ तो फिल्म में युद्ध से लौटने वाले एक आदमी की बात की जाती है जो अपने बारे में बताता है और एक लड़का है जो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके परिवार को पता है उसके पिता जिंदा नहीं है, लेकिन वो लड़का चाहता है कि मैं पास्ट में जाऊं और अपने पिता को देख के आऊं, मेरे पिता के साथ क्या हुआ था। तो कुछ ऐसी कहानी चलती है। फिलहाल मूवी मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ मैगजीन में जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात आपसे करनी चाहिए, मैं देखूँ और साथ में आप भी देखें तो बात बन जाएगी। तो अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखना शुरू नहीं किया तो मैं कहती हूँ इसी से शुरुआत कर दीजिए, एक अलग लेवल की दुनिया। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्रिस्टोफर की फिल्मों में रामायण जैसे सीन चलते हैं, तो जी हाँ इस फिल्म में आपको रामायण के कुछ सीन दिखेंगे, मतलब सीन जैसे ऐसा लगेगा कि हाँ युद्ध वगैरह हो रहा हो तो आपको फीलिंग आएगी। और अगर मैं बात करूँ फिल्म के डायरेक्शन की या फिल्म के मतलब स्टोरी की, तो स्टोरी की जान लीजिए पहले तो आप कि कहानी जो है वो ट्रॉय के युद्ध यानी कि ट्रोजन वॉर के बारे में है, जिसमें इथका के राजा जो होते हैं ओडिसियन, जिसे मैट डोमेन ने अपनी मतलब अदाकारी से, मैट डोमेन को अगर आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, और अगर जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े हीरोज़ का नाम लिया जाए तो वैसे हॉलीवुड में इनका नाम फेमस है। तो मैट डोमेन ने इस फिल्म में जो है लीड रोल का काम किया है। घर वापसी के सफ़र पर होते हैं, युद्ध ख़त्म होने के बाद वह अपने घर आते हैं, पत्नी पेनेलोप जो कि एनी हैथवे बनी हुई हैं, बेटे टेलीमेक्स जो कि टॉम हॉलैंड बने हुए हैं इनके पास आते हैं, लेकिन एक दैत्य को नुकसान पहुंचाने के कारण समुद्र में जो देवता होते हैं पॉडिसान वो नाराज़ हो जाते हैं और ऑडिशियंस को घर पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं। इस 10 साल की यात्रा में उनका सामना होता है एक आंख वाले दैत्य से, सीरेंस से, जादूगरनी सरसी से, ऐसी बड़ी मतलब ऐसी जिसको थोड़ा सा अलग दुनिया इमेजिन, हम लोग की भी एक सपने वाली दुनिया होती है जिसमें हमें भूत दिखते हैं, आत्माएं दिखती हैं, एक अलग दुनिया दिखती है, तो वो दुनिया दिखाने की कोशिश करते हैं। सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं आपके अपने क्रिस्टोफर नॉलन की आदत है जो वो इमेजिन करते हैं वो हमारे सामने पर्दे पर ले आके खड़ा कर देते हैं, और यही एक डायरेक्टर की खूबी होती है, वो बनाए जो कोई नहीं बना सकता। बाकी घरेलू कहानियाँ तो उनको अगल बगल में भी दिख रही हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस
मूवी को मैं 5 ऑन मतलब मैं 4 स्टार दूंगी 5 में से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस मूवी की मुझे नहीं सही लगी। मतलब चीज़ों को बहुत खींचा गया है, बहुत लंबा बना दिया गया है, थोड़ा छोटा करते तो मज़ा आता। और इतने सारे मुझे लगता है कि भूत वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं थी, चुड़ैल थी तो चुड़ैल ही रखते, एलियंस थे तो एलियन को ही रखना चाहिए था, सारों को मिक्स कर दिया है। लेकिन हाँ, देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार और भी कुछ आ सकता था इस फिल्म में। तो मेरी तरफ से 4 स्टार्स हैं। अगर आपने कुछ हॉलीवुड में बढ़िया नहीं देखा है तो ये मूवी आपके लिए है। मार धाड़ पसंद है तो ये भी फिर भी आपकी मूवी, आपके लिए ये मूवी है। अगर आपको हॉलीवुड से प्यार है तब तो आपके लिए बनी ही है मूवी। और अगर आपने कभी हॉलीवुड में पैर नहीं रखा है तो प्लीज़ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी ये मूवी अवेलेबल है, खास बात तो ये है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, आप इसको एंजॉय करिए और एंजॉय करने के बाद बताइए कि मैंने जो कहा वो आप उस बात से रिलेट कर पाए इसको देखने के बाद या नहीं। तो चलिए एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस से गलतियां करना छोड़ दीजिए, क्योंकि गलती करने के बाद आप लोग जल्दी माफ़ी नहीं मांगते हैं। सबलू सावंत कैसे हैं, गुड इवनिंग, क्या हाल है। कल आपकी वजह से आपकी टीम बहुत बढ़िया से जीती। सविता जी शुभ संध्या। अब अगली बार से अंताक्षरी हिंदी में ही करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग की भोजपुरी अवधि बड़ी कमज़ोर है। और अगली बार होनी भी होगी तो मैं और सबलू सामत जी खेला जाएगा, वो लड़कों की टीम से और मैं लड़कियों की टीम से गाऊंगी, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत तो अवधि और भोजपुरी दोनों मिक्स करके अच्छी है। तो चलिए गाना सुनते हैं और इस शाम को और सुरीला और बेहतरीन बनाते हैं।

सो वापस आरजुबीना आप लोग के साथ है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। भाई ऐसे टॉप टॉप गाने सुनने के बाद यार वाइब अलग ही आ जाती है और आगे भी आती रहेगी। आज आपकी बॉलीवुड इवनिंग है और आपको अपने पसंद के गाने भी सुनने होते हैं, पर सवालों के जवाब देने के बाद तो चलिए आज की पहेलियाँ थोड़ी आसान करते हैं आपके लिए, एक दौर फरमान करते हैं 2000 के बाद के गानों की। जरा तैयारी कर लें जनाब, आज सिर्फ उन्हीं से सवाल आपके नाम करते हैं। क्या बात है आरजुबीना, आप भी शायर हो जाएंगे लग रहा है, या शायरी करते करते अपने प्यारे लिसनर्स के साथ। और फिलहाल अगर आजकल की बात करूं तो आजकल में कोई खास ऐसी मूवी तो मुझे नहीं लग रही जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा विश्लेषण किया पर मुझे कोई खास जैसे कि पेट्रो एंड प्रीतम मुझे लगी कि हाँ आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि यस यस यस यस आ जानी चाहिए आप लोग की लिस्ट में। फिलहाल मैं आज रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। और अगर आज की बात करें तो आज की डेट में मतलब ऐसी कोई खास मूवी तो रिलीज़ नहीं हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके बारे में बात की जाए और आपको सजेस्ट किया जाए कि आप वो मूवी ज़रूर देखें। पर मैं आपसे कुछ गानों के बारे में ज़रूर बात करने वाली थी कि कुछ गाने ऐसे हैं जो भाई बहन टाइप लगते हैं ना। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, आपने ये गाना सुना होगा मस्कारा जो अभी आया है, लेटेस्ट फिल्म है। कौन सी फिल्म है, मैं वापस आऊँगा, फिल्म का गाना है अखियम। अरे यार मैं गाना भूल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नो चलिए मस्कारा गाना सुन के ही बताती हूँ इसका भाई बहन कौन कौन सा गाना है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला गाना सुनिए, फिर इसी के गाने के साथ मैं आपको बहुत सारे गाने सुनाऊंगी, ध्यान से।

ये है गाना जब भी मेट का, और इस गाने में और इस गाने में इतनी सिमिलैरिटी है कि सुन के लगेगा कि ये गाना इसी में जुड़ के बनना चाहिए था। एक और गाना है, मैं आपको उसका भी बताना चाहती हूँ, और उस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है यार अभी फिल्म, मतलब आपने शायद मूवी देखी भी होगी, लव आजकल का मूवी का गाना है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, मैं थोड़ा सा लिरिक्स भूल रही हूँ। तो ये दोनों गाने सिमिलर लगे ना, कत्या करूँ कत्या करूँ, एक पैटर्न एक रिदम, क्या कहने क्या कहने। और इसका दूसरा जो गाना है वो है

तो ये तीनों गाने एक सिमेट्री के हैं, और अगर आप तीनों को एक साथ सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तीनों गाने एक साथ जोड़ के बनाए गए हैं। तो फिलहाल चलिए इस गाने को सुन चुके हैं, अब आप जब भी मेट का सुनिए कत्या करूँ और फिर बताइए कि इन दोनों गानों को एक होना चाहिए था या नहीं। तो चलिए सुन के बताइए इस गाने को। फिलहाल कत्या करूं गाना जो है ये रॉकस्टार का है, मैंने आपको थोड़ा सा गलत मिसगाइड कर दिया। कत्या करूं मैं भूल गई थी, जब भी मेट में भी एक ऐसे ही गाना है लेकिन वो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन ये इसका है रॉकस्टार का। एंजॉय करिए।

कहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि कहते हैं कि खेतों में कोई बैठा है, कहीं गाय तो नहीं। खेतों में कोई बैठा है, कहीं गाय तो नहीं। इतने सुंदर हो माँ कसम, कहीं AI तो नहीं। भाई AI ने इतना सुंदर बनाना शुरू कर दिया सबको ना, कि अपनी शक्ल पे कभी भरोसा नहीं होता। मैं इतना सुंदर कब से हो गई या हो गया? फिलहाल शादी को लिए फोटो मत भेजना भाई साहब, रिश्ते टूट सकते हैं। डिस्क्लेमर पहले ही मैं जारी कर देती हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं धर्मेंद्र जी? और कहते हैं कि सख्ती सारी यहाँ वीक हो जाती है, ये हमारे एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। फिलहाल हमारा बोर्ड क्या करता है, कैसे करता है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यार पेपर पे पेपर लीक हो जाता है। अभी वहाँ पे महाराष्ट्र में सुना है पेपर लीक हो गया। कह रहे थे कि वहाँ पे जो पेपर छापने वाला था, अपने जूते में छुपा के ले गया था पेपर। भाई जूते में छुपाने से याद आया कि एक बार की बात है, अब चलो कहानी शुरू ही हो गई है तो शुरू ही कर लेते हैं। तो पहले शायरी पूरी कर देती हूँ। कहते हैं कि यहाँ सारी तैयारी वीक हो जाती है, मेरी फीलिंग्स है नीट का पेपर जैसे लीक होता है वैसे ही लीक हो जाती है। फिलहाल फीलिंग्स की बात छोड़ते हैं, पेपर तो लीक होते ही रहते हैं। पेपर लीक होने पे मुझे याद आया कि अभी महाराष्ट्र में, जैसे मैंने आपको न्यूज़ के बारे में पहले ही बता दिया है कि महाराष्ट्र में कोई एस्टेट पेपर हुआ था, जैसे यूपी टेट वगैरह होता है, तो वैसे ही महाराष्ट्र में पेपर हुआ भाई एस्टेट का, स्टेट टेट का। अरे अब स्टेट की पूरी फुल फॉर्म पूछ लोगे क्या? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बड़े टेस्ट होते हैं। तो इस टेस्ट का भी मतलब जो पर्चा था वो लीक हो गया। कैसे लीक हुआ? सब लोग बोले बड़ी तैयारी थी, बड़ी टाइटनेस थी, मतलब पेपर बनाने वाले को नहीं पता था कि पेपर क्या बनाया है मैंने। ऐसा उन्होंने कहा यार, मैम मेरे पे आप लोग हंसी है मत, सेम टू सेम यही बात कही गई थी कि पूरे आयोग को नहीं पता था पेपर में छपा क्या है, लेकिन जो छपा था वो बाहर आ गया। कैसे आया? तो पूछा गया तो बताया गया कि पेपर छापने वाली एजेंसी में एक लड़का काम करता था, उसने अपने जूता के अंदर छुपा के पेपर बाहर ले गया और पेपर को वायरल कर डाला, और इसी चक्कर में पेपर कैंसिल हो गया। फिलहाल पेपर छपने में, लगने में, बनने में लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, क्या होता है, लाखों करोड़ों में गरीब लोगों की जिंदगी चल सकती है, बस बस और कुछ नहीं। एनीवे ये सब बातें छोड़ो यार, ये सब चलता रहता है यार, एक देश की तरक्की इन्हीं सब चीजों पे होती है। एनीवे मैं कहानी बात करती हूँ। जूते से मुझे याद आया क्या कि मैं जूता नहीं पहनती, नहीं है, ठंडी में जूता पहनती हूँ, गर्मी में नहीं पहनती। तो एक बार की बात है, राजा अकबर राजा थे भाई, राजाओं के शौक भी बड़े बड़े होते हैं। वो ऐसी ही, उनकी पत्नी वो भी बड़ी शौकीन थी। तो एक बार की बात हुई, राजा अकबर ऐसे बैठे थे और बातें बातें हो रही थी, और बातों ही बातों में चर्चा चल गई सिलाई करने वाले दर्जी की। राजा से बीरबल ने कहा कि भाई बीरबल मतलब राजा अकबर से बीरबल ने कहा कि अकबर जी आप जानते हैं महाराज कि कोई कितना भी बड़ा कोई ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन दर्जी जो है वो कतरन जरूर चुराता है, कपड़े भी जरूर चुराता है। तो राजा ने बोला अच्छा मैं राजा हूँ, मेरा कपड़ा कोई चुरा के पहन के कहाँ चला जाएगा? बोले ना, आपका दर्जी भी आपका कपड़ा चुराता होगा। बोले इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले कि नहीं, दर्जी तो कपड़ा चुराता है। राजा ने बोला कि तुम बीरबल थोड़ा ओवर स्मार्ट कम बना करो, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने फारसी, मतलब वहाँ से, कहाँ से, फारसी, मैं तो फारसी भाषा की बात करने लगी, मैंने फ्रांस से अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़ा मंगाया है, वेश कीमती, उस कपड़े का मैं उसके लिए ड्रेस बनवाऊंगा, वो ड्रेस महल के अंदर दर्जी बनाएगा, देखता हूँ कैसे कपड़ा चुराता है। भाई दर्जी को बुलाया गया, बढ़िया ईमानदार दर्जी ढूंढ के बुलाया गया, दर्जी ने कपड़ा सिलना शुरू किया, कपड़ा बनके तैयार हुआ, कपड़ा पहना रानी ने, और राजा ने बीरबल को चैलेंज किया कि क्या तुम चैलेंज मुझे कर रहे थे, क्या क्या कह क्या रहे थे कि दर्जी कपड़ा नहीं चुराता है, क्या यही कह रहे थे ना कि दर्जी कपड़ा नहीं चुराता है, देखो दर्जी कपड़ा चुराता है, देखो एक इंच कपड़ा नहीं चुरा के गया है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया, खाली एक ठुक कैची थी, वो भी मैंने अपने दरबार से दी थी। बीरबल ने कहा अच्छा भाई महाराज, आप तो आप हैं, हम तो छोटे इंसान आपके दरबार में, एक छोटे से मतलब मंत्री हैं, हमारा क्या। बीरबल ने ऐसे कह के बात को
घुमा दिया कि भाई अकबर हैं, इनका तो मूड उड़ सनक जाएगा, अभी मेरे को फांसी वांसी लगवा देंगे। चलो बात गई, मुलाकात गई, ऐसे दिन बीते, 10-15 दिन, महीने बीते, और एक बार महारानी साहिबा, मतलब जी अकबर जी की पत्नी, धर्म पत्नी, बेगम जो भी रही होंगी, कई बेगम, इन लोग की कई बेगमें थी, तो एक बेगम जा रही थी वही ड्रेस पहन के जो राजा अकबर ने बनवाई थी, अपने मतलब दौरे पे निकली थी, तभी देखा जैसी ड्रेस राजा की बेगम साहिबा ने पहनी थी वैसी एक औरत पहने बैठी हुई थी। और भाई सब लोग बेइज्जती करने लगा, अरे जैसे जैसे महारानी पहनी वैसे तो ये औरत भी पहनी है, क्या बात है, सस्ते कपड़े पहनने लगी हैं आजकल मतलब महारानियाँ भी। तो ये सुन के मतलब दुखी हो गई वो रानी, आई बोली चिल्ला दे हुए, कहाँ से कपड़ा मंगवाए थे, मेरे जैसा कपड़ा एक औरत पहने बाजार में बैठी थी, मतलब बेइज्जती हो गई, मैं महारानी हूँ यहाँ की, मतलब मैं बेगम हूँ आपकी, राजा अकबर की बेगम हूँ, मेरे जैसा कपड़ा लोग पहन के घूम रहे, व्हाट द हेल, मेरी क्या इज्जत है। इतना सुनने के बाद अकबर ने क्या किया, सोची सोची क्या किया, उस औरत को बुलवाया। जब औरत आई तो औरत ने बताया कि मैं तो दर्जी की पत्नी हूँ, उसी दर्जी की जिसने आपकी ये पोशाक बनाई थी। भाई दर्जी को बुला लिया गया, और उसी समय अकबर बड़े चकित और बड़ी शर्म भी महसूस हो कि मैंने तो चैलेंज कर दिया था बीरबल से कि कोई दर्जी कपड़ा नहीं चुराता, और यार ये तो मतलब इसने तो धोखा कर दिया। तो राजा क्या करें, बेइज्जती तो हो ही गई थी बीरबल के सामने। बीरबल ने बोला बोलो अब, बोलो अब, बोलो मैंने क्या कहा था, कोई भी दर्जी कपड़ा जरूर चुराता है, चाहे वो कतरन ही चुरा के अपने बेने में वो लगा ले, फुलरा लगा ले, लेकिन वो चुराता जरूर है। तो फिर राजा ने बड़े ही प्यार से उस दर्जी से पूछा, भाई तूने ऐसा कैसे कर लिया। तब उसने बताया कि दोपहर के समय में मेरा बेटा आया था मुझसे खाने के लिए पूछने, और मैंने उसको पहले से सेट कर रखा था कि जब मैं कुछ दूंगा तो तुम ले के जरूर जाना, चाहे वो चप्पल हो मेरा, चाहे जूता हो, चाहे वो मेरे पोशाक हो। तो जब उसने मुझे कई बार कहा कि बाबा चलो खाना खा लो फिर आके सिलाई करना, तो मैंने उसके ऊपर जूता फेंका था अपना मार के, और वो जूता लेके घर चला गया, उसी जूते में मैंने कपड़ा छुपा लिया था, और वो जूता लेके घर चला गया, और मैंने उसी कपड़े का अपने बेगम के लिए बढ़िया ड्रेस बना दिया। कपड़ा ज़्यादा रहता है तो मैं ले लिया करता हूँ, इसके लिए बुरा मानने की क्या ही बात है, कपड़ा बर्बाद हो इससे अच्छा मैं यूज कर लेता हूँ। बात तो भाई दर्जी की भी बात लॉजिक वाली थी, कपड़े वेस्ट करने की क्या जरूरत है, बच रहा है तो कुछ बना लेते हैं। फिलहाल अकबर बीरबल के सामने सॉरी शक्तिमान, मुझे तुम्हारी बात माननी तह चाहिए थी, और जूते वाली कहानी से मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा सुना दूं, आप लोग भी थोड़ा खुश हो जाएं, अकबर बीरबल की कहानियां सुन के बचपन बीता है, तो मेरे को ये वाली जूते वाली कहानी बड़ी मस्त लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी, मज़ा ही आ गया था। तो चलिए एक गाना सुनते हैं, और इसी के साथ आपके अच्छा सवाल भी कर लेती हूँ। यार मैं भूल जाती हूँ, मुझे कोई याद क्यों नहीं दिलाता है कि आज फ्राइडे है और बॉलीवुड इवनिंग में आपसे सवाल करने होते हैं और आपको सवाल के आंसर्स भी देने होते हैं। तो चलिए मैं आज थोड़ा सा बढ़िया सवाल करती हूँ। जितेंद्र एक पुराने हीरो हैं, इनकी असली पत्नी का नाम बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, करंट वाली बतानी है। जितेंद्र जी की पहली पत्नी, नहीं पहली नहीं, करंट वाली पत्नी का नाम बताइए, जो सबसे पहले बताएगा उसको अपनी पसंद का गाना सुनने को मिलेगा। ये तो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन हो गया भाई। तो चलिए एक बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ, और इसी के साथ आपके साथ दोस्त बन के रहने का मन कर रहा है मेरा, कैसे क्यों कब कहाँ कुछ पता नहीं, फिलहाल के लिए गाना बजाने के बारे में सोचना पड़ेगा। गाना आप लोग के लिए सोचा था कि सुनाऊंगी कोई बेवफाई वाला, लेकिन अभी बेवफाई वाला मौसम नहीं है यार, अभी प्यार का मौसम शुरू हुआ है। तो चलिए हम करते हैं अपने और आपके दोनों के प्यार को सूफियाना। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अरे नहीं यार, डर्टी पिक्चर, आज मुझे फिल्में क्यों कंफ्यूज कर रही हैं भाई, क्या मैंने फिल्में नहीं देखनी शुरू की हैं, मतलब देखी हैं, भूल गई हूँ मैं, वो एक्चुअली इसमें भी इमरान हाशमी है ना, तो उसमें भी है, तो मुझे लगा दोनों एक ही, मतलब क्या बताऊँ, लुक बड़ा सेम टू सेम है दोनों में, इसीलिए मैं कन्फ्यूज ही आ गई। तो चलिए विद्या बालन को देखा तो याद आया कि दे डर्टी पिक्चर का ये मामला है। तो चलिए सुनते हैं इश्क सूफियाना। फिलहाल इस फिल्म की भी बात और है, इमरान हाशमी जिस फिल्म में घुसते हैं चाहे वो विलन बने चाहे वो हीरो बने, मस्त एक्टिंग करते हैं। थैंक यू इमरान, इतनी अच्छी फिल्में

तो भाई जवाब देने की अगर लिस्ट देखें तो बहुत लंबी सी लिस्ट है। सबसे पहले आंसर आया अनिल जी का, बिल्कुल सही आंसर है शोभा कपूर। शोभा कपूर, लवली सिंह, शोभा कपूर, सबने आंसर दिया है, वेरी गुड इवनिंग। तो अब तीनों का आंसर एक ही टाइम पे प्ले हुआ है, तो मतलब तीनों को गाना सुनने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से अनिल जी, सबलू एंड लवली, फटाफट से अपनी डिमांड भेजें और अपनी पसंद का गाना सुने। अगले सवाल के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा आपकी मतलब जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है अक्षय कुमार की डेट ऑफ बर्थ। What is the date of birth of

अक्षय कुमार। अरे भाई मार्कशीट वाली नहीं, जो भी ओरिजिनल है वो वाली पूछ रही हूँ। और आप लोग बताइए अकबर बीरबल की कहानी में आपको मज़ा आया या नहीं? आपको क्या लगता है कि कहानी जो है वो सिर्फ फन के लिए या फिर सच्ची है? फिलहाल के लिए हम सबसे पहले फरमाइश देखते हैं किसकी आई। आई तो किसी की नहीं है, लेकिन हाँ मेरी फरमाइश तो ज़रूर बच जाएगी। और उस फरमाइश में सबसे पहला जो नंबर है वो है हमारे राहत फतेह अली खान की आवाज़ का, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए मैं नहीं, आप नहीं, वो हर इंसान शाम को जो अपनी प्लेलिस्ट तैयार करता है वो सोचता है कि उसकी प्लेलिस्ट में एक बार राहत फतेह अली खान का गाना ऐड हो जाए और शाम एकदम सूफियाना हो जाए। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान।

तो अभी आप सुन रहे थे सबलू सामंत जी की फरमाइश का गाना, और अब हम बारी है हमारे गाने को सुनने की, जो है अनिल जी की फरमाइश का गाना। अनिल जी जो कि हमें सुन रहे हैं गोरखपुर से, और इनका गाना बड़ा ही प्यारा है, मेरी मोहब्बत जमा रहेगी, रफी जी की आवाज में, फिल्म जानवर से 1965 की ये फिल्म, शमी कपूर और राजश्री के ऊपर फिल्माई गई फिल्म, जिसमें ना सिर्फ संगीत था बल्कि भावनाएं एक एक लफ्ज में थी।

तो चलिए इस गाने को सुनने के बाद अगले गाने का नाम है लवली सिंह के लिए और इन्होंने गाना चुना है पहले प्यार का पहला गम। ओह पहले प्यार का पहला गम, ये तो भाई गलत है। मतलब ऐसे थोड़े होता है कि पहले प्यार में पहले गम ही मिल जाए फिर बाद में खुशियां मिले। तो फिलहाल गम क्या है कैसे है ये तो हम बाद में समझेंगे, सवाल पहले आप लोग समझ लीजिए। आपको मैं बताना चाहती हूँ एक बड़ा सा मतलब बढ़िया सा सवाल है, सवाल की जो कहानी है वो ये है कि आपने पुराना वाला गाना तो सुना ही होगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है इसका घर, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, फिल्म का गाना है। तो ये बताइए उस फिल्म में एक्टर कौन है, जरा सोचिए और समझिए और फिर बताइए। इसी के साथ हम सुनते हैं पहले प्यार में कितना गम मिलता है इस गाने के साथ। शुभ संध्या उदालक।

तो फिलहाल आंसर देने में जो सबसे आगे रहा है वो है हमारे प्यारे लिसनर, जी हाँ, लवली सिंह गोंडा से। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, और आंसर है जुगल हंसराज। और सबलू सामंत जी ने भी आंसर सही दिया है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जुगल हंसराज। और सबसे पहले आंसर देने वाली बन चुकी हैं लवली, तो लवली अपने पसंद का गाना सुन सकेंगी पुनः। और अगले सवाल के लिए अगर आप लोग रेडी हैं तो अगला सवाल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मेरे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग के लिए कोई अच्छा सा सवाल दूँ जिसको मतलब सुन के भी आपको लगे कि हाँ भाई कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। तो एक सवाल जो आपके कानों में जाते ही आपके मन से उत्तर निकल के चला आएगा और बिना सोचे समझे ही आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, इसका तो आंसर मुझे सबसे पहले आता था, मुझे सबसे पहले आता था। तो फिलहाल सवाल ये है कि फिल्म जो है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, तीन दोस्तों में, तीन जो दोस्त थे, मतलब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने फिल्म देखी होगी, उसमें तीन दोस्त थे, उन तीनों दोस्तों का नाम आपको चैट रूम में लिखना है। तीन जो एक्टर्स थे जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में मेल एक्टर्स थे, उन तीनों का नाम आपको चैट रूम में लिखना है। अब जिसने भी फिल्म देखी होगी, ये 2000 के बाद की पिक्चर, मैंने क्या कहा था कि आज के सवाल 2000 के आसपास होंगे, और कुछ ऐसे सवाल जो आपके कॉमन जनरल नॉलेज के होंगे जैसे कि अक्षय कुमार की डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। तो चलिए आंसर देने में, इसके पहले भी आंसर लवली का सही था और धर्मेश का सबसे पहले आंसर आया था। तो अभी मैं चाहूँगी धर्मेश अपनी पसंद का गाना सुने। धर्मेश फटाफट से आप फरमाइश कर सकते हैं, और तब तक के लिए चलिए हम सुनते हैं ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के तीनों एक्टर्स का नाम आपको चैट रूम में लिखना है और अपने पसंद का गाना अपने नाम करना है। तो चलिए अब मेरा फेवरेट वाला गाना सुनते हैं, बहुत ही पसंदीदा गाना है मेरा लवली, थैंक यू सो मच इस गाने की फरमाइश करने के लिए।

अर्जुन, कबीर, इमरान करेक्ट आंसर। और अभी धर्मेश का गाना सुनते हैं, आज उनसे मिलना है हमें। क्यों भाई, इससे पहले नहीं मिले थे क्या? फिलहाल अपना पसंदीदा गाना बीच में ही छोड़ते हुए मैं अगला गाना प्ले करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे विनर्स के गाने प्ले करने, नहीं तो कहेंगे कि आरजे बिना तो धोखा करती हैं। तो कमल, अपनी फरमाइश आप जल्दी से भेजिए, आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने।

चलते चलते कमल का गाना प्ले करते हुए मुझे दीजिए इजाजत, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए और अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन सुनते रहिए। आपके अपनी फरमाइश के गाने बजाने के लिए आपकी आज सिंपल आबी के सामने होंगी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे डॉक्टर लव के साथ आपके दिल का इलाज करने के लिए। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट आरजे बीना, अपनी पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 89.6 FM के साथ। यह गोंडा शहर की धड़कन स्टेडियम।

आदाब एंड सत्श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ी देर और ठहर जाओ। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, किसका है आपको इंतजार दोस्तों? फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशुन मिश्रा जी लखनऊ से, प्रमुख कुमार लुधियाना से, कमल नयन मुस्तफा जी सऊदी से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से शायद, और सबलू सामंत मुंबई से, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इट्स कुमार फ्रॉम एमपी दीवा, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सुनीता जी गोड़वा घाट गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो दोस्तों, कैसा गया आज का दिन? कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे क्या, या फिर आज का डिनर स्किप हो गया था क्या, या फिर आज का लंच स्किप हो गया था क्या, या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा इंसिडेंट हो गया था क्या, या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो गई थी क्या, किसी बात ने क्या आपका दिन बना दिया है? आज आपका मूड कैसा है? आप अपसेट हैं आज के दिन को लेके कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया है? कैसा गया ये सब कुछ आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। सो दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना रमैया वस्तावैया। सो एंजॉय करते हैं आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल।

सो दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नगमा, ओल्ड इज गोल्ड नगमा, हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों प्रमुख कुमार की लुधियाना से। प्रमुख कुमार को लुधियाना से सुनना है डिवोशनल सॉन्ग मंगल की सेवा। तो एंजॉय करते हैं महाकाली की आरती सिर्फ और सिर्फ प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो कि है लुधियाना से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तो दोस्तों ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी, डिवोशनल सॉन्ग की फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी प्रमुख कुमार जी की तरफ से, जो कि है लुधियाना से। सो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मोहम्मद मुशीफ जी बाराबंकी से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल लवली सिंह फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। संदीप कुमार आपका भी स्वागत है और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सो एंजॉय करते हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन इस बार मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

पर पर दिल के पास तुम रहती हो। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का जी की श्रावस्ती से। अनुष्का को, हमारी क्यूट सी अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना तेरे नाम। सो एंजॉय करते हैं। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जीवन अपना सारा सनम हमने एंजॉय किया है। उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन क्या आप सभी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में फरमाइशी के अगले गीत की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में हाँ लिख के जरूर बोलिएगा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। इनको सुनना है गाना आवारा अंगारा, सो एंजॉय करते हैं ये नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जाने टूटा क्यों, मैं शीशा ना तारा, हमने एंजॉय किया है आवारा अंगारा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में आई हुई है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना जुम्मे के जुम्मे। सो एंजॉय करते हैं मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का ये गाना सिर्फ और सिर्फ अभिजीत भट्टाचार्य और पूर्णिमा जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेश त्रिपाठी, अनोखी शर्मा एंड तबीश खान, आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का ये गाना जुम्मे के जुम्मे आया करो हमने एंजॉय किया है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों पता है क्या अगली फरमाइश हमारे पास किसकी है? अगली फरमाइश है हमारे पास में कमल नैन की। कमल नैन को सुनना है गाना दुनिया के लाखों धर्म हैं पर हमारा एक धर्म है। सो एंजॉय करेंगे चना जोर गरम का ये गाना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने इंजॉय किया ही बहुत ही खूबसूरत सा नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की। धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना गहरा हुआ। सो धुरंधर का ये गाना धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर हम एंजॉय करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जीएमपी से आपका स्वागत है, और इसी के साथ में उदालक शर्मा फ्रॉम मनकापुर स्टे ट्यून्ड आपका भी स्वागत है। और आप सभी भी अपने फरमाइशी गीत को चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गहरा हुआ। सो एंजॉय करते हैं धुरंधर का ये नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गहरा हुआ, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, बढ़ेंगे बढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे, फरमाइशों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, गीते बजती रहेंगे, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। रामपाल दुबे माधोपुर से आपका स्वागत है और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, सबीहा की गोंडा से, और सबीहा को गोंडा से सुनना है गाना तेरे हवाले। सो एंजॉय करते हैं सबीहा की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाले हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सभी हकी फरमाइश पर नाउ लेट्स गो टू अगली वाले डिमांड की तरफ। और अगली डिमांड हमारे पास में आई हुई है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना चेहरा है या चांद खिला है, शायद जुल्फ घनेरी शाम है क्या और सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता देना है क्या। सो शायद यही वाला नगमा है, फिलहाल एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई रियली लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच राजेश सिंह जी।

खिला है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, किशोर कुमार जी की आवाज में हम सब के दिल के करीब रहने वाला नगमा हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह की फरमाइश पर। सो चलिए चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रकाश की, और प्रकाश को सुनना है गाना बैरन। सो एंजॉय करते हैं ये बैरन सुपर डुपर हिट हरियाणवी सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की फरमाइश पे, जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

प्रकाश की लखनऊ से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, उनको सुनना है गाना तू जब जब मुझको पुकारे। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दिल देना और दिल लेना अच्छी बात होती है ना दोस्तों। जब तक दिल देते नहीं है, जब तक दिल लेते नहीं है, तब तक दिल की अहमियत पता नहीं चलती ना हम लोगों को। फिर इसके बाद में जब दिल लेके तोड़ देते हैं किसी का, या फिर अपना दिल किसी को दे के तोड़ देते हैं उसका दिल, तो भाई बहुत बुरा होता है। और तभी हमें हमारे दिल के बारे में समझ में आता है, दिल की वैल्यू हमें समझ में आती है, दिल की अहमियत हमें समझ में आती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की गोंडा से, और लवली सिंह को गोंडा से सुनना है गाना दुनिया हसीनों का मेला और मेले में ये दिल अकेला। वैसे दुनिया चाहे हसीनों का मेला हो, चाहे हैंडसम लोगों का मेला हो, हर एक इंसान दुनिया में अकेला ही होता है। देखो आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको पता है क्या असलियत क्या है? असलियत हमें पता ही नहीं जाता, असलियत हमें सिखाई नहीं जाती है, असलियत हमें तब पता चलती है जब हम उस दुनिया से रूबरू होते हैं। तो आप इस दुनिया में आए हो अकेले, आप इस दुनिया में सरवाइव भी अकेले करने वाले हो, चाहे आपके पास में 72 लोग हों तो क्या, लेकिन इस दिल की सिर्फ आप जानोगे। और फिर इस दुनिया से अकेले जाओगे भी, तो ये सब कुछ अकेले ही करना है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश और लेते हैं इसी के साथ में एक छोटा सा न्यूज वाला ब्रेक। मिलते हैं न्यूज वाले ब्रेक के उस पर, तब तक अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर बने रहिएगा। और जिन लोगों ने पेट पूजा अभी तक नहीं किया, फटाफट से जाके पेट पूजा करके आइए और विश्राम के साथ में एंटरटेनमेंट करेंगे, एक के साथ एक मुफ्त, बाय वन गेट वन फ्री। स्टे ट्यून्ड, एवरीवन एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिन में तुम उन्हें ढूंढे पुलिस में आऊंगा, आधी रात में। हमने एंजॉय किया है ये गाना सौरभ मौर्य की फरमाइश पर जो की है गुड़वा घाट कुंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने फरमाइशी की महफिल में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और डेफिनेटली आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अक्षय सिंह की। अक्षय सिंह को सुनना है गाना ब्लफ मास्टर का। सो एंजॉय करते हैं ये अजीब सा, अतरंगी सा और शायद ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे अक्षय सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

साथ में हमने सुना है, एंजॉय किया है, बोरो बोरो डेलम तोरा तोरा, पता नहीं क्या, मेरे को तो नहीं समझ में आई, मतलब लिरिक्स नहीं समझ में आई, लेकिन एक गाना सच में बहुत ही फनी था, बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अतरंगी था, एकदम आपकी सिंपल नॉट सो सिंपल की वाइब से मैच करता हुआ गाना है। सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट। और ये गाना आज से मेरी प्लेलिस्ट में है, भले ही मुझे इसका मतलब ना पता चले। डोंट वरी दोस्तों, आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल जिसके लिए एकदम क्यूरियस हो जाती है ना, जिस चीज़ के लिए, उस क्यूरियोसिटी को ऐसे बने नहीं रहने देती है वो सीधे यही सोचती है कि इस क्यूरियोसिटी को दूर किया जाए, तो मुझे चाहे उसके लिए रिसर्च करना पड़े घंटों पर, उसके बारे में जानकारी लेना पड़े, मैं लूंगी जरूर, लेकिन फिलहाल ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की मनकापुर से। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें, दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना। सो एंजॉय करते हैं उदालक शर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय की, बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट नगमा हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पर जो की है गोंडा से, आई मीन मनकापुर से। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। सो क्या अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए आप लोग तैयार हैं? अगली फरमाइश भी है बहुत ही सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाने की, और ऐसा गाना है जो सबकी जुबान पर रहता है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा मलाइका अरोड़ा का गाना, SRK का गाना, सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में छैया छैया। और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई है निशा की तरफ से जो कि है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। आई

सो दोस्तों हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुनीता जी की गुड़वा घाट गोंडा से, और सुनीता जी को गुड़वा घाट गोंडा से दोस्तों सुनना है गाना दगाबाज रे। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी फरमाइशी गीत के साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों बस इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का दोस्तों कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो सो सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल।

व्हाट्स सिंपल के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, चलती हूँ, मिलते हैं कल फिर से, है ना। और सही कहूँ तो मैं भी नहीं टूटूंगी, आप भी नहीं टूटोगे इस दुनिया में। अगर सर्वाइव करना है तो बहुत खुशी खुशी करेंगे, कोई भी गम आएगा अरे कितने दिन तक टिकेगा हमारे सामने, दो दिन, दो मिनट में चला जाएगा, दो दिन में चला जाएगा, दो साल में जाएगा, जाएगा तो। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल ना समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

मैं बोलता गया और रास्ता निकल गया, मैं बोलता गया और रास्ता निकल गया, मगर वो बात जो दिल में थी अब भी बाकी है। आदाब, आप सुन रहे हैं बहारे गजल अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। हम अक्सर समझते हैं कि खामोशी का मतलब सन्नाटा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि खामोशी सबसे बड़ी आवाज होती है। जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है और सुनने वाला कोई नहीं मिलता, तब उस लम्हे में पैदा होती है खामोशी। आज हमारे इस खास शो का उन्वान है कैफियत खामोशी, यानी खामोशी का शोर। इसी खामोशी को अल्फाज दिए हैं इकबाल माहिर साहब ने कुछ अपने अंदाज में इस खूबसूरत सी गजल में। वो कुछ लिखते हैं यूं कि रात तारीख रस्ते खामोश, मंजिल तक है कुमकुमे खामोश, आरजुओं के ढेर गए अहराम, हसरतों के हैं मकबरे खामोश, दिल के उजड़े नगर से गुजरे हैं कितनी यादों के काफिले खामोश, मुंतजिर थे जो मेरी आमद के, है मुंडेरों पे वो दिए खामोश, मेरे मुस्तकबिले मोहब्बत पर जिंदगी के हैं तजुर्बे खामोश, जहने आजरे ख्वाबगाहे जुमूद, जहने आजरे ख्वाबगाहे जुमूद, फिक्र फन के हैं बुतकदे खामोश, फिक्र फन के हैं।

कब आती है? जब जज्बात इतने भारी हो जाए कि अल्फाज छोटे पड़ने लगे। वैसे जो मैसेज आप टाइप करते हैं ना, और फिर उसे बैकस्पेस दबा करके मिटा देते हैं, दरअसल वही तो है खामोशी का शोर। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम ना होते ना सही जिक्र तुम्हारा होता। यह शेर इसी खामोशी के शोर की एक बानगी है, कुछ इसी को कहने की कोशिश की है इस खूबसूरत सी गजल में, कि रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले बहुत तड़पी

जर्रों में बिखरने से जरा पहले। मैं अशकों की सर्द में भी जब्त कर लेता हूँ, मुझे आगाह तो करता उभरने से जरा पहले। कोई सूरज से पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी के नशेबों में उतरने से जरा पहले। कहीं तस्वीर रुस्वा न कर दे मेरे तसव्वुर को, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से जरा पहले। सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे के लेके गुजरा है, सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है। मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से जरा पहले। क्या कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाए हों, और या तो उन बातों ने अंदर ही अंदर आपके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया? अगर ऐसा कुछ है

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
10: आप सुन रहे हैं खामोशी का शोर। जॉन साहब की एक बात मुझे याद आती है, जो खामोशी के फलसफे को बेहद गहराई से बयां कर देती है। वो कहते थे कि हम बाहर से जितना ज्यादा बोलते हैं, असल में हम अंदर के सन्नाटे को उतना ही छिपाने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनका ये शेर अपने आप में मुकम्मल बात कह जाता है। शेर कुछ यूं है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं, कितना खामोश हूं मैं अंदर से। ये बाहर का शोर नहीं, अंदर की उस बेचैनी का है जिसे हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं। इस हालात को जव्वाद शेख साहब कुछ यूं बयां करते हैं कि हाथ में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हमको जेबा नहीं कि तुमसे कहें। दिल किसी वजह से दुखी है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। जहन उलझा हुआ है कुछ दिन से, लेकिन इतना नहीं कि तुमसे कहें, वरना अब तक न कह चुके होते। कभी चाहा ही नहीं कि तुमसे कहें। खामोशी अश्क रोग मर्ग फरार, खामोशी अश्क रोग मर्ग फरार, एक रास्ता नहीं कि तुमसे कहें। तुमको तो आता नहीं हमसे कहो, हमसे होता नहीं कि तुमसे कहें। कह देते हैं दिल की बात, चलो खैर बनता नहीं कि तुमसे कहे, यूं ही एक कैफियत सी है जो बात, कोई किस्सा नहीं कि तुमसे कहे। लौटते हैं इसी खामोशी के सफर पर,

इस खूबसूरत सी गजल के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं आपके अपने बहारे गजल के शो में। बात जब खामोशी की हो तो उस कलम का जिक्र जरूरी है जो कागज पर चलते चलते रुक जाती है। पता है एक राइटर के लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब उसका दिल भरा हो और कागज कोरा रह जाए। किसी ने कहा भी है कि कलम सबसे ज्यादा शोर तब करती है जब वो लिखने से इनकार कर देती है। इस हवाले से अयाज साहब ने क्या खूब शेर लिखा है कि मेरे कलम से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कभी कभी खामोश रहना भी एक कला है और अपनी आग में खुद जलना और दुनिया को खबर ना होने देना ही असली जब्त यानी कि

अभी जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी ने इशारा कर दिया, यानी वक्त आज का पूरा हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अपनी खामोशी से आप भी प्यार करना सीखिए। अहमद फराज साहब ने हमें सिखाया कि दुनिया के सामने अपना गम बयां करने से बेहतर है कि हम अपना वकार यानी कि गरिमा बना रखें। फराज साहब फरमाते हैं कि चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, दुनिया तो अर्ज़-ए-हाल से बेआबरू करे। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। कुछ यही बात इब्ने इंशा साहब की

गजल में मिलता है कि कुछ कहने का वक्त नहीं, कुछ ना कहो खामोश रहो। कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ ना कहो खामोश रहो। ऐ लोगो खामोश रहो, हाँ ऐ लोगो खामोश रहो। सच अच्छा पर उसके जिलों में जहर का एक प्याला भी, पागल हो क्यों ना हक को सुकरात बनो खामोश रहो। उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है, सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो खामोश रहो। महबस में कुछ हब्ज है और जंजीर का आहन चुभता है, महबस में कुछ हब्ज है और जंजीर का आहन चुभता है। फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, फिर सोचो खामोश रहो। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है, इस बगिया के भेद न खोलो, सैर करो खामोश रहो। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़, इंशा जी लो धागा लो, लब सी लो खामोश रहो, लब सी लो खामोश रहो। आज के इस शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए अल्फाज के साथ। ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर के।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रात हो चुकी है, अधिकतर घरों की बत्तियां बुझ चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जाग रहे हैं। कुछ लोग अपनी अधूरी यादों के साथ, कुछ लोग सीने में दबे उस गहरे दर्द के साथ जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं, और कुछ लोग उन अदृश्य रूहों के साथ जिन्हें शायद आज भी इस दुनिया से जाने का सुकून नहीं मिला। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम का विशेष कार्यक्रम लेट नाइट हॉरर शो। आज की कहानी हमें ले चलती है इटली के खूबसूरत लेकिन रहस्यों से भरे टस्कनी प्रांत में। एक ऐसी कहानी जहां गहरा प्रेम था, अटूट विश्वास था, एक मुकद्दर का वादा था और था एक सुर्ख लाल गुलाब। लेकिन उस प्रेम के बीच पनप गया एक खौफनाक शक जिसने सिर्फ एक खूबसूरत इंसान की हत्या ही नहीं की, बल्कि पूरे टस्करी गांव की आत्मा को जीवन भर के लिए शापित कर दिया। उन्हें एक ऐसे मानसिक आघात में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आज की कहानी है टस्कनी का लाल गुलाब। कहते हैं इटली के टस्कनी प्रांत की पहाड़ियों के बीच वो पुरानी पथरीली हवेली आज भी सूनी खड़ी है, जहां दिन में सन्नाटा होता है और रात होते ही दीवारें सुबुकने लगती हैं। लोग उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करते। वहाँ के बुजुर्ग आज भी कांपती आवाज में बताते हैं कि हर शुक्रवार की रात ठीक 7 बजे एक दूध जैसी सफेद पोशाक पहने साया उस हवेली के मुख्य दरवाजे से निकलता है। उसके कांपते हुए हाथों में एक सुर्ख लाल गुलाब होता है। वो साया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन जो लोग कोतूहल में आकर उसका पीछा करने की खता करते हैं, उनकी आंखों से उम्र भर के लिए नींद गायब हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस साय की आंखों में इतना बेहिसाब दर्द, इतना आघात छिपा है कि उसे महज एक पल के लिए देख भर लेने से इंसान पागलपन की हद तक अपने सारे पुराने गुनाहों को याद करके तड़पने लगता है। उस स्त्री का नाम था इसाबेला। इसाबेला मानो टस्कनी की खिली हुई सुबह, दूध सी उजली त्वचा, कमर तक लहराते काले घुंघराले बाल, हल्की नीली आंखें और एक ऐसी पावन मुस्कान जैसे किसी प्राचीन चर्च में वर्षों बाद प्रार्थना की घंटियां गूंजी हो। लेकिन जो व्यक्ति उसे बहुत बारीकी से देखता, उसे एक अजीब और डरावनी बात दिखाई देती। उसकी मुस्कान हमेशा उसके होंठों तक ही सिमट कर रह जाती थी। उसकी नीली आंखें वो कभी नहीं मुस्कुराती थी। उसकी आंखों के सूनेपन में हमेशा एक रूहानी थकान रहती थी, जैसे किसी ने उसके वजूद के भीतर से खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेरहमी से नोचकर चुरा लिया हो। सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की खोलती, सर्द हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती, फिर वो अकेले ही बगीचे में जाती, उन लाल गुलाबों को अपनी उंगलियों से सहलाती, उनसे धीमी आवाज में बातें करती और अक्सर रोते हुए कहती,
1: तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें प्यार करने वाले कभी तुम पर सवाल नहीं उठाते, फिर सिर्फ तुम्हें खिलते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारी खामोशी से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती।
0: तभी पीछे से अलेजांद्रो आ जाता, उसका पति, मुस्कुराता, उसे अपने बाहों के घेरे में भर लेता और उसकी गर्दन पर अपने सांसों को छोड़ता हुआ पूछता, और मैं, क्या मैं भी भाग्यशाली हूँ इसाबेला? और इसाबेला धीरे से हंसती,
1: तुम
0: तुम तो इस कायनात के सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। अलेजांद्रो उसकी आंखों के उस अनसुलझे गहरे कुएं में झांकता और कहता, और मेरे पास तुम्हारे अलावा जीने की कोई और वजह भी नहीं है। फिर दोनों हंस पड़ते। लेकिन श्रोताओं, हर मुकम्मल दिखावे वाली प्रेम कहानी के पीछे एक बंद अंधेरा कमरा होता है, एक ऐसा मानसिक तहखाना जहां चाह कर भी कोई दूसरा इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। और इसाबेला के दिल में भी ऐसा ही एक कमरा था, जिसका भारी दरवाजा हर शुक्रवार की शाम को खुलता था। शुक्रवार के ठीक 6 बजे मौसम में अचानक एक अजीब सा भारीपन छा जाता। इसाबेला अपने कमरे में जाती, अलमारी खोलती और बहुत सारे खूबसूरत वस्त्रों के बीच से वो बेहद सहेज के रखी गई उस सफेद रेशमी पोशाक को निकालती। ये पोशाक वो केवल शुक्रवार को पहनती। पोशाक बेहद सुंदर थी, किनारियों पर मोतियों का महीन काम आंसू जैसा काम था। वो अपने बाल खोलती, धीमे धीमे कंघी करती और लैवेंडर का इत्र लगाती। फिर वो आईने के सामने खड़ी हो जाती, कुछ क्षण बिना पलक झपकाए स्वयं को देखती, मुस्कुराती और अचानक उसके भीतर का कोई बांध टूट जाता। उसकी नीली आंखों से लगातार आंसू बहने लगते। वो पागलों की तरह उन आंसुओं को पोंछती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बगीचे में जाकर सबसे गहरा ताजा लाल गुलाब चुनती और बिना बताए घर से बाहर निकल जाती। अलेक्जेंड्रो उसी खिड़की से जाते हुए देखता। हर शुक्रवार अपना दिल महसूस कर रख लेता, कुछ नहीं पूछता। लेकिन कुछ शुक्रवार के बाद जब उसके सब्र का बांधा टूटने लगा तो उसने रास्ता रोक कर पूछा, इसाबेला, तुम इस शुक्रवार को इस कदर सज धज कर कहाँ जा रही हो? इसाबेला ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। एक पुराने वादे को निभाने अलेक्जेंड्रो, किससे किया था तुमने ये वादा? वो बोली, एक ऐसे इंसान से जो अब इस दुनिया के बंधनों से आजाद हो चुका है। इतना कहकर वो अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गई। अलेक्जेंड्रो वो वहीं बेजान खड़ा रहा। उसने पहली बार अपनी रूह में महसूस किया कि प्रेम कभी कभी इंसान को कितना अधूरा और बेबस कर देता है। उस रात अलेक्जेंड्रो देर तक जागता रहा। बाहर अजीब सी डरावनी हवाएं चल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक कमरे के सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अलेक्जेंड्रो का दिमाग एक अजीब से गहरे अवसाद और शक के जाल में उलझने लगा। रात के ठीक 9 बजे दरवाजा खुला। इसाबेला लौट आई, पर उसके हाथ में वो लाल गुलाब नहीं था। उस दिन अलेक्जेंड्रो ने गौर किया, उसकी उंगलियों के पोरों पर गाढ़ा लाल रंग लगा हुआ था, जैसे उसने किसी पुरानी सूखी हुई चीज को छुआ हो। उसकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई थी। अलेक्जेंड्रो ने पूछा, सब ठीक है इसाबेला? हाँ हाँ अलेक्जेंड्रो, तुम रोई थी? हाँ, कभी कभी कुछ यादें इंसान के भीतर इस कदर बैठ जाती है कि वे आंखों से आंसू बनकर बहने लगती है। किसकी याद इसाबेला? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? इसाबेला ने धीरे से कहा, कुछ लोगों के जिंदगी के आगे बढ़ जाने पर भुला देना सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। अलेक्जेंड्रो वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात अलेक्जेंड्रो की आंखों से नींद हमेशा के लिए रुखसत हो गई। फिर शुक्रवार आया, फिर वही सफेद रेशमी पोशाक, वही लैवेंडर की तीखी खुशबू, वही सुर्ख लाल गुलाब, वही छुपे हुए आंसू। लेकिन इस बार अलेक्जेंड्रो ने छिप कर देखा कि इसाबेला जाने से पहले एक कमरे के एक गुप्त कोने में रखे एक पुराने छोटे से लकड़ी के संदूक को खोल रही थी। उसने भीतर किसी चीज को बेहद तड़प के साथ देखा। एक पुरानी तस्वीर उठाई, उसे पागलों की तरह चूमा, आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाई और फिर वापस रख दिया। अब अलेक्जेंड्रो को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गुस्से में पूछा, ये तस्वीर किसकी है, कौन है ये आदमी? इसाबेला बुरी तरह चौंक गई, उसके हाथ कांप गए। कुछ क्षण कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया, फिर उसने खुद को संभाला और बोली, ये मेरे अतीत का एक टुकड़ा है।
1: किसका अतीत, कैसा अतीत, तुम इससे क्या छुपा रही हो बार बार?
0: वो बोली, तुम मेरे वर्तमान हो अलेक्जेंड्रो, उसी में खुश रहो।
1: और हमारा भविष्य?
0: इसाबेला मुस्कुराई, लेकिन उसके आंखों का दर्द फूट पड़ा। भविष्य अलेक्जेंड्रो, भविष्य हमेशा हाथों में नहीं होता, कुछ चीजें मुकद्दर पहले ही तय कर चुकी होती है। श्रोतागण, अब अलेक्जेंड्रो का दिमाग एक भयानक साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन का शिकार होने लगा था। शक जब दिमाग की नस नस में जहर बनकर दौड़ता है, तो इंसान को हर खामोशी एक साजिश नजर आने लगती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई है, जहाँ से खौफ और दीवानगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। श्रोतागण, हम जल्दी ही मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: FM के प्यारे श्रोतागण, धीरे धीरे टस्कनी गांव की गलियों में, वहां के बाजारों में इसाबेला को लेकर तरह तरह की बात शुरू हो गई। एक शाम अलेक्जेंड्रो शराब खाने के बाहर खड़ा था। अंदर कुछ बूढ़े किसान शराब के नशे में धुत होकर बात कर रहे थे। अरे आज फिर शुक्रवार है ना? वो देखो हवेली वाली फिर निकली, वही सफेद कपड़े पहनकर, और हाँ भाई हाथ में वही खूनी लाल गुलाब। एक आदमी तो गंदे तरीके से हंसा, मरने वालों के लिए कोई औरत इस तरह से सजती संवरती है क्या? दूसरा बोला, अरे नहीं ये मौत का मातम नहीं है, ये तो ऐसे गुपचुप तरीके से अपने किसी गुप्त प्रेमी से मिलने जाया करती है। तीसरा बोला, मैंने एक बार रात के अंधेरे में उसकी आंखों में देखा है, वो किसी मर्द की चाहत में जल रही है, लेकिन वो अलेक्जेंड्रो कत्तई नहीं है, वो तो बेचारा घर में बैठा रहता है। इतना सुनकर सब ठाके मार के हंसने लगे। बाहर खड़े अलेक्जेंड्रो का हाथ कांप गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहीं इसाबेला हर शुक्रवार मेरे पीठ पीछे मेरी मोहब्बत का कत्ल तो नहीं कर रही? उस रात वो बिस्तर पर बेजान लेटा था, इसाबेला ठीक बगल में गहरी नींद में सो रही थी। उसका मन खुद बार बार संवाद कर रहा था, अगर ये मुझे धोखा दे रही है, अगर वो किसी और के पास जा रही है तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं खुद को तो खत्म कर लूंगा मगर इसका भी वजूद मिटा दूंगा। और तभी उसके भीतर से एक और कमजोर सी आवाज आई, और अलेक्जेंड्रो अगर वो सच बोल रही हो, अगर कोई पुराना पारिवारिक सच हो। लेकिन शक की पहली हिंसक आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, नहीं वो सरासर झूठ बोल रही है, कौन सी ऐसी पाक साफ औरत है जो हर शुक्रवार की रात अंधेरे में सजती है, लाल गुलाब लेकर जाती है, रो कर लौटती है और उंगलियों पर खून जैसा लाल रंग होता है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उसके आशिक के लिए। उस रात अलेक्जेंड्रो को एक बेहद खौफनाक सपना आया। अब अलेक्जेंड्रो को किसी भूत प्रेत ने नहीं बल्कि अपने ही सड़ते हुए दिमाग और अपने ही मन की खौफ महसूस होने लगी थी। दोस्तों कभी कभी उस दुनिया के सबसे खतरनाक और आदमखोर भूत पुरानी कब्रों या खंडहरों से नहीं निकलते, वे हमारे अपने ही बीमार मनों के अंधेरे में जन्म लेते हैं, और जब वे शक का खून पीकर बड़े हो जाते हैं तो प्रेम विश्वास और इंसानियत सब कुछ जिंदा निकल जाते हैं। कहानी अब उस खूनी अंजाम की तरह बढ़ रही है, जहां अलेक्जेंड्रो का ये मानसिक पागलपन इसाबेला के वजूद को लीनने वाला है। जाइएगा मत, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: FM के प्यारे श्रोतागण, शक की सबसे बड़ी और खौफनाक विडंबना यही होती है कि वो कभी सच जानना ही नहीं चाहता। वो केवल और केवल अपने भीतर बैठे उस काले डर को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और अब अलेक्जेंड्रो पूरी तरह से एक मानसिक मरीज में तब्दील हो चुका था। वो पहले जैसा हसमुख और जिंदा दिल इंसान नहीं था। उसकी आंखें धस चुकी थी, चेहरे का रंग काला पड़ चुका था। अब वो 2400 घंटे साए की तरह इसाबेला पर नजर रखता। उसे इसाबेला के कदमों की आहट रट चुकी थी। वो पागलों की तरह डायरी में नोट करता था कि वो कितने सुबह उठती है, किस समय कॉफी लेती है, बगीचे के किस गुलाब के पौधे को सबसे ज्यादा देर तक देखती है, किस दिन उसके चेहरे पर उदासी का रंग गहरा होता है, किस दिन उसकी आंखें रोने के बाद सूझकर और डरावनी और सुंदर दिखाई देती है। वो एक मानसिक कैदी बन चुका था जिसे अपने ही बनाए हुए सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। और उत्तर न मिलने की यह भयानक मानसिक पीड़ा मनुष्य को धीरे धीरे एक बेरहम दरिंदे में बदल देती है। एक शाम इसाबेला हवेली के हॉल में बैठकर पियानो बजा रही थी। उसकी धुन में इस कदर दर्द था मानो कोई रूह अपनी आखिरी विदाई गीत गा रहा हो। अलेक्जेंड्रो पागलों की तरह हिंसक कदमों के साथ उसके पास आया और उसने गुस्से में पूछा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ इसाबेला? इसाबेला ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। पूछो अलेक्जेंड्रो, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? इसाबेला उदासी से मुस्कुराई। ये कैसा बेतुका सवाल है, तुम मुझे सीधा जवाब दो। हाँ अलेक्जेंड्रो, अपनी आखिरी सांस के आखिरी कतरे तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ।
2: तो फिर तुमने मुझको सच्चाई क्यों नहीं बताई?
1: क्यों हर शुक्रवार को इस तरह से तैयार होकर अंधेरे में चली जाती हो?
2: इसाबेला के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो हवा ने भी सांस लेना बंद कर दिया हो। कुछ देर बाद वो बेहद ठहरी हुई आवाज में बोली, अलेक्जेंड्रो, हर इंसानी आत्मा में एक ऐसा कमरा होता है जहां वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे गहरे दुखों को महफूज रखता है। मैं तुम्हारे भले के लिए उस कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती।
1: क्यों नहीं खोल सकती? आखिर ऐसा क्या तुम्हारा पाप छुपा है?
2: अलेक्जेंड्रो, क्योंकि कुछ वादे जीवित लोगों से ज्यादा उन मृत लोगों की पवित्र रूह से जुड़े होते हैं जिन्हें हम कभी तोड़ नहीं सकते। अलेक्जेंड्रो का चेहरा गुस्से और पागलपन से विकृत हो गया।
1: तो इसका मतलब कोई आदमी है वहाँ?
2: इसाबेला ने आंखें बंद करते हुए कहा,
1: हाँ कोई है वहाँ, एक ऐसा अभागा व्यक्ति जिसने सिर्फ मेरे वजूद को सलामत रखने के लिए अपना सब कुछ अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दिया और खुद मौत के मुंह सो गया।
2: तुम उसका नाम बताओ। इसाबेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे उसका नाम मत पूछो तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि जिस दिन तुम उसका नाम और सच जानोगे उस दिन तुम खुद की नजरों में इतना गिर जाओगे कि तुम अलेक्जेंड्रो नहीं रह पाओगे, तुम अंदर ही अंदर मर जाओगे।
1: लेकिन अलेक्जेंड्रो के ऊपर तो जैसे किसी शैतान का साया सवार था। वो पहले ही अपनी इंसानियत खो चुका था। इसाबेला के बाहर जाते ही उसने पागलों की तरह पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। उसने उसकी अलमारी के कपड़े फाड़ डाले, उसकी पसंदीदा किताबें पन्नों पन्नों में बिखेर दी, उसकी पुराने खतों को फाड़ दिया, उसके संदूकों के ताले कुल्हाड़ी से तोड़ दिए। वो एक पागल जानवर की तरह हांफ रहा था। तभी उसकी हाथ में एक अलमारी के गुप्त दराज से एक छोटा सा पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा लगा। उस पर किसी ने लिखा था, मैं आऊंगी हर शुक्रवार जब तक मेरे इस जिस्म में आखिरी सांस चलती होगी। बस इतना ही लिखा था, ना कोई नाम था, ना कोई पता, ना कोई तारीख और ना कोई संबोधन। लेकिन अलेक्जेंड्रो के शक के बीमार और शक से सड़े हुए दिमाग के लिए ये सबूत काफी था। उस कागज को उसने अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसकी आंखों में पागलपन की लाली उतर आई। वो हंसने लगा, वो खौफनाक हिंसक हंसी। हा हा हा, तो ये वो प्रेम पत्र है? वो मुझसे झूठ बोल रही थी, वो पाक साफ बनने का नाटक कर रही थी। वो हर शुक्रवार अपने उसी आशिक की बाहों में जाती है। तो अलेक्जेंड्रो को हवेली के हर कोने में संकेत दिखाई देने लगे। वो हफ्तों तक सो नहीं पाया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो 2400 घंटे सिर्फ शराब पीने लगा। उसकी मानसिक स्थिति इस कदर खराब हो चुकी थी कि वो खुद को ही काटने लगा। गांव के शराब खाने में और सारी अफवाहें फैलने लगी। एक दुष्ट बूढ़ी औरत ने अलेक्जेंड्रो को देख करके ताना मारा, अरे अलेक्जेंड्रो अपने बीबी को संभाल, मैंने उसे रात के 11 बजे उस पहाड़ी के ऊपर बने पुराने खंडहर चर्च की तरफ अकेले जाते देखा है। एक दूसरी औरत जोर से हंसी, नहीं रे, मैंने तो उसे आधी रात को कब्रिस्तान की झाड़ियों के पास जाते देखा था। शराब खाने का मालिक हंसते हुए बोला, कब्रिस्तान? अरे छोड़ो भाइयों, कब्रिस्तान में भूत मिलते हैं, प्रेमी नहीं। वो तो कहीं और गुलछर्रे उड़ा रही है लगता है। अलेक्जेंड्रो पास खड़ा आंखें फाड़े सब सुन रहा था। उसकी आंखों की नसें फटने को हो रही थी। उसके दिमाग का आखिरी धागा भी टूट गया। उसी कयामत की रात उसने अपने कोट की जेब में एक तेज धार वाला खंजर छुपा लिया और मन ही मन फैसला कर लिया, अगला शुक्रवार इस कहानी का आखिरी शुक्रवार होगा। मैं साय की तरह उसका पीछा करूंगा और अगर रात में मैंने उसे किसी के साथ देख लिया तो टस्कनी की धरती उन दोनों के खून से लाल हो जाएगी। श्रोताओं, कभी कभी इंसान जिस सच को शिद्दत से जानना चाहता है वो सच नहीं होता, बल्कि अपने ही भीतर छिपे हुए सबसे बड़े खौफनाक डर का एक गंदा सा चेहरा होता। और टस्कनी की वो शुक्रवार की रात सचमुच खून के आंसुओं से रंगने वाली थी। अब कहानी अपने उस रूह कपा देने वाली क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। दिल थाम कर बैठिए, मैं लौटती हूँ इस आखिरी म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: स्वागत है प्यारे श्रोतागण एक बार फिर ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 FM के लेट नाइट हॉरर शो में। शाम के ठीक 6 बज चुके थे। टस्कनी के आसमान पर अचानक काले भयानक बादलों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसाबेला अपने कमरे में अकेली थी। आज उसने वही सफेद रेशमी पोशाक पहनी थी, लेकिन आज उसकी बेपनाह सुंदरता में एक अजीब सी रूहानी और डरावनी मायूसी झलक रही थी। उसने अपने लंबे काले बाल खोले, लैवेंडर का इत्र लगाया और अपने आप को देखने लगी। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, शायद आज मेरा इस दुनिया में आखिरी शुक्रवार हो। शायद अलेक्जेंड्रो का पागलपन अब मुझे जिंदा न छोड़े। उसकी नीली आंखों से गर्म आंसुओं की धार बहने लगी। उसने एक झटके से उसे पोछ दिया और एक दर्दनाक मुस्कान बिखेरी, जैसे उसे हर जख्म को मुस्कुरा कर विदा करने की भयानक आदत हो चुकी थी। वो हवेली से बाहर निकली, पर आज वो अकेली नहीं थी। अंधेरे के साए में अपने कोट की जेब में खंजर पर मजबूर पकड़ बनाए पागलों की तरह हाफता हुआ अलेक्जेंड्रो उसका पीछा कर रहा था। उसका दिमाग किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। आज सब खत्म हो जाएगा, आज मैं उसका चेहरा देख कर रहूंगा, और अगर इसाबेला ने जरा सा भी झूठ बोला तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी। इसाबेला उस तूफानी बारिश में भीगती हुई पहाड़ी के ऊपर बने उस खंडहर चर्च की तरफ बढ़ रही थी। इसाबेला धीरे धीरे घुटनों के बल उस खंडहर के फर्श पर बैठ गई। कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। फर्श पर चारों तरफ पुरानी कब्रों के पत्थर बिखरे थे। उसने रोते हुए कांपते हुए हाथों से उस सुर्ख लाल गुलाब को एक टूटी हुई कब्र के पत्थर पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। भैया देखो मैं आ गई, जैसा तुमने आखिरी वक्त वादा किया था। देखो आज भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा सुर्ख लाल गुलाब लेके आई हूँ। तुमने मरते वक्त मुझसे कहा था ना, जब तक इस जिस्म में सांस चलती रहे मुझे भूलना मत, हर शुक्रवार आते रहना। और मैं अपनी आखिरी सांस तक आती रही भैया, क्योंकि तुमने उस खौफनाक युद्ध में मेरे वजूद को, मेरे आबरू को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी। लेकिन अफसोस श्रोताओं, उस तूफानी बारिश का शोर, अलेक्जेंड्रो के भीतर चल रहा शक का वो अंधा तूफान इन पवित्र शब्दों को पूरा सुन नहीं पाया। अलेक्जेंड्रो के कान में सिर्फ इतने शब्द पहुँचे, मैं आ गई हूँ, मैं वादा निभाती रही, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। बस वो गुस्से में लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाने लगा एक आदमखोर जानवर की तरह, झूठी बदचलन औरत। इसाबेला भयानक ढंग से चौंक गई, उसकी रूह कांप गई। अलेक्जेंड्रो तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ आया हूँ, आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि तुम हर शुक्रवार किसके लिए सचती हो। इसाबेला बदहवास होकर रोने लगी। उसने अलेक्जेंड्रो का पैर पकड़ लिया। नहीं अलेक्जेंड्रो, खुदा के लिए रुक जाओ, तुम बहुत भयानक गलतफहमी का शिकार हो रहे हो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। लेकिन अलेक्जेंड्रो अब एक इंसान नहीं, साक्षात शैतान बन चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अंधा शक था। उसने उसको लात मारकर दूर कर दिया। बस करो, अपनी जुबान बंद कर झूठी, कितने वर्षों से तू मुझे धोखा दे रही थी, किसके लिए रोती थी, यही है क्या वो तेरा आशिक? इसाबेला फर्श पे गिर पड़ी। उसने कहा, मेरे खुदा क्या अलेक्जेंड्रो मुझे इतना भी नहीं जान पाया? अलेक्जेंड्रो मैंने तुम्हें अपने वर्तमान की हर खुशी दी, लेकिन मेरा वो दर्दनाक अतीत मेरा वो मानसिक आघात, मैं तुम्हें देकर किसी जिंदगी में उदासी नहीं खोलना चाहती थी। ये खबर मेरे भाई की है। झूठ, सरासर झूठ। वो तेरा आशिक है। मैंने अभी अभी तेरे मुंह से सुना है कि तू उससे प्यार करती है, तूने वादा निभाया है और अब तू झूठ बोल रही है। इसाबेला एकदम शांत हो गई। हाँ अलेक्जेंड्रो, मैंने ये सब कहा था, लेकिन तुम्हारे भीतर की उस घटिया और सड़े हुए शक ने तुम्हें ये सुनने ही नहीं दिया कि वो मेरा सगा भाई था मार्को, जिसने उस भयानक विश्व युद्ध के दौरान दरिंदे सैनिकों से मुझे बचाने के लिए अपने सीने पर 7 गोलियां खाई थी और तड़प तड़प कर मेरी बाहों में दम तोड़ दिया था। उसने मरते वक्त मुझसे एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि बहन, अगर दुनिया तुम्हें खुश रखे तो हर शुक्रवार मेरी इस बेनाम कब्र पर एक लाल गुलाब लेकर आना, ताकि मेरी भटकती रूह को सुकून मिले। क्योंकि प्रेम सिर्फ एक पति पत्नी का नहीं है, बल्कि प्रेम एक बहन भी करती है, एक माँ भी प्रेम करती है, एक भाई भी प्रेम करता है। लेकिन तुमने अपनी गंदी सोच से मेरे इस पवित्र रूहानी प्रेम को एक गंदा घिनौना पाप बना दिया। अलेक्जेंड्रो के हाथ से खंजर छूटने ही वाला था। उसका दिमाग सुन हो गया, पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। वो बड़बड़ाया, नहीं नहीं, तुम मुझे गुमराह कर रही हो, मुझे सबूत चाहिए, मुझे प्रमाण दो। इसाबेला उदासी से मुस्कुराई, एक डरावनी आखिरी मुस्कान, जिसे देखकर अलेक्जेंड्रो भी कांप गया। उसने कहा, अलेक्जेंड्रो, सच्ची मोहब्बत कभी अदालतों की तरह प्रमाण नहीं देती। मोहब्बत सिर्फ अटूट विश्वास मांगती है, और जिस बदनसीब दिन मोहब्बत को खुद को पाक साफ साबित करने के लिए सबूत और गवाह देने पड़ जाए, उस दिन उसी पल वो मोहब्बत दम तोड़ देती है। अचानक आसमान में एक भयानक बिजली कड़की और इसाबेला का पैर उस पथरीली सीढ़ी से नीचे फिसल गया। अलेक्जेंडर पागलों की तरह चिल्लाया, इसाबेला नहीं नहीं। उसने आगे हाथ बढ़ाया उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयानक हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। इसाबेला का सिर सीधे उस नुकीली पथरीले पत्थर से जा टकराया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। हवा का चलना बंद हो गया, बारिश थम गई और चर्च की वो घंटियां भी खामोश हो गई। अलेक्जेंड्रो पागलों की तरह छाती पीट पीट करके रोने लगा। तभी उसके हिलने से उस कब्र के पत्थर के नीचे दबा एक पुराना संदूक खुला। उसमें एक धुंधली तस्वीर गिरी। तस्वीर में छोटी उम्र की इसाबेला फौजी भाई मार्को के गले में हाथ डाले खिलखिला के हंस रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया बहन इसाबेला के लिए, युद्ध के मोर्चे से अगर मैं कभी लौट के ना आऊं, तो हर शुक्रवार को मेरे लिए वो टस्कनी का लाल गुलाब लाना मत भूलना, तुम्हारा भाई मार्को। अलेक्जेंड्रो के पैर के नीचे जमीन गायब हो गई। उसने पागलों की तरह उस संदूक को और टटोला। उसमें बच्चों के पुराने खिलौने थे, इसाबेला की बचपन की यादें थी और एक आखिरी अधूरी डायरी का पन्ना था, जिसपे लिखा था, अलेक्जेंड्रो के मन में मेरे लिए शक का जहर घुल रहा है। लोग मुझे बदचलन समझ रहे हैं, शायद वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन भैया, मैं वादा नहीं तोड़ूंगी, मैं आती रहूंगी, क्योंकि एक बहन का वादा तो मौत से भी बड़ा होता है। अलेक्जेंड्रो अपने बालों को नोचने लगा, चिल्लाने लगा, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों से अपनी पावन दुनिया का मर्डर कर दिया। ओ खुदा, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। लेकिन श्रोताओं, असली हॉरर स्टोरी, असली ट्रॉमा तो अब शुरू होने वाला था। अलेक्जेंड्रो मरा नहीं, बल्कि वो एक जिंदा लाश बन गया। अगली शुक्रवार से हवेली के भीतर खौफ का वो तांडव शुरू हुआ, जिसने पूरे टस्कनी गांव की रातों की नींद हराम कर दी। हर शुक्रवार की रात ठीक सात बजे से हवेली के बंद और सूने हॉल में रखे पियानो से अपने आप वही उदास विदाई धुन बजने लगती, जबकि वहाँ कोई इंसान नहीं मौजूद होता। पूरे घर में लैवेंडर की वो तीखी खुशबू इस कदर फैल जाती कि अलेक्जेंड्रो का दम घुटने लगता। और सबसे भयानक बात, हर शनिवार की सुबह जब अलेक्जेंड्रो सो के उठता तो उसके तकिए के ठीक बगल में एक ओस से भीगा हुआ ताजा सुर्ख लाल गुलाब मिलता। वो पागलों की तरह चीखता, कमरे से भागता। एक रात इस मानसिक यंत्रणा से तंग आकर उसने खिड़की खोल करके चिल्लाया, इसाबेला, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे क्यों नहीं मार देती? मुझे सजा दो, इस खंजर से मेरी छाती चीर दो, मुझे इस नर्क से आजादी दो। मगर एक बेहद ठंडी लैवेंडर की खुशबू से सनी धीमी सी इसाबेला की आवाज गूंजी, नहीं अलेक्जेंड्रो, मैं तुम्हें मार कर इतनी जल्दी आजाद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हर पल हर रात सिर्फ ये याद दिलाऊंगी कि सच्ची मोहब्बत को कभी अपने शक की अदालत में खड़ा मत करना, क्योंकि मोहब्बत कभी सबूत और गवाह नहीं लाती, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास मांगती है। अब जियो इस नर्क में जीवन भर। अलेक्जेंड्रो पागलों की तरह हंसने लगा और हमेशा के लिए उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कहते हैं श्रोतागण, आज भी इटली के टस्कनी प्रांत में हर शुक्रवार की रात ठीक 7 बजे पुराने खंडहर चर्च की तरफ 3 धुंधले साए जाते दिखाई देते हैं। एक सफेद रेशमी पोशाक वाली खूबसूरत स्त्री, एक मिलिट्री की वर्दी पहने सैनिक और उनके पीछे घिसटता हुआ एक रोता बिलखता आदमी जो जोर जोर से चीखता है, इसाबेला, मैंने उस रात तुम्हें नहीं खोया था, मैंने अपने अंदर के अंधेरे शक के कारण अपना ईमान, अपना विश्वास और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया था। तो दोस्तों, इस दुनिया में मौत के बाद शमशानों से लौटी आत्माओं से डरना बहुत आसान है, लेकिन असल में डरना है तो अपने भीतर के उस जहरीले और शब्दों के विचारों से डरिए जो किसी जीते जागते खूबसूरत इंसान के हंसते हुए मन में शक और अविश्वास का काला बीज बो देते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे खौफनाक भूत पुरानी कब्रों में पैदा नहीं होते, उन्हें हम और आप अपने

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

मैं उन सॉन्ग्स की बात करूंगी जो समय की स्पेशल वैरायटी या किसी दूसरी वजह से प्रेरित होती है, जिन्हें हम रेट्रो सॉन्ग्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि 60s, 70s, 80s के गाने जिन्हें हम आज भी पसंद करते हैं। वेलकम इन योर फेवरेट शो भूले बिसरे गीत, जहां आप एंजॉय करते हैं उस दौर के सॉन्ग्स को जो कहीं धुंध में खो से गए हैं, विथ योर फेवरेट आरजे अनोखी। अक्सर वो मुझसे पूछता है, क्या जिंदगी क्या मौत। मैं खामोश रहती हूँ और दिल ही दिल में कहती हूँ, तुझे पा लिया तो जिंदगी, खो दिया तो मौत। पर अगर तुझसे मुलाकात हो जाए तो सारी जिंदगी उस एक पल में तेरे साथ हो जाए, क्योंकि

जब बात साथ की होती है तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, फिर हम सब कुछ भूलकर शायद कवि, आशिक, मजनू, शायर, शैव, धोबी, कूली और ना जाने क्या क्या बन जाते हैं। खैर ये तो मजाक था, पर मुलाकात की बात तो 100% सच है। उस दौरान हम क्या क्या महसूस करते हैं, आइए इस सॉन्ग को सुनकर फील करते हैं, जिसे आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने और म्यूजिक कास्टिंग है आरडी बर्मन आनंद बख्शी के, और ये सॉन्ग है अजनबी मूवी से, जो कि मेरा मोस्ट मोस्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और आपका भी मोस्ट फेवरेट सॉन्ग बनने वाला है।

अब तक हमने बात की साथ से मुलाकात की, अब बात मुलाकात के बाद की यानी के ख्वाब की। जिंदगी के कुछ हसीन पल बस यूं ही गुजर जाते हैं, जिंदगी के कुछ हसीन पल बस यूं ही गुजर जाते हैं, बस इसीलिए उन यादों को हम कैद कर लाते हैं, बिल्कुल इस सॉन्ग की तरह।

आज हम जिन गानों की बात कर रहे हैं उन्हें रेट्रो सॉन्ग्स तो कहते हैं, साथ ही साथ पुराने या क्लासिकल बॉलीवुड सॉन्ग भी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हमें ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि जब हम ख्वाब में होते हैं और ख्यालों में चले जाते हैं तो हमारा क्या क्या गुम जाता है, नहीं पता ना आपको? कोई बात नहीं, आइए इस सॉन्ग से ही पूछ लेते हैं इस सवाल का जवाब, जिसे आवाज से सजाया है आशा भोसले ने और रफी साहब ने। यादों की बारात मूवी से ये मजरूह सुल्तानपुरी की लाइंस के साथ राहुल देव बर्मन की कंपोजिशन से।

दोस्तों, चोरी के बाद ही असली मुद्दा शुरू होता है, जिसे कहते हैं जिज्ञासा, तड़प या जानने की इच्छा। क्योंकि खोजबीन तभी शुरू होती है जब हम किसी के प्यार में होते हैं और फिर खुद ही से कहते हैं कि यादों की फरमाइश भी बड़ी कमाल की होती है, यादों की फरमाइश भी बड़ी कमाल की होती है। सजदा वहीं करता है दिल, सजदा वहीं करता है ये दिल, जहां हर सुबह हर रात आपके प्यार की बरसात होती है।

आपको पता है कागज तो बहुत खोले हैं हमने, कभी उधार का कागज, कभी बिल का कागज, तो कभी बिल का और दिल का कागज। बचपन में सिलेबस का जब प्यार के खत की बात आई ना, तब तो भाई हमारा कागज कोरा ही रह गया, क्योंकि उस पर लिखने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं मिल पाया। क्योंकि जब जज्बात बयां करने के लिए शब्द ढूंढे हमने, तो उस लायक कोई शब्द ही ना लगा।

भाई जिंदगी की बात हो गई, मुलाकात की बात हो गई, यहाँ तक कि बात की भी बात हो गई, पूरे कागज से जज्बात तक की बात हो गई। अब बात करेंगे खत की इस सॉन्ग के जरिए। पर श्रोताओं, उससे पहले जुबाने दिल का पैगाम तो लेते जाइए। तुम कल के बाद आए हो, तुम कल के बाद आए हो, क्या मेरे ख्याल के लिए कुछ साथ लाए हो? हर बार मिलके कुछ अलहदा सा नया सा सिखाते हो, हर बार मिलके कुछ अलहदा सा नया सा सिखाते हो। वो कौन सा राज है, वो कौन सा राज है जो हर बार कहते कहते झिझक जाते हो?

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपना फेवरेट शो भूले बिसरे गीत अपने फेवरेट आरजे अनोखी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं उस दौर की जहां के सॉन्ग्स एवरग्रीन हैं, जहां के सिंगर्स लेजेंड्स हैं और जिन सॉन्ग्स को हम रेट्रो सॉन्ग्स कहते हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग उस समय से कहीं ज्यादा आज के टाइम पर है। तो आइए उन्हीं सदाबहार गानों से एक और गीत हो जाए जो आपके लिए ही हम ढूंढ के लाए हैं, आज की शाम आपके नाम ये प्यारा सा पैगाम।

श्रोताओं, आज हमने बात की रेट्रो सॉन्ग्स पर। और रेट्रो सॉन्ग्स वो सॉन्ग होते हैं जो कि हमारे दिल में इस कदर बसे हुए ना कि जिसकी धुन को सुनते ही हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। और हाँ, मिलेंगे तो कुछ खास ही लाएंगे आपके लिए। उससे पहले आज का ये बतौर तोहफा सॉन्ग आपके लिए। अब मुझे दें इजाजत। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
1: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा

0: भी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ